0: विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% GDP विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत की

अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: sides. He added that the focus is on how to crack down on and curb illegal migration, while ensuring that this does not adversely affect legal migration. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for the submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said India should aim to increase its marine product exports from the current level of $8 billion to $30 billion over the next 5 years. He said the government is committed to expanding global market access for the fisheries sector. Addressing a press conference on the sidelines of the two-day national workshop on seafood exports commenced in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, the minister noted that India has concluded a record 9 free trade agreements over the last 3.5 years. In chess, Grandmaster R. Pragyananth has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kemer. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। समीन, आपको इंतज़ार होगा अपने चहेते मॉर्निंग शो पायम सुबह का। आप सुनेंगे इस वक्फे के फौरन बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुँचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
9: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
8: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
9: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
8: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
9: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
8: माँ, अब 7 रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
9: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
8: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा। हमें बस इंसानियत दिखानी है।
9: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
8: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
10: हेलो
11: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
10: फिर से?
11: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
12: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
10: सर इतने कहाँ से?
12: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
10: 2 लाख
13: क्या हुआ पापा?
10: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
13: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
10: फ्रॉड?
13: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
10: तो पैसे गवाओगे।
14: RBI कहता है,
15: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। नई सुबह, नई उम्मीदें और नए जज्बे के साथ पायाम सुबह लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी।
1: तमाम सुनने वालों की खिदमत में हमारा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे। रशीद, आपने नई सुबह और नई उम्मीदों की बात छेड़ी
0: जी।
1: दरअसल सुबह सिर्फ सूरज तलो होने का नाम नहीं बल्कि ये अपने अंदर बेशुमार कहानियों का आगाज लिए भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहीं कोई अपने ख्वाबों की तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो कहीं कोई नई उम्मीद के साथ जिंदगी को फिर से गले लगाता है।
0: जावेद, शायद यही सुबह की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कल की थकन को पीछे छोड़कर आज के इम्कानात का दरवाजा खोल देती है। बकोले शायर, आ ही पहुंची है एक दरीचे से शुआए आफताब, आ ही पहुंची है एक दरीचे से शुआए आफताब, मैं ये समझा था शबे गम की सहर कोई नहीं।
1: वाह रशीद, वाह।
0: जावेद, आज भी इस खुशगवार सुबह में हम गुफ्तगू करेंगे जिंदगी, माशरे और उन मौजूदात पर जो हम सब की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम करम फरमा इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सनीचर को हमारा थीम रहता है अवामी मसाइल से मुतल्लिक।
1: बिल्कुल, अवामी मसाइल यानी इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक। देखा जाए तो अनगिनत ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात हो सकती है और बात होती है
0: जी।
1: कुछ
0: जी।
1: मसाइल ऐसे हैं जिन पर जितनी भी बात हो कम लगती है, और आज भी हम अपनी ट्रांसमिशन में ऐसे मसलों और सदेबाब पर बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने तमाम सुनने वालों के लिए पेश करते हैं ये प्यारा सा नगमा।
0: जरूर।

0: पांच मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रशीद निजामी।
1: जावेद, अभी थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि आजकल हर एक यही शिकायत करता नजर आ रहा है कि मेरे पास वक्त ही नहीं। मगर जावेद, सवाल यह है कि जो भी वक्त हमारे पास है वो हम किस तरह गुजारते हैं? जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ लंबी उम्र में नहीं बल्कि अच्छे अंदाज से जीने में है, और यही चीज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। क्यों जावेद?
0: सही बात है रशीद, हम वक्त की शिकायत तो करते हैं। क्या किसी को ख्याल है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मालूमात बहुत हैं मगर तहम्मुल और बर्दाश्त की असहद कमी है?
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए इख्तलाफ राय के बावजूद एहतराम बाकी रखना शायद आज के माशरे की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है।
1: बिल्कुल, लिहाज, एहतराम, एक दूसरे का ख्याल, शायद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जावेद हमसे कहीं दूर चले जा रहे हैं।
0: सही।
1: शायद एक दूसरे पर सबकत लेने की दौड़ में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। वो रिश्ते जो हमें तकलीफों में थाम लेते थे, मुसीबतों में गले लगाते थे।
0: मुझे लगता है कि इंसान कभी कभी कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकता है। कोई दुनिया की दौड़ में कितना भी गुम हुआ हो, किसी भी पड़ाव पर रुककर दो मिनट ये सोच सकता है कि क्या मैं सही डगर पे हूं कि नहीं, क्या मैं ठीक समत की तरफ जा रहा हूं कि नहीं।
1: वाह, क्या बात कही आपने जावेद। मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुबह की किरणों ने यह पैगाम सुनाया है, सुबह की किरणों ने ये पैगाम सुनाया है, हर नए दिन ने जीने का हुनर सिखाया है।

ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबरनाम हेत चुस बु तजम्मुल अहमद गोड अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत भारतीय मीशत बुनियाद सेठा मजबूत माली वरी जिसास पुंचु शतवस दौरान चु शरह नमो 7.7% रूदमुत। खारजी वजारत वोनमुत युहस अमरीका पे कुल 1,67 भारतीय शहरी वापस वतन अन्न आमित। भारतन चु गिलगित बल्तिस्तान मज नाम नहाद असम्बली चुनाव हंदिस पाकिस्तान किस ऐलानस पे एतराज बोमुत। तो साइंस टेक्नोलॉजी मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तुल रात जमे मौसमियात महकम किस बेस अकिस मरकजस दस। खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी जोर दिथ वोनमुत भारत मआशी बुनियाद सेठा मजबूत वरी जिसास पुंच शतवस दौरान कुर मुल्कन 7.7% शरह नमो दर्ज। तो ये सोरी सपुद तथ वक्त मज यन आलमी सुतरस पे मआशी बहरान चलान उस रात शामस दमनस मज 2,970 करोड़ रुपयन हंदन मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन 10 तुलन पत अकिस लुक जलसस खिताब करान वन वजीर अजमन जे भारत चु वन ते दुनियास अंदर अक तेजी सान तरक्की करविन मईशत। तिमो दुत शहरियन यकीन जे मुल्क पके इसलाहकारी हिंज वते सेठा तेजी सान ब्रोंकुन त अत दौरान ये बुनियादी ढांचे च तरक्की त गरीबन बापत वेलफेयर स्कीमन मजाक तवोजुन पैद कर। वजीर अजमन वोन जे मुल्क प्रावे एनर्जी हिंदे सेक्टरस मज सेठा जल्द खुद इनहसारी। तिमो वोन जे दुनिया चु ग्रीन फ्यूचरस कुन पकान तो इक्तिसादी तरक्की बे माहौलियती तवोजनस दरमियान अक बैलेंस पैद करित बने भारत अत सिलसिलस मज अक वतहाउक। अमे ब्रोह तुल वजीर अजमन सूरतस मज 14,000 करोड़ रुपयन हंदन तरक्याती प्रोजेक्टन 10 अत मौकस पे खिताब करान वन तिमो जि भारतस मज काबिल तजदीद तवानाई हंज 15 गीगावाट सलाहियत मौजूद। तो अत मज चु गुजरात 15 गीगावाट किरदार अदा करान। खारजी वजारत वोनमुत अमरीका पे युहस कुल 1,67 भारतीय शहरी वतन वापस आमित। तिमो वोन जोर दिथ जे भारत अमरीका गैर कानूनी नकली मकानी रुकावन बापत पानवे रलित मिलित काम करान।

0: हफ्तवार प्रेस ब्रीफिंग दौरान अके सवालुक जवाब दिवान वोन खारिज वजारत हिंद तर्जमान रंधीर जायसवालन जि वरी जिसास पुंचास दौरान कर अमरीकान कुल त्रे सास पांच हत सतहठ भारतीय शहरी डिपोर्ट तमो वोन जि दोशवे दरचि माइग्रेशन तो मोबिलिटी हिंदिस मसलस पर कतबात जारी थवित रंधीर जायसवालन वोन जि दोशवे मुल्क चि गैर कानूनी नकल मकानी कापि रटने बापत तौर तरीकन पे सरान सोचान तो अ दौरान चु ख्याल तवान जि कानूनी पाठ हिजरत पे गचन अमुक कहत मनफी असर प्यों भारतन चु पाकिस्तान तरफ मकबूज गिलगित बल्तिस्तान असेंबली मज नाम निहाद चुनाव करनावनस पे सठा एहतजाज कोर्मुत तिकाज भारतन चु वोनमुत जि जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तो मुजफ्फर आबाद भारत अच्छेन हिस्से खारिज वजारत चु अत सिलसिलस मज जारी कर आमते अकिस बयानस मज वोनमुत जि यम इलेक्शन हेकन गिलगित बल्तिस्तान तो मुजफ्फर आबादस मज पाकिस्तान तरफ करने इवान इंसानी हकूकन हजन खिलाफ वर्जियन पर्द करित भारतन चु वोनमुत जि यम त्रेशवे खत चे कुनवुह शेथ तो सत्तेजियस मज भारत सहित इलाहाक सपदन पत भारत अच्छे हिस्से बनेमित जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत जि मुनशियात खिलाफ पांचवंजा दोह ब्रोह जमे पे शुरू कर आम मुहिम से वन अकिस तारीखी तहरीकि मज तब्दील सपजम वस्ती कशीर हिंदिस गांधरबल जिलस मज रात मुनशियात मुखालिफ पदयात्राए झंडे हवित रवाना कर ब्रोह खिताब करान वोन मनोज सिन्हान जि पतमें पांचवंजाहन दोहन दौरान आए अख सास तो शेत्र एफ आई आर दर्ज कर अख सास अखत अठवु ड्रग स्मगलर आए गिरफ्तार कर जन ड्रग स्मगलरन हिंद हथ जायदाद अटैच कर आए अमे अलाव आए सत हथ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर अखत तृह ड्रग स्मगलरन हिंद पासपोर्ट त आए मनसूख कर
1: तस्करों से कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हारे नेटवर्क एक एक करके ढहा दिए जाएंगे। ये हमारा हलफ भी है, हमारा वादा है कि हर ड्रग तस्कर हर नार्को आतंकवादी अपने अपराधों और अपने पापों की कीमत चुकाएगा। आइए साहस के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़े, आइए एकता के साथ हम मिलकर के आगे बढ़े, आइए विश्वास के साथ हम मिलकर आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर की तारीख ये दर्ज करे कि हमारे 100 दिन के जन आंदोलन में गांधरबल नार्को आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और गांधरबल के लोगों ने विजय प्राप्त की।
0: मनोज सुरानतुल एमपत गांधरबल स्मस डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर त श्री अमरनाथ जी यात्रा कंट्रोल रूम से 10 तमो वोन अत मौक पे जमो सहूलतों सत ग श्री अमरनाथ जी यात्रा बापत इन वाल यात्रियों खतर कुन खल वल सहूलतन दस्तियबी यकीनी। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चु कहमि अप्रैल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान शुरू कोर्मुत तो तमो अत दौरान यूटी हिंद तमाम जिलन मज मुनशियात मुखालिफ पदयात्राहन हुंद वतहावक बनित काम करमच अभियान शुरू सपदनस पेट ओस तिमो मुनशियातस मुखालिफ अख पैगाम दितमुत।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: साइंस तो टेक्नोलॉजी मरकजी वजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह तुल जमिस मज कम कर आमतिस मौसमियात महकम किस मरकजस 10 तमो वोन जि मरकज सपद जम कशीर लद्दाख तो हिमाचल प्रदेश किन लूकन तम मौसम मुतलिक जानकारी वातना बापत सठा अहम साबित नाम निगार सत कर वोन तमो
2: जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है। डॉपलर वेदर रडार बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, अभी कुछ ही सालों में हमने 4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, ले और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारा।

लाइव इंटरैक्टिव शो पेश होगा सुबह 10:30 पर। मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, इनसे बात करेंगे रशीद निजामी और मौजू है नशा मुक्त समाज। सूफी शायर शमस फकीर की बरसी के मौके पे छकरी और उर्फ पेश होगी 11:30 पर और फिर 2:30 पर। फनकार हैं अब्दुल रशीद हाफिज और साथी। फिल्म संगीत हमारे यहाँ से नश्र होगा 12:10 पर, 1:10 पर और फिर 3:00 फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम में। फिल्मी लग में आप 2:15 पर और रात 9 बजे भी सुन सकेंगे। ख्वातीन के लिए

प्रोग्राम बज़्म निस्वाना शो का हज़्म मामूल 12:40 पर इसमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से मुतल्लिक बात होगी। मेहमान हैं रखशंदा रफीक। पहाड़ी प्रोग्राम सुना जा सकेगा 4:00। मेज़बान हैं गज़ाला मुमताज़। प्रोग्राम में शाबान खान की बातचीत भी शामिल है। हफ्तवार शीना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा 4:30 पर। मेज़बान हैं शहनवाज सामून। गोजरी प्रोग्राम का वक्त नशरिया है 5:00। इसमें तुफैल अहमद कसाना से लिया गया इंट्रो नश होगा। मौजू है मिशन युवा स्कीम। देहाती भाई अपना

0: पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू

0: जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है।

0: सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादित

0: तरीके में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाश शनिवार की सुबह आप शुभ समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट रशीद निजामी। और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी।
3: रशीद, जून महीने की आज 6 तारीख है।
2: जी है।
3: पलटकर अगर देखें तो इस तारीख को गुज़श्ते सालों में कौन कौन से खास वाक़यात रोनुमा हुए हैं, किन लोगों का जन्म हुआ है इस दिन और कौन कौन सी शख्सियात इस दिन वफात पा गई हैं, आइए डालते हैं इसी पर एक नज़र।
2: 1505 ईस्वी में इसी तारीख को नेपाल की तवारीख में सबसे बड़ा जलजला आया जो लो मस्टंग नाम से मशहूर है। जलजले की शिद्दत 8.2 से 8.8 के दरमियान थी। इस जलजले ने नेपाल की तकरीबन 30% आबादी को मौत के मुंह में धकेला। जलजले से जनूबी चीन और शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से भी मुतासिर हुए।
3: मराठा सल्तनत की बुनियाद रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की रायगढ़ किले में बाजाब्ता ताजपोशी हुई थी जून की 6 तारीख को सन 1674 ईस्वी में।
2: 1660 ईस्वी में जून की ही 6 तारीख को डेनमार्क और स्वीडन ने अमन मुहैदे पर दस्तखत किए।
3: सन 1744 ईस्वी को आज ही के दिन मास्को में आतशजदगी से 18,000 घर जलकर राख हुए, शहर का एक तिहाई हिस्सा तबाह हो गया।
2: फ्रांस और ईरान ने अमन मुहैदे पर दस्तखत किए जून की इसी तारीख को 1744 ईस्वी में।
3: सन 1822 ईस्वी में इसी तारीख को एलेक्स सेंट मार्टिन नामी मुहिमजू को पेट में हादसाती तौर गोली लग जाती है, जिसके बाद अमरीकी फौज में तैनात एक सर्जन डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट्स ने उसके मैदे के जख्म के इलाज के दौरान मैदे के तेजाब यानी गैस्ट्रिक जूस और हाजमे के अमल को जानने में कामयाबी हासिल की। इस तरह से वो फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी के नाम से मशहूर हुए।
2: 1844 ईस्वी की यही वो तारीख थी जब लंदन में द यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का वजूद अमल में लाया गया।
3: सन 1946 ईस्वी में इसी तारीख को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन BAA के नाम से न्यूयॉर्क शहर में कायम की गई, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी बास्केटबॉल लीग बनी।
2: 1967 ईस्वी में जून की इसी तारीख को इसराइली फौज ने गजा पर कब्जा किया था।
3: सन 1930 ईस्वी में मुंजमद गजाओं यानी फ्रोजन फूड्स को पहली बार रिटेल स्टोर्स पर बेचा गया था जून की ही 6 तारीख को सेरिंग फील्ड मैसाचुसेट्स में। दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले वीडियो गेम्स में से एक टेट्रिस को पहली बार सोवियत यूनियन में मुतारिफ कराया गया था जून की ही 6 तारीख को सन 1984 ईस्वी में।
2: 1981 ईस्वी में इसी तारीख को बिहार में समस्तीपुर के करीब ट्रेन बागमती नदी में गिरने से तकरीबन 800 मुसाफिर हलाक हुए। ये भारत के बड़े ट्रेन हादसात में से एक है।
3: हिंदुस्तानी टेनिस जोड़ी लिएंडर पेज और महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।
2: अमेरिका के सावियक सदर रोनाल्ड रेगन का इंतकाल हुआ था जून की ही 6 तारीख को 2004 ईस्वी में।
3: तो ये थे 6 जून को तवारीख में रोनुमा हुए खास वाकयात। अब इस तारीख को जन्म लेने वाली चंद शख्सियात पर नजर डालते हैं।
2: जी हाँ, हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकार, सियासतदान और साबिक वजीर खेल सुनील दत्त की पैदाइश जून की ही 6 तारीख को हुई थी 1929 ईस्वी में।
3: भारतीय गुलकारा नेहा कक्कर भी 6 जून को पैदा हुई थी

0: 1988 ईस्वी में।
1: भारतीय लेखक मस्ती वेंकटेश अयंगर जन्मे थे इसी तारीख को 1891 ईस्वी में। आप कन्नड़ जबान के जाने माने कलमकार थे।
0: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील जोशी का जन्म भी जून की 6 तारीख को ही हुआ था सन 1970 ईस्वी में।
1: और भी बातें होंगी लेकिन इस नकमे के बाद।

0: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
1: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
0: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
1: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
2: यारो वन बाजी यारो वन।
0: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुब।
3: सुनो सजना
1: पयामे सुब।
4: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो पयाम सुब अपने मेज़बान जावेद अंद्राबी और रशीद निज़ामी के साथ। रशीद, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि आज का दिन यानी 6 जून हर साल हायर एजुकेशन के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है?
5: जावेद, बहुत अच्छा हुआ जो आपने याद दिलाया। हायर एजुकेशन के कौमी दिन के मनाने का दरअसल मकसद जो है ना, वह है नौजवानों को आला तालीम की हसूल के लिए हौसला अफजाई करना, तालीमी अखराजात को काबिल बर्दाश्त बनाने की वकालत करना और स्कॉलरशिप के लिए मौके फराहम करना है। क्यों?
4: बिल्कुल, आला तालीम का कौमी दिन हमें याद दिलाता है कि तालीम सिर्फ फ़र्द की तरक्की नहीं बल्कि कौम की तामीर तरक्की का सबसे मजबूत सतून है। यूनिवर्सिटियाँ,

0: जी हाँ, ये फिल्मी नगमा आपने सुना। और हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे जावेद, कि आज कौन सा कौमी दिन है और कौन कौन से वाकयात रूनुमा हुए हैं और कौन सी शख्सियात पैदा हुई हैं। और वक्त का पता नहीं चलता है ना, वक्त एक ऐसी शय है जो निकल गई तो निकल गई।
1: आठ
0: अब
1: बजकर 30 मिनट हो रहे हैं।
0: बिल्कुल घड़ी इशारा कर रही है कि हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरनामा सुने।
1: बिल्कुल
0: बस चंद ही लम्हों में आकाशवाणी से खबरनामा।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बे। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय भविष्य आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाजन बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इशारा दिया कि भारत की काबिल तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवां हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए

0: दार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है, जो तवानाई के मैदान में खुद कफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकिली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा, जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वजीर आजम ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्कुत में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी, क्योंकि बहुत सी बंदिशें ख़त्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा ज़ुमरों को मरकजी सरकारी तमस्कुत और रियासती सरकारी तमस्कुत को एक दूसरे में ज़म कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्कुत के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपये पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपये तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपये और 1,64,242 करोड़ रुपये भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ज़िरात और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज़्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज़ ज़िरात और किसानों की बहबूद की मरकज़ी वजारत ने किया है, जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादिल इस्तेमाल को फ़रोग देना, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीक़ों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
3: ज़राअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत अभी तक 17,800 से ज़्यादा अभ्यदारी प्रोग्राम मुनक़द किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिनमें 1,57,000 से ज़्यादा किसानों को कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद मिट्टी की तवील मुद्दती जरखेज़ी और कीमियावी खादों पर ज़्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद की खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनाल अभी भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी।

0: जनाब जयसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है जो तरक्याती तआवुन और आवाम के दरमियान रवाबित तजारत और सरमायाकारी तक मुहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस कसीर जैती शराकत दारी को मजीद मुस्तकम करने का ख्वाहां है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराहकुन बातें करके काउंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फौजों ने ईरान के उन चार ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था, आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशम जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताज़ा तरीन हमला है जिसकी वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आ गया हुआ है, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के अफसरान ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ्त को फंड्स के इंजमात को खत्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमरीका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली जिलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगाड अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 मरतबा हराया है। गोवा के शहर मारगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शेयर सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शेयर सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्द अमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर

0: इनकी वजह से जो इस दवा इस्तेमाल करना और ये मेन पेशेंट एक्सरसाइज और पति दवा इस्तेमाल करो 100% रिजल्ट।
1: शुक्रिया डॉक्टर फिरोज अहमद साहब तुम सेटा मुफीद कथ फरमायो तो यात लो बैक एक्स मुतल्लिक तो फायदेमंद कथ आ तो लुकन पजी मन कथन पर अमल करन तुहन करो सेटा सेटा शुक्रिया बोजन वाले हम इजाजत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम
3: सेहत बदन।
2: ये प्रोग्राम तुह तम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर ये बाकी तमाम दादियों अलावा डिस्क पाइलस तो प्रोस्टेट बीमारी बगैर ऑपरेशन इलाज सप्तान छु फोन 7051545788।
4: आकाशवाणी का यह श्रीनगर स्टेशन है।

0: 7051545788. आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश खिदमत है मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: नशा मुक्त समीन, आज शनिचरवार है, साल 2026 के जून महीने की 6 तारीख, मुताबिक 20 जिलहज्जा 1447 हिजरी। मकामी अखबार की सुर्खियां लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रशीद निजामी। जी रशीद,
3: नशा मुक्त अभियान पद यात्रा गांधरबल पहुंची। नॉर्को मिलिटेंट हमारे बच्चों के दुश्मन, उनके दिन गिने चुने रह गए, भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एलजी मनोज सिन्हा।
0: मुख्तसर और तवील दोनों तरह की जंगों के लिए तैयार हैं। हर फौजी फॉर्मेशन में ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। आर्मी चीफ।
3: दफा 370 तामीर और तरक्की में कोई रुकावट नहीं था, मनसूखे से कोई गैर मामूली इख्तिसादी तब्दीली नहीं आई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला।
0: जम्मू कश्मीर में 26 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बेड़े को हरी झंडी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम करने का अज़्म, डीजी एसएसपी संजय सिंगल।
3: खीर भवानी में
0: अमरनाथ यात्रा से कबल एसएसपी की इस्तेदाद में इजाफा, जदीद बुलेट मजाहिम गाड़ियां शामिल।
3: खीर भवानी में यात्री भवन वक्फ, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह किया एलजी मनोज सिन्हा ने।
0: हाई पर्वत किला लाइट एंड साउंड मंसूबे का मुआयना, तकनीकी कमेटी ने की ली, तकनीकी कमेटी लेगी फनी मियाद, हिफाजत और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा।
3: मर्दमशुमारी 2027 के लिए नामजद मुलाजमीन फर्ज की तामील न करने पर जेल की सजा का इंतबाह।
0: मटन में खेत में काम के दौरान नौजवान जांबहक, स्कार्फ टिलर के ब्लेड में फंसने से हादसा पेश आया।
3: जावरा गार्डन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में धांधली, साबिक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के खिलाफ केस दर्ज।
0: लाल बाजार में खातून पुरअसरार हालात में मुर्दा पाई गई, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की।
3: मुस्तकबिल में जरई पैदावार और गिजाई तहफ्फुज के बड़े चैलेंजेस दरपेश, बांडीपुरा, कुलगाम और गांधरबल सबसे ज्यादा कमजोर अजला करार।
0: आलमी यौम माहौलियात 2026 और जम्मू कश्मीर, कश्मीर में आए दिनों गरज चमक के साथ बारिश, तूफानी हवाएं और शदीद जालाबारी, शदीद गर्मी की लहर, कश्तवाड़, डोडा और रियासी में बादल फटने के वाकयात, दरख्तों का कटाव, पैदावारी जमीन और आबी जखायर की हैयत तब्दील, वजूहात माहरीन।
3: सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा।
4: जून सपद दुर्गा नाग डलगेट कश्मीर मोटर्स पे प्याजो इलेक्ट्रिक ऑटोवन हुन फ्री चेकअप कैंप मुनक़द।
5: ये प्याजो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटोवन 100% फ्री चेकअप सपदे माहिर तजुर्बियाफ्त टेक्नीशियन हिंदे जरिए।
4: कम्प्लीट व्हीकल चेकअप, बैटरी हेल्थ चेक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्पेक्शन, ब्रेक तो सेफ्टी चेक सपदे।
5: याद थो 6-7-8 जून कश्मीर मोटर्स दुर्गा नाग डलगेट श्रीनगर।
4: मजीद तफसील लात बुकिंग खतर करियो रबते 0194-2500-596।
6: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और

0: अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जमींदार भाई बागस कर छिड़का,
2: जमींदार भाई बापत खुश खबर, कहीं प्रोन दवा मोटर अनु तो एक्सचेंज स्कीम तहत नियु नो होंडा दवा मोटर रब्त करू जे के स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर, यम होंडा कंपनी हिंद बाइक तैयार डीलर छे।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
0: सुर्खियों में एक बार फिर आपका खैर मकदम।
5: रशीद, एक अंग्रेजी अखबार से यह सुर्खी है, वायरल वीडियो ट्रिगर्स हाइजीन कंसर्न एट SMHS हॉस्पिटल, आउटसोर्सड फैसिलिटी शट डाउन MS।
0: वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, CM अर्ज सिटीजंस टू ज्वाइन ग्रीन मिशन।
5: स्वेप्ट अवे सेविंग सन, श्रीनगर मैन्स बॉडी रिकवर्ड आफ्टर 6 days इन लेदर।
0: एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
5: नीट रिटेस्ट लीव्स कश्मीर एस्पिरेंट्स बैटलिंग सिट्रस लॉस ऑफ मोटिवेशन।
0: कलेक्टिव एफर्ट्स नीडेड फॉर ग्रीन फ्यूचर, SSP श्रीनगर।
5: टीचर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स असाइंड सेंसर्स ड्यूटी वार्न्ड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर नेग्लिजेंस।
0: रडार शील्ड फॉर हिमालयाज एज जम्मू गेट्स मैथ सेंटर।
5: CM reaffirms commitment to greener, cleaner, climate resilient J&K.
0: मेरे पास भी एक अंग्रेजी अखबार की ये सुर्खी है, ₹223 करोड़ प्लान्स ठक, मैग्नमाइजेशन प्रोसेस हिट बाय टेंडर डेडलॉक इन J&K, कॉन्ट्रैक्टर्स स्टे अवे ओवर राइजिंग कॉस्ट, डिमांड रेट रिविजन अमिड मिडल ईस्ट क्राइसिस।
5: अब चंद सुर्खियां बेनाकामी खबरों की। हम हिंदुस्तान को एक बहुत ही काबिल एतमाद पार्टनर समझते हैं, पुतिन।
0: टर्की में एक नौजवान के अकाउंट में अचानक $21 अरब आ गए।
5: अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग की लागत और नतीजे पर सख्त बहस, डेमोक्रेट्स ने ट्रंप इंतजामिया से मांगा जवाब।
0: बर्तानिया में 23 साल तक तलाक का केस लड़ने वाली हिंद नजाद खातून को 6.6 मिलियन पाउंड मिल गए।
5: जॉन बोल्टन खुफिया दस्तावेज के गलत इस्तेमाल केस में एतराफी जुर्म पर तैयार।
0: इसराइली फिजाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक, लेबनानी वजारत सेहत। सऊदी अरब में दुनिया की बुलंदतरीन इमारत ने दौरान तामीर मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। और एक दो सुर्खियां जावेद अभी हैं जो मकामी सुर्खियां हैं। उर्स मुबारक ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तहनीती पैगाम, कहा हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह की तालीम हमारे लिए मिशले राह है।
5: रशीद, ये सुर्खी है बैन अवी खबरों से
0: जी।
5: यूक्रेनी सदर का रूसी सदर पुतिन को खुला खत, मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार।
0: मैं एक खबर पढ़ रहा हूं जो यहां के एक अखबार में है। असातिज़ा कौम के मेमार हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, चौधरी मोहम्मद रमजान।
5: यह खबर बैन अवी खबर है
0: जी।
5: अखबार लिखते हैं, सऊदी वजीर तवानाई रूस पहुंच गए, तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए तबादले ख्याल।

0: जब ये सुर्खियां तो हो गई और ये जो हमारा ट्रांसमिशन है पयाम सुबह, ये हमारे तमाम सामईन तमाम करम फरमा सुबह 7:10 से 11:30 तक समाप्त करते हैं। यहां पर मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दूं कि आप जुड़े रहिएगा इस ट्रांसमिशन के साथ, और आपको बता दें कि 10:30 पर एक मेहमान से हमारी मुलाकात होगी। आज के जो मेहमान हैं आप हैं माहिर नफ्सियात, मरूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अब्दुल माजिद। आपके साथ हम बात करेंगे नशा मुक्त समाज के हवाले से। ये जो जावेद नशा मुक्त समाज है, इस सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर हमने SSP क्राइम से भी बात की, हमने कुछ लोगों के साथ भी बात की, आज हम एक माहिर नफ्सियात के साथ बात करने वाले हैं।
1: सही बात है, आजकल बाहर भी ऐसा माहौल चल रहा है कि इस मसले पर इसको हाईलाइट करने के लिए
0: बिल्कुल
1: LG साहब भी बहुत पेश रहते हैं, तो इस चीज़ को बहुत तकवीत देने की बहुत ज़रूरत है,
0: संजीदगी से लेना है ये मसला, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो इलाका है, हमारी ये जो वादी है, ये बिल्कुल नशा मुक्त हो जाए। चलिए ये सुनते हैं एक गज़ल, उसके बाद बात करते हैं।

0: जगजीत सिंह की आवाज में आपने गजल सुनी।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
3: यारो वन बाजी यारो वन।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
4: सुनो सजना
2: पयामे सुबह।
5: रशीद, हम में से अक्सर लोग जिंदगी की दौड़ में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम दौड़ किस तरफ लगा रहे हैं या हमें जाना कहाँ है।
0: जब इंसान अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल होता है ना, तो वो दूसरों की देखा देखी और उसी देखा देखी की दौड़ में शामिल हो जाता है।
5: सही बात है।
0: बगैर सोचे समझे कामयाबी, दौलत या शोहरत के पीछे भागता एक ऐसी दौड़ है जो कहीं नहीं जाती।
5: बगैर शोर और मकसद के मुसलसल दौड़ना इंसान को अंदर से खाली कर देता है। वो शायद दुनियावी कामयाबियां हासिल कर ले, मगर दिल और रूह सुकून से महरूम रहते हैं।
0: जावेद, इस दौड़ में हम हाल में जीना भूल जाते हैं। रिश्ते, सेहत, दिल का सुकून, सब कुछ नज़रअंदाज हो जाता है।
5: रशीद, अक्सर लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी कहते हैं क्या यही जिंदगी है, क्योंकि जब सफर बेशुऊर हो तो मंजिल भी बेमानी लगती है।
0: सही बात है। जिंदगी दौड़ने का नाम नहीं है जावेद, समझकर चलने का नाम है। शऊर के साथ जियो, मकसद के साथ चलो और हर कदम को सोच समझ कर रखो, तभी जिंदगी सच में कामयाब और पुरसुकून होगी।

0: तो जावेद, हमें घड़ी इशारा कर रही है कि 9:20 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे खबरें।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह चुनाव बुझे वह मिनट सपद खबर हूं बुलेटिन हूँ फारूक अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हन वोनमुत नारकोटिजमस खिलाफ 55 दो ब्रोह जम्मू पे शुरू करना आमुत अभियान वकस तारीखी तहरीकी मज तब्दील सपुदमुत। गांधरबल मनशियात मुखालिफ पद यात्रा जंड हवित रवान कर ब्रोह खिताब करान वोन एल जे एन जतम 55 दोन दौरान आय 1,036 एफ आई आर दर्ज कर 1,018 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार कर आय स्मगलरन हिंद हथ जावेदाद अटैच कर अमि अलाव आय 7 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर 130 ड्रग स्मगलरन हिंद पासपोर्ट आय मनसूख कर।
2: कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हारे नेटवर्क एक एक करके ढहा दिए जाएंगे। ये हमारा हलफ भी है, हमारा वादा है कि हर ड्रग तस्कर, हर नार्को आतंकवादी अपने अपराधों और अपने पापों की कीमत चुकाएगा। आइए साहस के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ें, आइए एकता के साथ हम मिलकर के आगे बढ़ें, आइए विश्वास के साथ हम मिलकर आगे बढ़ें और जम्मू कश्मीर की तारीख ये दर्ज करे कि हमारे 100 दिन के जन आंदोलन में गांधरबल नारको आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और गांधरबल के लोगों ने विजय प्राप्त की।
1: जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हिंद सीनियर नायब सदर अनिल गुप्ता तो हेल्दी इंडिया स्ट्रांग इंडिया चेयरमैन हीरा लाल एब्रोल सिंदिस कयादतस मज वफदन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सत मुलाकात अथ दौरान कोर बैन अवी पैरा एथलीट सरदार चंदीप सिंगन तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सत मुलाकात। लेफ्टिनेंट गवर्नरन दुत चंदीप सिंगस हाल ही मंगोलिया मज मुनद कहमिस एशियाई पैरा ताइकोंडो चैंपियनशिप मज सोन सद मेडल जेनस पे मुबारकबाद। साइंस तो टेक्नोलॉजी हिंद वजीर सतीश शर्मा वोनमुत जम्मिस मज मौसमियात महकम के इलाकई मरकज इफ्तदा अक मील कन हैसियत थान जम्मू कश्मीर तो लद्दाख मज मौसमी पेशन गोई सलाहियत आफतन सत निपटन चन तैयारियन साइनसी तहकीक तो अवमी तहफुज नन प मजबूत बनावि अम मरकज दस तुल रात मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंगन। वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाको पे आमतों कैंसों अवमी वफदों बई वजीर अला सिंदिस रबत दफ्तर मज वजीर अला सिंदिस मुशीर नासिर असलम वानी सत मुलाकात कर तिमन पन मसल तो मुतालब अथ मौक पे बूझ मुशीर मौसूफन तिंद मसल तो शिकायत गौर सान तो तम मुनासिब तो वक्त पे अंजरव दिक मुतलक हाकम इकदाम कर हिदायत। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलोवन हिज अफसरन हिज अख मीटिंग तलब करित 21 जून जम्मू कश्मीर मज मुनद सपदन वोल नीट यूजी दोबारा इम्तहान के पुरमन महफूज शिफाफ तो मुनजम इनकाद बापत कर आमतन इंतजाम साम चीफ सेक्रेटरियन दुत इम्तहान मुनसिफान तो शिफाफ तरीक यकीनी बनाने बापत मुतलक महकमन दरमियान करीबी तालमेल किस जरूरत पे जोर। मौसमस मज तब्दीली तो गर्मी हुन सूकन खास पे बुजर्ग नफरन जिसमस मज आब तो नून कमी महसूस सपदान अत सिलसिलस मज वो बुजर्गन बापत एहतियती तदबीरन हिंदिस बारस मज बुजर्ग नफरन हिंदन तिबी मसलन हिंद माहिर डॉक्टर जुबेर सलीमन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान
3: बुजुर्गन पजि गर्मी मं खास कर 12 बजे पे 2 बजन तान तापस नबर नेरने निश परहेज करुन त्रेश दोहस ORS अख गिलास लस लेम त्रेश तो होम मेड फ्रूट जूस पजि दोहस वक्त पत वक्त 2 बजन तान चोन अगर त्रेश आस न बासान ते गजस मं ताज मेव खरबूज हैंदवेन सब्जी जाम दूध लर तो हल्क डाइटस दियो तरजी चक्कर जेव खोशक गचिन कमजोरी ज्याद नंदर यिन मल कम गचुन या कन्फ्यूजन बुजुर्गन मं डिहाइड्रेशन या आबच कमी हज निशानी आसान अत सूरत मज पज त्रेश चेन तो डॉक्टरस निश गचुन।
1: SSP अनंत नाग अमूद अशोक नागपुरियन हिज पहलगाम दौर कर श्री अमरनाथ जी यात्रा बापत सिक्योरिटी तैयारियन साम तमो कोर लंगबल तो नुनवन जेर तमीर पुलिस तनसीबात हूं तयन SSP हिज तमीरती कामी हिंदिस रफ्तारस तो मयारस साम हेवान।

0: बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंसस का डेटा है वो नॉन शेयरेबल डेटा है, नॉन एडमिसिबल डेटा है। सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली टेल्स कि जो सेंसस का डेटा है ये सवाल ही नहीं है कि कहीं किसी इनकम टैक्स वालों को किसी एजेंसी वालों से शेयर किया जाएगा।
1: जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में मारूफ कलमकार, ब्रॉडकास्टर, शायर और मुहक्किक डॉक्टर सतीश वेमल के साथ मुलाकात की एक निशस्त मुनाकिद हुई, जिस दौरान उनकी अदबी खिदमात को उजागर किया गया। तकरीब में अदब नवाजों की एक अंजुमन मौजूद थी। निशस्त की सदारत पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शौक ने की। सतीश वेमल के बारे में एक जामिया मकाला डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने पेश किया। न्यूज रील के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: सतीश विमल एक एनसाइक्लोपीडिक पर्सनैलिटी है। वो एक सुखनवर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तर्जमाकार हैं और वो कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। श्री शायर है जो इश्यूज पर लिखता है, जो समाज की तीसरी आंख में कहूंगा उन्हें बड़ी बारीक बीनी से चीजों को देखता है, उन्हें अच्छी सूरत में पेश करता है। वो एक सकाफत साज है और एक अदब साज, अदब नवाज और मंजे हुए अदीब है।
1: प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर सतीश वेमल का कलाम वादी के एक मारूफ गुलकार उस्ताद मुनीर अहमद ने पेश किया, जबकि कलमकार मौसूब से सवालों जवाब का एक दिलचस्प सेशन भी हुआ। ये हैं खुद डॉक्टर सतीश विमल के तासरात।
3: एकेडमी ने मेरी छोटी सी अदबी कोशिश को रिकॉग्नाइज करके इतनी शानदार महफिल का इनेकाद हुआ। मुदल्लल बात हुई मेरे छोटे से कंट्रीब्यूशन पर, जो मैंने कुछ लिखा है उसके हवाले से बात हुई। मुझे लगता है कि मुझे अपने ही लोगों तक ज्यादा बेहतर रसाई का मौका मिला और इस तरह का सेलिब्रेशन न सिर्फ मेरे लिए अच्छा है बल्कि मैं मानता हूं कि एक तहरीक सी बनती है कि जिसने भी थोड़ा सा किया उसकी हौसला अफजाई होती है।
1: एकेडमी की जानिब से कलमकार मौसू को इज्जत अफजाई के तौर पर तौसफी सनद और शॉल पेश किया गया, जबकि आकाशवाणी के शुबे खबर की तरफ से भी डॉक्टर विमल की इज्जत अफजाई की गई। शोबे खबर के साबिक सरबरा और मारूफ अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक की तासुरात।
4: डॉक्टर सतीश विमल के कई रुख हैं और वो कई जबानों में लिखते हैं और हमारा जो मासिर अदबी मंजरनामा है उसमें एक इंतहाई अहम नाम है और उनका जो तख्लीकी शऊर है, तनकीदी शऊर है, वो बहुत गहरा है और मुल्की अदबी मंजरनामे और अदबी रिवायात पर उनकी गहरी पकड़ है और उनकी तख्लीकात भी बहुत ही अच्छी है, बहुत आला दर्जे की है।
1: मुल्क भर में यकुम जून से खेत बचाओ अभियान का आगाज हुआ। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से एक माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। इस पहल के बारे में अपने पैगाम में वजीर मौसूक ने कहा,
5: 30 जून तक खेत बचाओ अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचाने।
1: खेत बचाओ अभियान के सिलसिले में वादी के दीगर कई अजला में भी इब्तदाई प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। मरकजी सरकार ने इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
6: रामन ठाकुर, सुल्तानपुरा कंडी, 12 मुलाकात रहने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये आम लोगों के लिए ये गोल्डन कार्ड की स्कीम राइज की है, का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इस स्कीम के लिए हम बहुत ही मशहूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, खुसूसन अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि जिसने ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट इस एक आदमी को इसकी सहूलियात राइज की है।
1: समीन, इसके साथ ही न्यूज रील का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरानी आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब इश्फाक शाह और कोशिकी कश्यप, मुदीर शबीरुजमा, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आसिफ बशीर और एन ए इशरत, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
7: अभी आप हमारे न्यूज रूम की पेशकश समाप्त कर रहे थे न्यूज रील।
8: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 8.6 मीटर यानी अक्सा सखत शिरकल

0: SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोझो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

0: एक बारी कर लेते हैं, लेकिन हमने पिछले, मैं 25 साल की बात कर रहा हूं तजुर्बे की, तो ये एक बार इस्तेमाल करना फिर बार बार बन जाता है, तो ये फिर छूटने का नाम नहीं लेता है, ये बच्चा उससे निकल भी जा
1: नहीं सकता,
0: लेकिन निकल नहीं सकता है बगैर इलाज के, जब तक ना हमारे पास आए हम उनको इसके अगेंस्ट में, इसके सही करने के लिए दवाई दे दें, तब तक ये खुद इससे निकल नहीं सकता। सो पीयर ग्रुप प्रेशर एक है। दूसरा, बहुत हद तक जो हमारे पास इससे पहले अवेलेबिलिटी का मामला था, सप्ले का मामला था,
1: ठीक है,
0: हर नुक्कड़ पे उस हिसाब से समझिए कि ये मंशियात की अवेलेबिलिटी थी, ये एक हकीकत है। बट रिसेंटली मैं यहाँ पे ये एक सराहना करूँ और अप्रिशिएट करूँ, जो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो 100 डेज नशा मुक्त भारत अभियान किया, तो मेरी तजुर्बे के हिसाब से, मेरा जो 25 साल का साइकियाट्री में सफर है, अभी तक ऐसा कभी कैंपेन नहीं चला
1: है बिल्कुल,
0: कि जो तकरीबन हर घर घर में तकरीबन इसकी न्यूज गई है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे लोग डिनाइल में होते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं हो सकता, वो फलां स्कूल में पढ़ता है, वो फलां कॉलेज में पढ़ता है, वो फलां गाड़ी में जाता है, लेकिन हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम आज से 20-25 साल पहले बात करें, जब मैंने स्टडी किया था, मोस्टली हम लवर स्ट्राटा के बच्चों को इसमें मुलव्वस होते हुए देखते थे, या टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ट्रेड के साथ जो मुंसलिक थे उनको देखते थे, लेकिन सडनली एक शिफ्ट आ गया कि हम, ये अब सेक्टोरियल नहीं रहा, ये किसी सेक्ट के लिए अब मखसूस नहीं है, यह प्रॉब्लम ये उसी पर महदूद नहीं है, इट हैज क्रॉस दैट
1: बी, बड़े से बड़े स्कूल,
0: इट इज इन द लोअर क्लास, मिडिल क्लास और जो अपर क्लास के लोग हैं सब में आ गया, बड़े बड़े स्कूल्स में आ गया, बड़े बड़े घरों में ये आ गया, तो समझो जैसे कोविड हर घर में आया था, उसी तरह बदकिस्मती से ये सबस्टेंस अब्यूज, जहां अभी बिजली का इंतजाम नहीं है गाँव में या पानी नहीं आ रहा है, वहां पे भी ये ड्रग एडिक्शन पहुंच गया।
1: तो डॉक्टर साहब, एज लिमिट क्या है, जिस जो कहते हैं ना कि इस एज में ये ज्यादा पकड़ लेता है इंसान को?
0: तो मैंने इससे पहले भी कहा कि एज लिमिट तो ऐसे कुछ नहीं है, हमने एज यंग एज 12 साल के बच्चे को भी देखा, 12 साल के बच्चे को जो हीरोइन यूज कर रहा था, और हमने 67 ईयर्स ओल्ड मेल को भी देखा, 67 साल के मेल को भी देखा जो हीरोइन यूज कर रहा था। बट जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा एज ग्रुप है, ऑब्वियसली यही है 50-35 ईयर्स, बिकॉज इनका कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा इमैच्योर होता है, ये सोचने समझने की सलाहियत उतनी ज्यादा नहीं रखते हैं, इनका जिंदगी का तजुर्बा उतना ज्यादा नहीं होता, और साथ साथ में ये शॉर्टकट्स चाहते हैं, ये ऊंचाई पे जल्दी जाना चाहते हैं, इनको नहीं पता होता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे आइकन्स हैं, उन्होंने कितने पापड़ बेले होते हैं उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए, वो बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये शॉर्टकट्स करने के लिए ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इनको तफरी मिले, इनको बड़ा वो प्लेजर मिले, उनको खुशी मिले, लेकिन ये खुशी सही खुशी नहीं है, ये टेम्पररी खुशी है और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है।
1: डॉक्टर साहब, ज़हनी तनाव, बेरोजगारी का प्रेशर, मायूसी, खानदानी तफक्कुरात, मियां बीवी के दरमियान अच्छी नहीं बन रही है तो बच्चा भी मुतासिर होता है, ऐसे भी अवामिल हैं?
0: ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बात करें, या इवन लोकल लेवल पे बात करें, या हम अपने इंडिया की बात करें, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, या यहाँ पे नामसाइब हालात भी थे 30-35 साल से, अगर आप कहीं भी देखें दुनिया में, आप पंजाब की बात करें जहाँ पे टर्मोइल चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या कहीं भी आप वेस्ट एशिया की अभी बात कर रहे हैं, या इससे पहले नाम की बात कर रहे हैं, तो जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, वहां पे सब्सटेंस अब्यूज होता है, इट इज फॉलोड बाय सब्सटेंस, ये नई कोई चीज नहीं है। बट ये जानना जरूरी है कि हम हमेशा कहते हैं कि इन इन चीजों से होता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हमारे पास इतने लातेदाद नौजवान हैं, जिनकी मैं सराहना करूंगा, जो कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, पैसे के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, रोजगार से हिसाब से, लेकिन फिर भी वो इस नशे की तरफ देखते भी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: वो भी हमारे पास लोग, मेजॉरिटी वही लोग हैं जो इसकी तरफ देखते नहीं है। तो हम बाकी लोगों को, जो हमारे बाकी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको उनकी तरफ देखना चाहिए कि वो भी इसी कश्मीर में रहते हैं,
1: सही बात है,
0: इसी टर्माइल में वो भी जने हैं और इसी टर्माइल में उनका नशोनुमा भी हुई है,
1: उनके घरों में भी प्रॉब्लम्स होती
0: है, बिल्कुल उनके घरों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके घरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके घरों में भी

0: किसी ने किसी तरीके से इस 30-35 साल में कोई ना कोई जानी माली नुकसान हुआ है, या चाहे हम सैलाब की बात करें या अर्थक्वेक की बात करें। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक फर्द, हर एक घर इन आफतों से असरअंदाज हुए हैं हम लोग। सबने सब्सटेंस अब्यूज नहीं किया, सबने एडिक्शन नहीं किया, तो दैट मींस कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इंडिविजुअल्स के अपने भी होते हैं, फैमिलीज के अपने भी होते हैं, वो इस चीज से दूर रह सकते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन जनरली जो हमारे बच्चे हैं वो कोपिंग के हिसाब से बड़े कमजोर होते हैं, वो अपने दोस्तों को ज्यादा सुनते हैं और माँ बाप का कम सुनते हैं इस एज में। उनको लगता है कि हमारा दोस्त ही सही कह रहा है। लेकिन यहां जानना जरूरी है कि हमारा जो अभी माहौल बना है ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड, यहां पे दोस्त को उसके ऑफर से इनकार करना सबसे बड़ा आपके पास वेपन है, आपकी ताकत है। वो कॉन्फिडेंस है आपकी, नहीं मुझे ये सिगरेट नहीं पीना है, मुझे ये नशा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार किया, फिर से मैं वार्न करता हूं, जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं चाहे बच्चे या जो उनके वालदेन प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं यहां वाजिया करूं कि कहते हैं ना सिर्फ एक बार करेंगे बस उसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन वो एक बार बार बार हो जाता है, जो हमने अपने तजुर्बे से देखा।
1: डॉक्टर साहब बातें बहुत करनी है आपके साथ, अशी ये वजह थी जानून जे अगर ऐसा बचे अथ वाति कुन गो तो अकिस मोलिस माजे क्या ही सिम्टम्स बासन अमिस मस्त तथा पेट करो कत। मगर यपर अख बर्तन अस थमस तुहदी बापत तो बोजन वाली हिंद बापत थी गोड़ बोजो ये तम पत करो बे कत।

0: एक मस्नूई खुशी खरीदी है।
1: बिल्कुल।
0: और वो मस्नूई खुशी, जो भी मस्नूई चीज होती है, उसकी लाइफ टाइम बिल्कुल कम होता है, तो ये कुछ टाइम के बाद खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे लोग इस खुशी को और पाने के लिए और ऊपर लेने के लिए इन मंशियात का फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि ये तकलीफ क्यों है। तकलीफ इसलिए है कि ये बच्चा डिपेंडेंट बन जाता है इस इन सबस्टांसेस पे, इन मादों पे। अगर ये आ जाए, किसी भी स्टेज पे आ जाए, कोई किसी ने 5 साल किया है, 5 महीने किया है, 10 साल किया है, देर आए दुरुस्त आए, अगर आप आएंगे बट कम अर्ली, अगर आपने स्टार्ट किया है और कहेंगे हम कल छोड़ेंगे परसों छोड़ेंगे, जो हमारे पास बच्चे आते भी हैं, डॉक्टर मुकरनबाज इलाज के मंगसनबाज एडमिट बर्जी में पगा सो पगा शुन एक्चुअली जहन ये वहाँ।
1: ओके।
0: सो जो भी बच्चे इसमें मुलव्वस हैं अभी, जो इस्तेमाल करते हैं इन गलत चीज़ों का, इस मंशियात का, हम समझते हैं कि ये एक तकलीफ है और लोग भी समझने लगे हैं। कल ही मैं, आज मेरे ख्याल में, मैं एलजी साहब की तकरीर सुन रहा था रिसेंटली, जो गांधरबल में उन्होंने पद यात्रा की, परसों उनके साथ मैं मिला भी, तो ये क्लियर कट ये मैसेज है कि वी हैव टू पनिश ड्रग पेडलर्स जो इसका बिजनेस करते हैं।
1: सही बात।
0: लोगों के घर जला के वो अपने घर बनाते हैं, अपने बंगले बनाते हैं, लेकिन जो इसमें बच्चे मुलव्वस हैं वो पेशेंट्स हैं, उनका इलाज करना जरूरी है। लेकिन इलाज हम तभी करेंगे क्योंकि हम घर जाके ढूंढ ढूंढ के इनको नहीं निकाल सकते।
1: आपके पास
0: खुद हमारे पास आना है, जैसे बाकी मरीज आते हैं और हम आपका इलाज करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने एलजी साहब की बात की, ये जो हमारे एलजी साहब हैं श्री मनोज सिन्हा जी, इनकी जबरदस्त कोशिश और काबिश है कि ये जो ड्रग है मनुष्यात ये वादी से दूर होना चाहिए। बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, ये सराहने के लायक बात है, जिस तरह से आपने भी कहा।
0: बिल्कुल।
1: अब अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करें, क्या फैसिलिटीज आपके पास उतनी हैं कि आप रिहैबिलिटेट कर सकें ऐसे लोगों को?
0: देखिए, मैं एक चीज कहूंगा आपको कि जो हमारे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, 2016-17-18 में हमने एक सर्वे किया था, नेशनल ड्रग यूज सर्वे, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली उसको नेशनली कोऑर्डिनेट कर रहा था, और जो हमारा स्किम्स मेडिकल कॉलेज है, JVC हॉस्पिटल, वो इसका एक अहम हिस्सा था, और 12 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जब ये स्टेट थी। तो हमने तकरीबन 6-7 जिलों में ये सर्वे किया, वहीं से हमें बेसिकली ये आंकड़े आगे ये एदाद शुमार आया कि हीरोइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद ही, क्योंकि हम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का आपने सवाल पूछा, उसके बाद जब हमने मैग्नीट्यूड देखा, और जब मिनिस्ट्री ने हेल्थ और होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने मैग्नीट्यूड ऑफ हीरोइन एब्यूज देखा जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो कदम उठाने हैं। तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगी इंडिया में जहां तकरीबन हर एक जिला सदर मुकाम पे एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं।
1: अच्छा।
0: और दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं, इलाज अच्छा। मुफ्त में मिलता है, बस यही है कि पेशेंट्स को आगे आना है, मरीज को आगे आना। अब जब आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, वो अलग सी बात है, वहां पे हमारा एक वैक्यूम है, जो मैं अभी रिसेंटली में एलजी साहब से जो मिला भी था, मैंने इसकी इस्तदा भी की थी, और उन्होंने बड़े, आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने बोला कि हाँ, रिहैबिलिटेशन एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें काम
1: करना चाहिए।
0: तो उनको बिल्कुल एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही क्लियर उनका विजन है अबाउट दिस ड्रग एडिक्शन को कैसे खत्म किया जाए, हम अपने समाज को नशा मुक्त कैसे करें, इससे बचाएं कैसे। मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया कैंपेन है। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक वालिद होने के नाते, एक इस समाज का हिस्सा होने के नाते, मैं जितनी भी तारीफें करूं, मेरे ख्याल में उस हिसाब से बहुत कम है जो एलजी साहब ने लीड रोल लिया है। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, इट इज नॉट अबाउट ओनली सेंसिटाइजेशन, इट्स अबाउट दैट पीपल नोइंग कि द पर्सन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो खुद इतने संजीदा हैं इस बारे में, इतना सीरियसली इसको देखते हैं, हमें भी इसको इतना ही सीरियसली देखना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, खानदान के बाकी अफराद नशे के शिकार फर्द की बहाली में किस तरह से मस्बत रोल, मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं?
0: देखिए, पहली बात तो इसमें दो हिस्से हैं, एक तो वो खानदान, वो फैमिलीज जो जिनके बच्चे अल्लाह के फजल से अभी तक बचे हुए हैं, और

प्रोग्राम है पायम सुबह, जिसे आप 7:10 से 11:30 पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, और आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब से, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से, प्रोफेसर एंड हेड साइकेट्री एंड सब डीन स्किम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं नशा मुक्त समाज के हवाले से। एक सवाल ये है कि आप एज अ डॉक्टर अपना फर्ज निभा रहे हैं, आपने कहा कि एक तो हम दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आप एक ही जगह पे नहीं बैठे, वो मुझे भी पता है, चूंकि हम आपस में एक दोस्ती है हमारी, मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं इसके लिए। दूसरा हुआ वो लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उनका भी फर्ज बनता है, जिस तरह से माँ बाप का फर्ज बनता है। आपने अभी कहा कि आप अपने घर की तरफ मत देखें कि आपका बच्चा सेफ है, तो बाकियों को भी आप सेफ रखने की कोशिश करें। आयमा हजरात हैं, मुफक्किर हजरात हैं, शायर हजरात हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, क्या रोल बनता है लोगों का?

Ти чи зима.

Samintu esu bozan, Chakrtaru, Peshiskaran. Obdoras šit hafiz ta sveti, jiman išbozvo tai kalame šimas vakir. Ye Akashvani Srinagar hai, medium wave 268.8 meter, aur FM 103.5 megahertz par. Samin, 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी देर में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे, बस जरा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है।

0: मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malvia Nagar on the 3rd of this month

सामीन, आप 1972 में बनी हुई फिल्म का नगमा समाप्त कर रहे हैं। ये फिल्म है शोर और आवाज लता मंगेशकर।

जहाँ दोस्तों आपने मुकेश और लता मंगेशकर को सुना फिल्म शोर में, शोर फिल्म जो 1972 में बनी है। तो जिंदगी की बात, चलिए यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आपसे कि नफ्सियात कहती हैं अगर आप बहुत हंसते

दोस्तों, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। बहुत ही खूबसूरत गीत आप तक पहुंचा, ये मुझे बहुत ही पसंद।

जी दोस्तों, जिंदगी के बाद फिर से चली है तो यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि जिंदगी बहुत आसान होती है, मगर हम बेकार की टेंशनों में उसको जाया कर देते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने बात नहीं की, उसने बात नहीं की, बस बेकार की बातें हैं। कोई बात नहीं करता तो इसमें अफसोस कैसा। सबकी अपनी जिंदगी है और अपना रोल, रिश्ता खून का हो या एहसास का। किसी को मजबूर करके अपनी तरफ जो है हम ला नहीं सकते हैं। तो आप खुश रहें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें और फारिग वक्त में अपना पसंदीदा मशगला करें, वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिले। बस मसरूफ रहें, बस बेकार की बातों में उलझना छोड़ दें जो आपको अहमियत नहीं देते। अपनी ज़िंदगी में आपको जो है उनको सरसरी शामिल करना है। आटे में नमक हो या ना हो, रोटी तो बनती है ना। ऐसे ही साथ कोई हो या ना हो, जिंदगी तो गुजर जाती है और गुजर भी जाएगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ 55 रोज पहले जम्मू से शुरू किया गया अभियान अब एक तारीखी तहरीक में तब्दील हो गया है। गांधरबल में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि पिछले 55 दिनों के दौरान 1036 FIR दर्ज किए गए, 1128 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार किए गए, नीज स्मगलरों की 100 जायदादों को अटैच किया गया, इलावा अजी 700 ड्राइविंग लाइसेंसेस रद्द किए गए और 130 ड्रग स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख किए गए। मुनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। पुलिस ने हबक श्रीनगर में राहिल मंजूर मल्ला नामी मुनशियात फरोश की 1,30,00,000 रुपये मालियत की गैर मनकूला जायदाद अटैच की है। इसी तरह की एक और कार्रवाई में अपर सोरा श्रीनगर में आदिल रशीद गुड्डू नामी ड्रग स्मगलर का 2,20,00,000 रुपये मालियत का रिहायशी मकान कुर्क किया गया। पुलिस ने ड्रग स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में सुरअत लाने का अज़्म दोहराते हुए लोगों से इस सिलसिले में तआवुन की अपील की है। एलजी मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू से की थी और उन्होंने तमाम अजला में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की क्यादत की। अभियान की शुरुआत के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनुष्यात के नेटवर्क को

0: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अस्सलाम वालेकुम।
7: प्रोग्राम बज़्म-ए- निस्वां लेकर मैं शौकिया कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन खैर वाफियत से होंगे। खासकर अपनी बहनों से मैं मुखातिब हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि आप मौसम बदलने के साथ अपने घर के कामों में मसरूफ होंगी, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो ख्वातीन का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जहां हमें घर के रखरखाव को बदलना पड़ता है, सर्दियों के बाद फिर यहां गर्मियों की बिछाई है, पर्दे हैं, अपने बच्चों के कपड़े हैं, अपने कपड़े हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि ख्वातीन को करने पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा काम है ख्वातीन के लिए वो है खाना पकाने का, अपने बच्चों की फरमाइशें पूरा करने का। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको किसी के दिल में उतरना है तो आप पेट के रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि दिल में घर करने के लिए पेट के रास्ते को मुंतखब किया गया है। यानी जब आप अच्छे अच्छे पकवान अपने घर वालों के लिए पकाएंगे तो सीधी सी बात है उनकी, वो भी अपनी मोहब्बतें आप पे लुटाएंगे। लेकिन फूड जो है, खाना जो है, ये हमें घर में भी मिलता है, लेकिन अब जो रवाज है वो बाहर खाने का ज्यादा हो गया है। हमारे बच्चे घर से ज्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं माएं भी कहती हैं कि हम बच जाएंगे अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाने से, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि बाहर से ही खाना मंगाया जाए। सामईन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो 6 जून को मनाया जाता है, और आज के दिन के हवाले से बहुत सी बातें हम फूड सेफ्टी के हवाले से करेंगे। लेकिन आज जिस एस्पेक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, या फिर हमारे जो किसी भी एज के लोग हों, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर के खाने को। तो फूड सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रक्षंदा रफीक। अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
8: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज के प्रोग्राम में दावत देने के लिए।
7: जी रक्षंदा, पहले तो आज के दिन के हवाले से जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 6 जून को, इस हवाले से कुछ बताएं।
8: बिल्कुल, तो शौकिया साहिबा, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये हर साल मनाया जाता है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि हर साल 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इस वजह से बीमार होते हैं क्योंकि उनके खाने में कंटामिनेशन है, उनके खाने में आलूदगी है। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं, और हमारे सभी सामईन बहुत बखूबी जानते हैं कि किस तरह से कंटामिनेटेड फूड से कई बीमारियां फैलती हैं, सदियों से फैलती आई हैं और अभी भी फैल रही हैं। लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि पिछली 2 दहाइयों में ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बाहर खाने का चलन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, इनकी जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम लोग भी जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि बाहर ही खाएं, ये जाने बगैर कि उस खाने की क्वालिटी कैसी है, उस खाने को तैयार करने का तरीका कैसा है, उस खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसा है, क्या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो फ्रेश हैं या नहीं, क्या उनको साफ तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है या नहीं, क्या पहले सब्जियों को धोया जा रहा है या नहीं। अभी आप देखेंगे कि कितने ऐसे स्कैंडल्स हैं जो रोज रोज सामने आते हैं, कितनी बार जो

0: रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता है, उनको उनके किचन्स को बंद कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ वो प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जाते जो फूड सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है.
1: जी रक्षंदा, अगर हम देखें कुछ पिछले हफ्ते की बात करें
0: जी
1: तो कई एक रेस्टोरेंट्स हैं जो कि श्रीनगर शहर में बंद कर दिए गए
0: बिल्कुल
1: ड्यू टू के उनका जो किचन है वो साफ नहीं था.
0: बिल्कुल. तो ये देखें, फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक 5 स्टेप जो है, एक सिस्टम होता है कि कैसे आप अपने फूड को सेफ बना सकते हैं फॉर कंजम्पशन. तो उसका जो पहला स्टेप है वो यही होता है कि आप देखें कि जहां पे खाना पक रहा है वो जगह साफ है या नहीं. खाने की बात तो उसके बाद आती है. मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी जगह बाहर खाने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि किचन के बाहर नो एंट्री का एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप किचन में नहीं आ सकते. तो कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि किचन में क्यों नहीं जाया जा सकता? इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि अक्सर इन जगहों के जो किचन्स होते हैं वो साफ नहीं होते हैं. एक ही बर्तन में मुख्तलिफ खाने पकाए जाते हैं, बिना धोए फिर उस बर्तन को दोबारा यूज किया जाता है. पानी का जो है कोई हिसाब नहीं है कि पानी साफ है नहीं है, किस तरह से है. हमारे एक जानने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई थी कि वो एक हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहां पे उन्होंने ये देखा कि किचन के बाहर अमूमन बोर्ड लगा होता है कि नो एंट्री, एंट्री ओनली फॉर स्टाफ, एंट्री ओनली फॉर कुक्स, शेफ्स. तो उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट के बाहर, किचन के बाहर एक बोर्ड लगा था कि यू आर वेलकम टू सी आर किचन. तो ये एक कितना बड़ा मेजर है, आप ये देखें कि आप जाके देख सकते हैं कि किचन में सफाई सुथराई है या नहीं, खाना किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल होने चाहिए. हमारी जो कॉरपोरेशंस हैं उनको इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफेज हैं, जहां जहां पे भी खाना बन रहा है फॉर द पब्लिक, वो जगहें बहुत साफ होनी चाहिए. वहां पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं बहुत साफ होने चाहिए. कुछ टाइम पहले ही आप देखें जो रॉटन मीट का इतना बड़ा मसला हुआ था, कितने वक्त से हम लोग अल्लाह जाने क्या खा रहे थे, कुछ पता नहीं है कि किस जानवर का गोश्त खा रहे थे, कितना पुराना गोश्त खा रहे थे, वो सड़ा हुआ था, गला हुआ था, उसी की चीजें बना बना के हम खा रहे थे. और फिर आप देखें कि हमारी सेहत पे इस चीज का कितना बुरा असर पड़ता है.
1: देखिए रक्षंदा, जहां तक अभी आपने रॉटन मीट की बात की तो उसमें ये देखें कि जहां अच्छे खाने भी बनते थे
0: जी,
1: उनके लिए भी बहुत, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा.
0: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि एक एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती है. अगर आप ये देखें कि कोई रेस्टोरेंट हो जो बहुत अच्छा साफ शफाफ खाना बनाते हो, लेकिन अब क्योंकि लोगों के दिमाग में ये स्टिग्मा चला गया कि शायद हर जगह पे रॉटन मीट का इस्तेमाल हो रहा है, शायद हर जगह पे ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो फिर एक समझे आपकी एक बात ही बन जाती है. पर ये बहुत जरूरी है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स चेक में रहें, हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो चीज चेक में रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात.
1: जी तो देखिए, ये तो बात रही कि साफ सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए. अच्छा फिर देखिए, कई ऐसे पदार्थ इसमें डाले जाते हैं कि जैसे चाइनीज खाने हैं, तो इसमें सेहत पे क्या असर पड़ता है?
0: देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि जो हमारे घर में खाना बनता है, मसाले, नमक, तेल, उस सब में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन हम लोग जो हैं, हम एक अपने घर में जो खाना बनाएंगे उसके लिए हम एक क्वालिटी इंग्रेडिएंट ही चूज करेंगे हमेशा. हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट्स आए वो साफ शफाफ हों, वो अडल्टर्ड ना हों, वो कंटामिनेटेड ना हों. लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि रेस्टोरेंट्स में क्योंकि खाना बहुत बल्क में बनता है तो उसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो साफ शफाफ नहीं यूज किए जाते. जो मसाले हैं, जो तेल है, जो बाकी चीजें हैं वो साफ इस्तेमाल नहीं की जाती, वो क्वालिटी वाली इस्तेमाल नहीं की जाती, तो उन चीजों का हमारी सेहत पे बहुत ही बुरा असर होता है. देखिए फूडबोर्न डिजीजेस तो बहुत से होते हैं, हेपेटाइटिस ए है, टाइफाइड है, ये सारी डिजीजेस हैं जो अक्सर आप देखेंगे कि हम कहीं बाहर से खाना खाकर आए और अगले दिन पेट खराब हो गया या उल्टियां शुरू हो गई या बुखार हो गया, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गई. तो जो इंग्रेडिएंट्स है, एक तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, दूसरा जो खाना है उसकी प्रिपरेशन साफ शफाफ तरीके से नहीं होती, तो सेहत पे तो

0: बिल्कुल असर पड़ता है, हमारे स्टमक पे असर पड़ता है, हमारे लिवर पे असर पड़ता है, हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, इंटेस्टाइनल हेल्थ है, ओवरऑल जो हमारी गट हेल्थ है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो क्या उनके लिए ये बेहतर नहीं है कि अपने घर से दो रोटी एक ऑमलेट बना के ले जाएं जो वो बाहर का खाना खाते हैं। ठीक है, वंस वाइल ठीक है, लेकिन आप डेली बेसिस पे जब वो खाना खाते हैं और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके घर के बड़े हैं, वो भी आपको कहते हैं कि आप इस तरह का खाना ना खाएं, लेकिन ऐसा क्या है कि वही खाना लजीज लगता है आजकल के नौजवान बच्चों को?
0: देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि घर से लंच लेकर जाना या घर से अपना एक लंच बॉक्स लेकर जाना, अपने लिए खाना लेकर जाना एक बहुत ही अच्छी आदत है। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे लगता है जब तक मैं भी स्कूल जाती थी, हम हमेशा घर से खाना लेकर जाते थे, हमेशा हमारा लंच बॉक्स साथ जाता था। और आजकल भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में अपना घर से खाना पैक करके लेकर जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स की है, स्पेशली माओं की है, कि आप अपने बच्चों को घर से बिना घर का खाना दिए ना जाने दें, उनको ब्रेकफास्ट किए बगैर घर से ना जाने दें, कि उनको वो मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो घर से निकल के कहीं बाहर कुछ खा लें या कहीं रेस्टोरेंट चले जाएं, कैफे चले जाएं। जब उनके साथ घर का खाना जाएगा तो ऑब्वियसली, और मुझे ये भी लगता है कि बच्चों में ये वैल्यूज इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में खाना पका रहे हैं तो आपके बच्चों में ये मॉरल्स होने चाहिए, ये वैल्यूज होने चाहिए कि घर पे खाना बना हुआ है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। जब उनमें ये जब उनमें प्रिंसिपल, ये मॉरल आएगा, तो सीधी सी बात है कि वो हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम घर का ही खाना खाएं। लेकिन ये बात भी है कि बाहर का खाना, आप जैसे कि है कि अब थोड़ा सा ये होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, मोर दैन द फूड आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट के चक्कर में हम खुद को वो चीज़ें फीड करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स फीड करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बुरे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी, मैं कहूँ वी आर वेरी एजुकेटेड पीपल, हम लोगों को मालूम है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ देखें कि जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, देखिए ये आपने भी सुना होगा कि आवर बॉडी इज अ टेम्पल, हमें अपना ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी, हमारा माइंड हेल्दी होगा, हम जो करेंगे उसमें हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तंदुरुस्त है, हमारा दिमाग तंदुरुस्त है। तो इस सब चीज के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एजुकेट करें कि हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं कहूँगी कि खुद से मोहब्बत का सबसे पहला जो असूल है वो यही होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं, आपको उस बात का इल्म होना चाहिए।
1: जी देखें, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्या खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है या हमारे बच्चे हैं, उन्हें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि घर का जो खाना है वो साफ सुथरा रहता है और उससे कई बीमारियां दूर रह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, माँ के, दादी के, नानी के हाथ का बना हुआ जो खाना है ना, उसमें मोहब्बत होती है, क्योंकि वो आप पे करके खरीदते नहीं हैं।
0: जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। और मैं ये भी कहूँगी कि ऐसी बहुत सारी डिशेस होती हैं, ऐसी बहुत सारे जो पकवान होते हैं जो हमारे घर पे बनते हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं पर आपको वो टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो आपके घर की, आपकी जो माँ के हाथ की, नानी दादी, या मैं कहूँ मेरे बाबा बहुत अच्छे कुक हैं, उनके हाथ की जो लज्जत है, जो जायका उनके हाथ में है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रेस्टोरेंट कॉपी कर सकता है। और ये भी है कि जो हमारे घर का साफ शफाफ माहौल है, जिस तरह से खाना बनाया जाता है, वो भी आपको और कहीं पे नहीं मिल सकता।
1: तो चलें, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए ये एक गजल सुनते हैं।

0: रिस्मा, मैं एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम आज बात कर रहे थे फूड सेफ्टी डे के बारे में, कितना ज़रूरी है हमारे लिए अच्छा सेहतमंद खाना खाना। और हमारी आज की मेहमान थी रक्षंदा रफीक, जो कि अभी भी हमारे साथ प्रोग्राम में है। जी रक्षंदा, क्या कहना चाहेंगी अब आप?
1: तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम का जो वक्त है वो अब ख़त्म हुआ
0: इसीलिए तो
1: चाहता
0: हमने आपको ये गज़ल सुनवाई,
1: जी
0: ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए।
1: जी तो प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि नौजवान लोग भी ये प्रोग्राम सुनते होंगे, और
0: जी
1: मुझे यकीन है कि बिल्कुल सुनते होंगे। तो उनसे मेरा यही कहना है कि खुद को एजुकेटेड रखें हर चीज़ के बारे में। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप जो खा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या वो फ्रेश हैं, क्या वो साफ़ हैं।
0: जी
1: कीप योर सेल्फ एजुकेटेड। हम कहते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है, जो जो हम अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं।
0: जी रक्षंदा, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक ताला आपको उम्र नूर शाने ज़ुलकरनैन अता फरमाए। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर। आप समाप्त कर रहे थे बज्म निस्वा। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। हम आकाशवाणी श्रीनगर से बोल रहे हैं, एक दिन के
2: आकाशवाणी
0: एक
2: समाचार
0: बजे
2: के साथ मैं
0: चलिए
2: लवलीन
0: आपको।
2: निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7

7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल

जॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टोन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों का प्रोग्राम लेकर मैं शाहिना ऋषि आपकी खिदमत में हाजिर। फौजी भाइयों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और हमारी यही दुआ है आप जहां कहीं रहे सलामत रहे। जी हाँ, आकाशवाणी श्रीनगर से पेश है खास नगमों भरी महफिल जो हमने सजाई है अपने अजीज फौजी भाइयों के नाम।

जहाँ दोस्तों आपने यस बॉस फिल्म का नगमा सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल आपने सुने। तो फौज भाइयों अगला एक और दिलकश सा नगमा आप सबके लिए ये रहा।

जहाँ फौज भाइयों, आप जो ये नगमे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहली किस्म उन लोगों की हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं, खामोश तबीयत होते हैं और लोगों के हजूम से दूर भागते हैं, बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते हैं। जो ये सोशल पार्टीज़ वगैरह हैं, जो भी हंगामे वाली चीज़ होते हैं, वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे शोरगुल होता है वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा जो लोग होते हैं उनमें रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको जो है उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट लोग। और जबकि दूसरी किस्म उन लोगों की हैं जो लोगों से मिलना जुलना बहुत ही पसंद करते हैं, लोगों से बातें करना बहुत पसंद करते हैं।

है वो लोग लोगों से बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं और दोस्त बना लेते हैं। मजे की बात यह है कि कोई भी इंसान मुकम्मल तौर जो है इंट्रोवर्ट नहीं होता, ना ही मुकम्मल तौर एक्सट्रोवर्ट होता है। जिस मिजाज का तनासुब ज्यादा होता है उसी को शख्सियत का हिस्सा समझा जाता है। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है ये कहने में कि हम लोगों को अपनी शख्सियत का पता होना चाहिए, हमें इस बात की खबर होनी चाहिए कि हम किस शख्सियत के मालिक हैं।

जी हाँ फौज भाइयों, अगर ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी एक बहते हुए नदी की मानंद है जिसका पानी कभी पीछे नहीं मुड़ता। हम अक्सर गुजरी हुई तलखियों को याद करके अपने आज को जहर आलूदा कर देते हैं, जबकि ज़िंदगी का असल हुस्न इस बात में है कि जो लम्हा पास है उसे दिल खोल कर जिया जाए, क्योंकि वक्त न तो किसी का इंतज़ार करता है न ही अपने फैसले बदलता है।

जी फौजीभाइयों, सुनिधि चौहान की आवाज में आपने द डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत सुना। रजत अरोरा ने इस गीत को लिखा है। तो आपको बता दें, अगला नगमा जो है आपके लिए ये रहा।

तो आपको ये बता दें कि ये जो नगमा आप समाप्त कर रहे हैं ये जन्नत फिल्म का नगमा है और ये नगमा इस नशस्त का आखिरी नगमा रहेगा। आप इस नगमे को एंजॉय कीजिए इस वादे के साथ कि हम 3 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।

आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए, तो आपको बता दें आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन 1:50 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे। बस जरा सा इंतजार कीजिए।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय टीम T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी पहली मर्तबा टीम में शामिल हुए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सहल बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीक़ेकार के तहत आम तौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज़ पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीक़ेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्प

0: इस साल अप्रैल में कॉस्टको के सीईओ के साथ एक मीटिंग के बाद इन कोशिशों में नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके बाद कॉस्टको के स्टोर्स में महाराष्ट्र से अनार की भगवा किस्म और इसके बाद केसर आम सारिफिन के लिए मंगवाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात प्रोग्राम में भारतीय आमों की कई तरह की अकसाम के बारे में बात की थी और आम की पैदावार करने वाले किसानों की इस फल को आलमी बाजार तक ले जाने के लिए सताइश की थी।
1: आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए।
0: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2,60,00,000 मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1,000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती हैं। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
2: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी टी20 टीम का ऐलान किया है। श्रियास अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आसुफ फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। आईएमडी ने कल तक केरलम और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20 international captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And now the news in detail. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
3: External Affairs Minister

जहां दोस्तों आपने दामिनी फिल्म का नगमा समाप्त किया कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर के बोल आपने सुने, नदीम श्रवण किया मौसिकी में। अगला नगमा आप सबके लिए ये।

जय हिंद फौज भाइयों, दूसरी निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं शाहिना ऋषि आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, आपसे वादा किया था कुछ देर पहले ये 3 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दूसरी निशस्त का प्रोग्राम लेकर, तो हाजिर हैं हम। आकाशवाणी श्रीनगर के इस पुरकैफ और नगमात से सजी महफिल में हम आप सबकी दिल की अमी गहराई से इस्तकबाल करते हैं। फौज भाइयों, जिंदगी के मसरूफात में कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अपने आप से मिला देते हैं। कुछ यादें, कुछ एहसास और कुछ नगमे जो वक्त के साथ और भी कीमती महसूस होने लगते हैं। फौज भाइयों, ये महफिल खास तौर पर आप ही के नाम है। उम्मीद है गीतों और बातों का ये सिलसिला आपको अपनापन, जरूर उस अपनेपन का एहसास देगा। तो आइए फौज भाइयों, आगाज करते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ।

Damn film ar awaze kumar sanu ar sadhna sarkam ki fujma yu geet khatam ho jate hain magar ek jo hai unki khushbu jo hai der tak dil ke aas paas mehsoos hoti rehti hai kabhi koi nagma kisi apne ki yaad bankar ubharta hai kabhi koi dhun गुजरे हुए लम्हे की दस्तक से महसूस होती है और वाकई यादों का अपना एक अलग मौसम होता है जो ना आंखों से दिखाई देता है और ना लफ्जों में पूरी तरह बयान किया जा सकता है। फुजबाइयों घर से दूर रहते हुए यकीनन कई बार अपनों की बातें, बच्चों की मुस्कुराहट, माँ की दुआ और घर का माहौल दिल को छू जाता होगा, मगर इसी जज्बे का नाम तो हिम्मत है कि इंसान अपने फर्ज को सबसे पहले रखे।

जी हाँ, आपने हरि हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में बॉम्बे फिल्म का नगमा सुना, जो 2003 की फिल्म है, AR रहमान की मौसीकी में। उम्मीद है आपको ये नगमा पसंद आया होगा। देखिए फौजी भाइयों, जिंदगी भी अजीब सफ़र है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी खुशी के रंग, तो कभी इम्तिहान के लम्हे। लेकिन एक बात जो हर मुश्किल सफ़र को आसान बना देती है, वो है उम्मीद। उम्मीद ही वो रोशनी है जो थके हुए कदम को दोबारा हौसला देती है। तो इसी ख्याल के साथ इस गीतों भरी महफिल को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुँचाते हैं ये नगमा।

जी हाँ, दिल का रिश्ता मूवी का अपने टाइटल ट्रैक समाप्त किया। उदित नारायण, अलका याग्निक और जो है कुमार सानू की आवाज़ों में आपने समीर के बोल सुने नदीम श्रवण की मौसीकी में। तो आपको बता दें, आप फौजी भाइयों का प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मोहब्बत का एहसास भी कितना दिलचस्प होता है, कभी एक मुस्कुराहट में छुप जाता है, कभी किसी इंतजार में और कभी किसी गीत के अल्फाज में। फौजी भाइयों को जज्बात आवाज नहीं मांगते, वो बस दिल में चुपचाप अपनी जगह बना लेते हैं। और अब इस खूबसूरत एहसास को एक नगमे की सूरत में महसूस कीजिए।

0: डक, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
0: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
0: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ, अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर।
3: एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम आपके अपने फेवरेट शो पे, जिसका नाम है फौजी भाइयों के लिए। जी हाँ फौजी भाइयों, मोहब्बत हो या वतन से वफादारी, सच्चे जज्बात हमेशा दिल के करीब रहते हैं। कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, बल्कि एक एहसास बन जाते हैं। वादियों की खूबसूरती, खुला आसमान और हवाओं की महक, इन सब में एक अपनापन छुपा होता है। और जब बात कश्मीर की हो तो एहसास और भी हसीन हो जाता है। इसी खूबसूरती को महसूस कीजिए इस नगमे के साथ।

जहां दोस्तों रोजा फिल्म का अपने नगमा समाप्त किया एसपी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाजों में मौसीकी दी है इस नगमे की ए आर रहमान ने। अगला नगमा आप सबके लिए, पहले आपके साथ ये शेयर करूं। फजबाइयो आकाशवाणी श्रीनगर की इस महफिल से हम आप तमाम नौजवानों को खलूस भरा सलाम पेश करते हैं। आपकी बेदार निगाहें, आपका हौसला और आप वतन से मोहब्बत हम सब के लिए बेपनाह इज्जत का सबब है। दूर के बावजूद यकीन रखिए आप अपनों की दुआओं में भी और हम सब की नेक तमन्नाओं में भी शामिल हैं।

यहाँ वो जो भाई यो हम भी आपके साथ और जो है वक्त इस प्रोग्राम के जरिए बिताना चाहते हैं, लेकिन वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा है। इस प्रोग्राम का यही पे जो है इख्तिताम होने का टाइम आया।

तो आपसे आज के लिए इजाजत ले रहे हैं इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलेंगे इसी शो में। तो आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए। तो हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए। 3:50 होने वाले हैं, बस कुछ ही लम्हों में आप हमारे यहां से उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

परदेश फिल्म का नगमा आप समाप्त कर रहे हैं कुमार सानू की आवाज में, नदीम श्रवण के बोल और आनंद बख्शी की मौसीकी में आप इस नगमे को समाप्त कर रहे हैं।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 3:50 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन नशर करेंगे।

0: वीरेंद्र चौधरी ने आज सतवारी जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मयार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बाद में उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स का भी दौरा किया और वहां जारी तजदीदी कामों के बारे में जानकारी हासिल की। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनकी खिम्बर रिहायश गाह पर पार्टी के सीनियर लीडरों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के कामकाज और जम्मू कश्मीर में हालिया पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी, पीडीपी पार्लियामानी बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रहमान वीरी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुलाम नबी हांजूरा, पार्टी तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग और कई दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दिन के सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान तलबा और आम लोगों में तंबाकू नोशी के मुजर असरात से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। तकरीब की निजामत कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के मीडिया एडवाइजर डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला ने अंजाम दी। प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमदवानी और प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान ने इस मौके पर खिताब किया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा सुपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। 4:00 हैं। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम इस वक्फे के बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पहाड़ी प्रोग्राम किनका मैं हाँ तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारे को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बदाओ सामीन अज दे पहाड़ी प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ इस सुफियाना कलाम नाल आवाज आलम लोहार और आंदी

0: उन्होंने इस तर्जुमा किया उसका, इस किताब का जो ओरिजिनल कहानी है, इसमें ओरिजिनल किताब है जो कलेक्शन है उसमें 9 कहानियां हैं, लेकिन जो अभी अंग्रेजी का तर्जुमा है उसमें मेरी कुछ जो रिसेंट नई वाली कुछ कहानियां हैं वो भी शामिल की गई हैं। आज का ये फंक्शन जम्मू कश्मीर अकादमी की तरफ से ही मुनक्कद किया गया और रिलीज फंक्शन।
1: नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सुन अज इतवारी जम्मू बिच कई तरक्याती प्रोजेक्टां दी पेशरफ्त दा जायजा कीता। उन्हां सुन अफसरान को हिदायत दित्ती जे ओ कम्मां दे उच्चे मियार को बरकरार रखते होया इंदी वेले उत्ते तकमील को यकीनी बनावन। बाद बिच उन्हां सुन मुबारक मंडी हेरीटेज कंपलैक्स दा वी दौरा कीता और उत्थे जारी तजदीदी कम्मां दे बारे बिच जानकारी हासिल कीती। इस मौके उत्ते उन्हां सुन आखे जे हुकूमत बुनियादी ढांचे को तहफुज देना और लोकां तोणी मियारी सहूलतां पहुंचाने दी वादाबंद है। इस दे नाल ही एक खबरनामा मुक गया। आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन ती अगला खबरनामा 5:50 तक गोजरी जबान बिच नशर कीता गया सी। देव इजाजत, अल्लाह बेली।
2: समीन 4:23 हुए हैं। समाप्त कीजिए आज का शीना प्रोग्राम।

यो भी तुम कोई गुराई हूं, सो बेहतर से बेहतर बनो माहौल हिसाब और फिर तुम हम साइड कोई भी हिसाब अजाब ने तुन या कोई ड्रेन या जैसे के साफ छिन सम हिसाब ताकि चे बिठक वाल मतलब खतरा गा सो बीमार बीमार फैल जुन सम हिसाब बस साफ सफाई ख्याल छुन ताकि कोशिश तुम छु न तुम बुजुर्ग का सीधा रन ठीक और असु बुराई के ठीक दर सामिन उम्मीद छ कोई मुश्किल सोशल लमे था छोट जरूर पसंद आलस फिर अगर जब मुश्किल थी लेकिन स्टूडियो कोई गढ़ ही सस मोट बिल्कुल इजाजत नहीं दही सोसी चे मुश्किल थी मुत प्रोग्राम फिर अगर सही खिदमत तुझ मुहाजिब सडंग दिया तो मेजबान शाहनवाज सामून प्रोग्राम प्रोड्यूसर मारूफा निसाट इजाजत खुदा हाफिज़।

0: सामने भी आप शीना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 5 बज चुके हैं, एक वक्फे के बाद आप सुनेंगे आज का गोजरी प्रोग्राम।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना समीन नाम थारा मेज़बान शौकत अमन बोकड़ा का तरते तम सारा नाम प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुन जाएगा। समीन इकराम तमने दस्तो चलू कि अज का प्रोग्राम में गीत संगीत के अलावा थारे वास्ते एक दिलचस्प ड्रामा भी पेश कियो जाएगा और यो ड्रामा थारी खिदमत में पेश करने का मतलब त मकसद यो है कि आज के इस वक्त के बीच हम देखा कि तालीम जिड़ी है वह कितनी ज़रूरी है और बाकी कारोबार ते अलावा मारा बच्चा वास्ते है तालीम को होना कितना ज़रूरी है। हम देखा कि मारी वादी कश्मीर के बीच आज का इस सीज़न में इस बरिया में वादी कश्मीर ते भी तय जम्मू सूबा का मुख्तलफ इलाका ते मारी बरादरी का लोग जिड़ाए वे कश्मीर दर अपना माल चोकर ले कर कश्मीर को रुख करें और दौरान सफ़र इन्हें इस अपनी मंजिल तक अपनी टोकों बहक तक पहुँचता कितनी तकलीफ़ होए कितनी मुश्किल का सामना करना पे राह के बीच किस तरीके के नाल इनका माल चोकर को भी नुकसान हुआ ते इस सारा का इना ले कर थारे वास्ते एक ड्रामो बेमंजिल का मुसाफिर जिड़ो है जो हसन परवास साहब और ने लिखे हुआ है और इसमें अपनी कौम ने एक पैगाम दिता है कि अपना कारोबार के नाल नाल हमने सबसे पहला अपना बच्चों की तालीम को खास ख्याल रखना है। ते इसे ड्रामा ना थारे वास्ते आज का इस प्रोग्राम में पेश करा का जिसमें तम पूरी तरीके ना देखेगा कि मारे वास्ते कि यो पेशो ज़रूरी है और इस पेशा के नाल नाल हम देखा कि मारे वास्ते तालीम ज़रूरी है या कि यो पेशो मारे वास्ते ज़रूरी है। सामिन इकराम यो ड्रामा भी थारी खिदमत में पेश किया जाएगा। ते प्रोग्राम का शुरू में थारे वास्ते मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज़ में हमने खूबसूरत जो गीत ला के रखे हुआ है आओ सुन लिया।

जिया सामी नाम गीत सुन रहा था आवाज थी मोहम्मद इकबाल मलंगामी की। तो इस गीत से पहला हमने गल की थी कि वादी कश्मीर में टोका का बसनीक जड़ा है वे भले भले इन टोकों का टोर पे आए और जम्मू सोबाते भी हमारी बरादरी का लोग जड़ा है वे इस पासे आ रहे हैं। दौरान सफर इन्हें अपनी टोका में पहुंच

0: या तो है एक पति है पर तू तो अकल ना काम लिया कर।
1: हाँ हाँ हूं तो थारी सारा की दुश्मन मेरी ही गलती है सारा कसूर ही मेरो है।
0: अच्छा अच्छा रहन दियो हूँ इस न्याना करामा कोल चंगो नहीं हो तो एक दूजी ना मेना काना देवे देख सकी ना देख थारो यो रोज वो न्या एक शुरू ही है हसे लोग रजिया निकी है बेअकल है पर तू तो अकल ना काम लिया कर चली जाएगी बेचारी पर किसी तरीका ना टोरांगा ना
1: ना मैं कह के हो या ही सत पीढ़ी गिनन लग पै गई
2: ते क्यों क्यों जे मुश्की हमने रोड़ियो थो
0: ओहो वो तो अपनी मौत ना रुड़ गयो पर तुम क्यों अपनी अकल ना रोड़े लगा रजिया या तेरी भड़ी पर जाई है ते भड़ी पर जाई मांगी थाई वे सोच समझ गया काम करया कर जा जाके पानी ले गया। बदल भी आ गयो है तो खरपोट में कख नहीं हो सी हूँ ये छत तू गए रखे हूँ सकीना ना तो ये पाना वाली तरंडी नहीं आई
1: ले आई
0: या अल्लाह परमा ख्याल रखिए सगत खड़ो चले हो है किसे कलाम आप पूछ जाता तक खैर ही हो जाती
1: कम तावला तावला तुम भी खलो कर लियो कालू ना बुला लियो ते हूँ इतने रोटी सेक लूँ खाना में आग भी नहीं पकड़
0: हाँ हाँ तू जा चाट पाट कर बदल गजन लाभ की वह या अल्लाह खैर आज की रात खैर नाल निकल जाती ते सवा रुपया को कब दे तो

0: ओ सकीना रजिया चाह की कड़छी एक और लियाई है देरो भी इतू पटनो है
1: लियाओ लगी भी अता उन्हें लियाई
0: इस ठंड में या चाह भी ना वे तो कोई चारो नहीं
2: इतने स्वाद लावेगा या पार बदेगा वाह आटा आली खलड़ी तमानी छट में चंगी तरह बदियो हूं भांडा कट्ठा कर लियो
0: ओ कालू इया लिया कोड़ा ना मोड़ वाला चीर हो गया सकीना और जिया
1: जी अता
0: ओ तरंगड़ी बदे गई है जे नहीं
1: कद की बात छोड़ी
0: ले आओ फिर कोड़ा वर लदा बड़ी ओखी टकी है ता फिर बदल को भी भरोसो नहीं दीगर तू पहला पहला मरगन टाप ना ता जी हम टापी जा
2: तम ते इस रा के जे मरगन टाप ए या ऊपर मौसम को अंदाजो लाग है गली टप्पण की सोचियो इत इन क्षण मा फिर भी तुंग था हांडो भी कट थो तंबू खलो रियो जे मरगन टप गया कोल काल फस गया ते फिर समझो नाम तना कोड़ा
0: चोर ला करा सकीना टकी गया मुंड नहीं बसनो चाहिए बने बने टिरता ही रहना चाहिए ऊपर गली में भूबे और लब भेजेगा पारमा में भी खैर खबर लब जाएगी
2: एक दो दिन का सफर वह तो आदमी हिम्मत करे मारा नसीबा में टुरनो ही लिखो वह दिहाड़ी औखा सफर को डर तो रात बिया बहन में खौफ लगे
0: ओ इन मुश्किलों तू बात सुखी तो है तो फिर केड़ो कम है जिसमें जान नहीं लगती
2: हूं तो कहूं जे काई जिनी डोगी खीर गया एक ही जगह ठिकाणो बनाओ पहला रा खुला था माल भारू आराम नाल जाए था हूं जगह जगह क्लोजर बन गया है चिरांद लोका ने आबाद कर लिए हैं
0: हां तेरी गल भी तो सच है गलियां तो मालियां पर मंदरा ले गए भारुआ ना सड़को सड़क जानो पे रामा खान वास्ते काई डाली नहीं लगती कुछ गड्डियां उठा जाए ते कुछ चोरों का हाथ लग जाए
2: दा मोती की लगा पकड़ लियो मीना तो सख्त डर लग रही है दर्द वो खुद अंदो है बुना नजर पवे ते करानी चढ़े
0: तो बुना खाना देखे लगी भी सीधो अगा रस्तो देख बस ये लाड़ मुकिया ते फिर अगर सारा नकावर सुख हो जाएगो रजिया बल खबा के पैर रखिए ओ निकिए जूती लागा ना अब चुड़ूंगा मैं सट लें

0: बच में ना बच।
1: सियाल कित गुजारांगा भाई चिड़ियो सुनावे थो जे साल मारी बांडी के पीछे भी तार फेर छोड़ी है ते बकरियां की चराद भी बंद हो गई।
2: पहला उत पोचा तो सही फिर अगली गल सोचांगा कुचा पानी भी देना पैगो ना ते महकमाला ना मेल मिलाप कर गया ते गुजारो करनो पैगो।
1: चाह पानी भी कितू देगा ऐसो ते माल वो पा भी कुछ नहीं पियो ते फिर सियाल दानो फको भी खरीदनो है।
2: चलो गले गले खासो पेंडो कछ लियो है गली का नेड़ा लागी आया
1: हूं कौन इत्ते ही सारा नकाला ढेरू लावा कालो चढ़ चढ़े है ते नेरी पै गई है सवेला सरगी वा गली टप जाऊंगा।
2: ना ना मत करो अजय दी धीर है गली टप जाऊंगा फिर नाकियां जाकर डेरो लावांगा बूबे और भी उते लग जाएगा।
0: बच गुट में डा गुट
1: तम मर्दांगी तो जय गल वै किसे की कद सुने मेरा पैरा में छाला पै गया है।
2: देख सकीना सफर में किसे एक नहीं अगर दिल निको कियो तो समझो सारा को दिल टह गयो तू जे कदे थक गई है ना तो घोड़ा पर चढ़ जा वो मैं दो घोड़े जड़वा ना उस पार काटे।
1: ना ना उन कोड़ा वर नहीं चढ़ती मुन्ना करानी आवे ते फिर मैं दावर तोबा तोबा तो तुम किड़ा काल में जा सकता है वो।
2: चलो वाह गली आ गई है तावली करो छठी को डर है क्रेडी लग गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

0: लूटा बकरोटा का बिष्कार रखिए।
1: ओ गुबिया भाई मैं बुनु नेरी में किसी का घोड़ा सही मेरे आज मारा नाली फसे इस स्थिति में
0: तिना को तावड़ा शीख परवाना उनको फिर लोई पटू महंगा अपना आप बचावेगा वहां भी लूटा बकोटा के करांगा रे।
1: ओ जी इत काय पड़ी भी नहीं है ये बंदो आग लेके अपनो आप बचावे मेरी सुने था इन देख लिया संग चंगो है मारे को त्याग तो भी नहीं दो चार बच्ची तो बर्बाद खरीदी शिकायत भी रुड़ गई है
0: पर ये जानवर बनी हुई है इतना पेट की पई हुई है
2: आया आया आया
0: इस वरना नहर नाल घास उड़िया पोख बर्दाश्त कर लेता
1: बुबिया भाई बुबिया भाई ये भी मारा घोड़े हैं वो देखो चाचो राजवली आगे आगे
0: ओ आमा चाचा मुआ बुबियो ओ तावड़ा तावड़ा शिको ना परवा ना मार छोड़िया तमने आइए पारू ओ जवानी मरवो पीछे डक लेता ना ओ खैर ना बचाइए जे ओ ना ना जी सब खैर ही थी पर इस वे मंदो फस गया चाचा तुम बुन सारे नके ठहर जाता ना के पतो थो जे चैन चक या नेरी पे आ जाएगी सकीना तो पहला ही क्या थी पर मैं ही अनमानी की
3: मारी कौन सुने तम मर्द अपना अपना मता ही सियाना समझे ऊनित गली में आना भी तो मारना भी मौत का मुंह में फेंक छोड़ियो
0: अल्लाह खैर करेगो बस ही तू परू ते लावी में पै जाता तो इस छठी तू बच जाता फिर पतला पतला बूटा भी आ जाएगा
1: ओ चाचा बनी थोड़ी बैस गई है इसमें साक्षी दिन ही हो गयो
0: ओ ठाल ठाल इसना इत गली में जेड़ो चोखर बैस गयो समझो वो फिर नहीं उठियो जल्दी करो ओ सकीना सकीना
3: हाँ कुछ कह भी
0: ओ बाबा ऋषि की ज़ियारत पर कुछ मान न छोड़ या अल्लाह टाल इस छठी ना या अल्लाह इस छठी ना टाल या खुदा या अल्लाह इस छठी ना टाल ओ चाचा राजवली या पेड़ एकदम खुड़ी रखने लग पई है ना के करो छुरी फेर सुनो और अल्लाह का वास्ता इसना ठालियो रे इसना

मारियो, वो कितनी अकल में छुरी फेरेगा, चारो बेड़ो घर करे, वो कित मार गयो आज, या अल्लाह फजल कर, या अल्लाह खैर ना लगाइए आज, या अल्लाह शरीर नु खैर ना लगाइए, या अल्लाह, चलो या खुदा फजल, या यार मियां आला पीरा खैर करिए।

0: ओ बुबिया, ओ चिड़ू, अरे कित मर गया है तम।
1: ओ के जी, जरे टोपड़ी में पल्ला खिला रहा था।
0: ओ यहाँ चा पी लियो।
1: अला अला जी आया, बस हुने पुजया ना। ओ चिड़ू चिड़ू रे, यहाँ आदन चा वास्ते बुलाने लगावा।
2: अच्छो जी आ गयो ना, छड़ी चाहिए या नाल भी कुछ है?
1: ओ नाज गया दुश्मना, तू कदे रजियो भी है नहीं।
2: ओ जी खाली पेट पंजाला को सफर भी वे नहीं हो तो नो भी हम क्या बेरे सिर खां। नील गई देखा ली बेलो मिलो दे डला ना रोटी सेक लिया।
1: हाँ दे बकरियां को दूध भी तुम्हें संभाला है ना, ते फिर जे करे का बकरी रुड़ गया लाल हो जाए ना, बस तेरी दा फिर ईद ही हो जाए।
2: अच्छी ये मौज भी रोज थोड़ी में कदे कदे दे अंत को अंत तड़के सार भी पास गए रोटी ग्रह लानो पे कदे दे निरा पानी की कोटे बेई रोटी नींद नहीं पे।
0: अरे तुमने के बहस लाई भी है, दा तावला तावला टुरो लो लो ना यो जंगल को पेंडो टपनो है, रात अगम बांधा मा निकलनी लोड़िए, नहीं तो चोर लूट लाश का ले जाएगा।
1: ओ बड़ा ही चोर चनाक वह जीत का कुत्ता क्या मार हट गया ना, ते पारवा ना शीख क्या ले जाए।
0: अरे चा बलियार पी गया तावला माल ना शीकन वाली गल करो। हाँ तो यह गल दसो जे पिछले दारो खैरा ना माल आयो है, कोई नुकसान तो नहीं हो
1: जी? ऐसो रब को फजल ही होए वै, पट दो पड़ी हुनु रुड़ गया था, मकरू हो गई थी, बाकी अजा खैर ही है। असल में चाचा मारो रस्तो डट युक हुआ है, इसा इसा कंखा बिचू अल्लाह खैर ही ना बिचावे।
2: हैं जी कदे मारी तो परली कश्मीर दा रोती है।
3: ओ चलिया तो यो सफर केड़ो सुखो है, तलेल ग्रेस तू माल जा टुरे ना तो जना को काजो ही कमन लग जाए, तो फिर जब पीर पंजाल की ओखी गलियां बिचू तो फिर सिया तो रिछा वाला जाड़ा बिया बाणा बिचू लंघनो पोया ना तो होश ठिकाने आ जाए। तोबा तोबा लिंगा बिचू सा ही निंगल जा जनिया, हम खाना बदोशंगा मुकद्दर मा ये पंजाला की मुसीबत मुंडो ही लिखी हुई है।
2: वो भी मरगिन ताब जीसी खौफनाक गली में जी।
1: अरे तू चा पिएगा तीना के लगे।
3: ओ चलिया आसमान ना लगता वा इन पंजाला मर सोखो रा वह ही कित, पीर की गली वह या जमिया वाली गली, गुरा बटा वालो रा वह या ननन सारगो खौफनाक नलो, इन सारा ने मारी ते मारा माल चोखर की रात चखी हुई है
2: ना। तो फिर हम का वास्ते इन जुआ दे बैकामा आवा, का वास्ते ये कजिया पोटा?
3: ओ सदैया जेठ हाड़गी तुपा मा बंदा कुकड़ आरों लूसे जे, ते फिर पेड़ बकरी तानी तड़कान आली तुप मा किसरा रह सके, बस दो महीना का सुख वास्ते रामा लोकां की गाल गड्डियां लांगी चाल चोरां की चोरी ओखा कालना बन बूटा छंजा मालियां ते पसा बदल अनास ते छटी मा हड्डियां वो रस नचोड़ता अद्धो साल आता जाता ही गुजार छोड़ा।
1: ओ जी इस दो महीने का चरा वरी दे मारा पारूं सफर की मार ते सियाल की ठंड चल सके।
3: यो ही छोटो ठीक है, और चारो भी के है, पर हुन मारी मुसीबत और ही बदती जा रही है।
1: अल्लाह वर सेटो जी, वो सब को रोजी रसान है। चाचा कोराना लदा?
3: हाँ हाँ, अरे हूँ तो किसी और ही ख्याल में उलझ गयो थो, सफर खोटो वैलगो दतावल करिए लदो कोड़ा ना ता शीको पारुआ ना।

चलता चलो रे, चलता चलो बाप दादा का रास्ता पर। हाँ मुक जाऊंगा, वर ये पेड़ा नहीं मुक सी। कई पीढ़ी इन रास्ता पर जमी, जवान हुई तय मुक गई, वर ये पेंडा अजय भी बाकी है।

0: To ještě dá to! Šava!
1: Kone! अरे आलमा खलियो, हमारा पारू लेगा किस चले? तो
2: अरे सर बालिया, उठा दोनों, और पीछे करो जानी मर्गो, तब सुता रहा था पानों चोर हो गई है,
1: ओ भूपा पाई वे गया, पकड़ ले। तो अरे जालन गोली मार के ओ भाई बुबा ओ भाई रे
2: हाय मेरे अल्लाह अरे दा जना ना देख
1: मेरा भी
2: या
1: मेरा भाई
2: या के गिर गया
1: के हो गया
2: बाबू भैया हाय अरे बाबू भैया मेरा चाचा अरे दा कित गोली लगी है तेरा
3: चाचा
2: कित गोली लगी
3: चाचा या लात मां
2: पटको ले कूट के बनी है आए पानी ओ चिड़ू मर जोगा छोड़ दौड़ पानी लिया अरे पानी लिया यो बेहोश हो गया
1: उफ मेरा भाई
2: ओ रहन दे ओ भूखी मर गया
1: देखो
2: ओ भूख मां पार लिया पानी मर जोगा जल्दी करिए
1: ओ जरा आंख देखो
2: ओ मेरी लाते चाचा मेरी लाते ओ कमायो अल्लाह ने बचा लियो रे कोई गल नहीं बचा लियो दारे नीर साड़ के रखो दारे किधर सिमलूगा पत्थर देख मर जो गया देखिए मुठो ना बुझे तो मेरी बैटरी उड़ो करो हाँ जख्म मोटी बिन्नी माँ आई है हड्डी बची गई है पर जालम पारों ले गया दारे चिड़ू संभाल कर
1: ओ जी दो पारू लेता गए बुरा मेरा सामने
2: ओहो ये दो कर गए खोरा कितना टूर गया ते कितना और टूर जाएगा कुछ चोरंग हाथ गया ते कुछ शादंग हाथ गया ते कुछ खा गया सी ते पगियार हाई यो माल खाना बदोशा को ना किसी नाल जोर ते ना जबरदस्ती जो गयो वो सो गयो जो बच गयो उसे पर सबर करना है दा चारे जनाना किदा मतलब न भाग जाए और इसने ते धनगण पिया गयो है ऊपर लोई सट दा चल चा हाय खाना बदोशी सारी उम्र कदे कोई दाग ते कदे कोई जख्म कोई हो तो ते हम लोगों की भी सुन तो अच्छा जी अल्लाह ने खैर रखी ते मेरी औलाद बिचू उनको खाना बदोष नहीं रह सी बड़ी जरूरी है दो कनाल जमीन जी तो अपनो घर वह अपनी बस्ती वह यो नीत को सफर कदे भी नहीं मुक्तो ते मुके भी किसरा इसकी कई मंजिल ही नहीं दरअसल हम लोग बेमंजिल का मुसाफर
4: बेमंजिल का मुसाफर
5: बेमंजिल का मुसाफर

जिया समीन नाम सैफल मलूक सुन रहा था। जीते समीन इसके नाल ही मारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेजबान शौकत अमन बोकड़ा ना अगली मुलाकात तुड़ी दियो इजाजत। अच्छा जी, रब राखो।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 5:50 हो रहे हैं। अब आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं। गोजरी खबरों के फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से आप हिंदी खबरों का बुलेटिन सुनेंगे। पहले खबरें गोजरी में।

0: ਹੁਣ ਤੱਕ 9,42,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ ਮਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਹਕੂਮਤ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਜਿਨ ਮਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਮਾ ਬੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦੋ ਚਾਹ ਗਏ ਤਿੱਬੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਿਆਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਤਾਸਰਾਤ।
1: मैं सोफी सजाद अशमकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खुसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है और उसको मेडिसिन भी इस पे फ्री मिल रहा है। हम दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मशकूर हैं।
0: जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज श्रीनगर में हुई एक अदबी तकरीब के दौरान वादी का मारूफ कलमकार तर्जुमाकार ते फिल्म साज गौरी शंकर रैना की तसनीफ करदा किताब यू टर्न एंड अदर स्टोरीज की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। मारूफ तालीमदान ते शायर पद्म श्री प्रोफेसर शफी शोक इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत नाल मौजूद था, जबकि गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज एमए रोड श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर यासमीन फारूक के अलावा मारूफ मुसन्निफ प्रोफेसर फारूक फयाज ने मेहमाना ने जीवकार की हैसियत नाल तकरीब में शिरकत की। तकरीब पर कल्चरल अकेडमी का एडिशनल सैक्रेटरी अदील सलीम, प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजूरदा, डॉक्टर रफीक मसूदी, मुश्ताक अहमद अली खान, निसार नसीम, एहसान उल हक चश्ती, डॉक्टर आबद अहमद ते कई दूजी अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में गौरी शंकर रैना ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का सरबराह तारक राथर नाल गल करता वक्यू।
2: बेसिकली ये किताब मैंने कश्मीरी जबान में लिखी थी। ये काफी वर्षों में लिखी गई कहानियां हैं जिनको कि मैंने बाद में 2020 में पब्लिश किया था और 2021 में ये यहाँ पर श्रीनगर में ही ओरिजिनल किताब रिलीज हुई थी। उसके रिलीज होने के बाद कुछ अफसाने बहुत पॉपुलर हुए, लोगों को बहुत पसंद आए जो पढ़ने वाले थे कारी। कई दोस्तों का ये इसरार था और अंग्रेजी में भी अगर इनका तर्जुमा हो जाए तो उन्होंने इस तर्जुमा किया उसका, इस किताब का जो ओरिजिनल कहानी है इसमें, ओरिजिनल किताब है जो कलेक्शन है उसमें 9 कहानियां हैं, लेकिन जो अभी अंग्रेजी का तर्जुमा है उसमें मेरी कुछ जो रिसेंट नई वाली कुछ कहानियां हैं वो भी शामिल की गई हैं। आज का ये फंक्शन जम्मू कश्मीर अकादमी की तरफ से ही मुनक्कद किया गया और रिलीज फंक्शन हो गया।
0: नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सतवारी जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त को जायजा लियो। उन्होंने अफसर ने हदायत दी जे वे कामों का आला मियार न बरकरार रखता हुआ उनकी वेला व तकमील यकीनी बनावे। बाद में उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्पलैक्स को भी दौरो कियो ते उत जारी कामों बारे जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा जे हुकूमत बुनियादी ढांचा न तहफुज देने और लोगों तक मियारी सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। महकमा ट्रैफिक पुलिस टू व्हीलरस चलाने वाला की तरफों हो रही खिलाफ वर्जी न रोकने वास्ते हर मुमकिन इकदाम कर रही है। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा है जे दो ही सवारी टू व्हीलर वर सफर कर सके जिन वास्ते हेलमेट लानू जरूरी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं, उन्होंने क्यों
3: बाइक्स या मोटरसाइकिल्स जो है उसमें दो ही लोग राइड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर थ्री। पिलियन एक हो सकता है और उसको भी हेलमेट होना चाहिए। उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है, दैट अमाउंट अबाउट 1,000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान बट नोबडी इज स्पेयर्ड। हमारा मसला ये है कि इस वक्त लोग काफी वायोलेशन कर रहे हैं बट देन आहिस्ता आहिस्ता पिलियंस पे भी फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि कम से कम राइडर जो है वो हेलमेट पहन ले, बट देन अल्टीमेटली दोनों को ये हेलमेट जो पहनना है, पिलियन हो या राइडर हो दोनों को।
0: معروف کشمیری صوفی گلوکاروں کو ایک اجلاس سری نگر میں منعقد ہوئے جس میں کشمیری صوفی گلوکار فورم کو

0: श्याम अमर आने गयो वादी का एक नामवर गुलोकार अब्द रशीद हाफज ने फोरम को सदर चुने गयो। इसके नाल ही खबर नामो मुक गयो। अगलो खबर नामो 6:05 पर आकाशवाणी श्रीनगर तू कश्मीरी में नशर वैगो। दियो इजाजत, राब राखो।
1: वाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र

0: रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इशा आकाशवाणी श्रीनगर 5 मिनट पेट 6 बजे पेश गर्मी बयान हिंद खतर अजुक प्रोग्राम।

خدا عاشق شوی از روز ازل، خدا عاشق

بکر ہے گت بنیت پروان چونی قرارا چھم دل

आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम।

0: शाम के 7 बजे।
1: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं इक्तसादी मशावरती काउंसिल की मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम किश्तवाड़ पहुंची, कुलगाम जिले में गैर साइंसी ढंग से कूड़ा करकट जमा, मकामी आबादी परेशान, और पीडीपी सदर के एम्स दौरे पर मनफी रद्द अमल सामने आया। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
8: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
7: मगर यह है सठा द्रोग?
8: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
12: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
11: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
12: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
11: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
12: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
11: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
12: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
11: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
12: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
11: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तसादी मशावरती काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग में मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से भारतीय मईशत, सप्लाई चेन और तवानाई की फराहमी पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का जायजा लिया। शुरका ने महंगाई, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तसादी इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात के अमल को मजीद तेज करने, कारोबार में आसानी लाने और आवाम की जिंदगी को सहल बनाने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया। मीटिंग का मकसद आलमी चैलेंजों के बावजूद इक्तसादी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखना और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाना था।

0: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मनुष्यात की तिजारत के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए वसी पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं और नार्को दहशतगर्दों या मनुष्यात स्मगलरों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। किश्तवाड़ में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि इंतजामिया सरहद पार के स्मगलरों, मकामी मनुष्यात फरोशों और दहशतगर्दी की माली मावत करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता दो माह के दौरान मनुष्यात मुखालिफ मुहिम 19 अजला तक पहुंच चुकी है, जिससे आवाम में बेदारी और मुजाहमत के जज्बे को फरोग मिला है। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव।
1: जम्मू कश्मीर में नशा मुखालिफ 100 रोजा जोरदार मुहिम के 56वें दिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पैदल यात्रा करने और आवाम को इस मुहिम की जरूरत से रोशनास करने के सिलसिले में किश्तवाड़ आ पहुंचे। किश्तवाड़ के खूबसूरत तारीखी और चिनारों, दीवारों से घिरे हुए सरसब्ज मैदान चौक

0: रोजा जोरदार मुहिम के 56वें दिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पैदल यात्रा करने और आवाम को इस मुहिम की जरूरत से रोशनास करने के सिलसिले में किश्तवाड़ आ पहुंचे। किश्तवाड़ के खूबसूरत तारीखी और चिनारों दीवारों दीवारों से घिरे हुए सरसब्ज मैदान चौगान में उनकी आमद के सिलसिले में एक पूरी का तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मैदान को खूबसूरती से सजाया गया था। प्रोग्राम में दर्जनों सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा तालबात पाडर नागसनी के रिवायती ढोल नगाड़ों के फनकारान और गौजर तब के फनकारों के अलावा हजारों मर्द और खवातीन ने शिरकत करके इसे मजीद जीनत बख्शी। चार चिनार किश्तवाड़ के करीब जलसेगाह में पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वाला न खैर मुकदम किया गया। जलसे के आगाज पर कौमी गीत व कौमी तराना पेश किया गया और जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने खुतबाई इस्तकबालिया पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने 18.5 मिनटों की तकरीर में अवलम तो लोगों को नशा मुखालिफ रहने का हल्फ दिया और कहा कि उन्होंने आज से 55 अयाम कबल जम्मू से इस नशा मुखालिफ मुहिम का आगाज किया था और आज 56वें दिन जिला किश्तवाड़ की मुतबरक सरजमीन पे पैदल यात्रा करने और आमद नाश को नशा मुखालिफ इस मुहिम की अहमियत से रोशनास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम 100 दिनों तक महदूद करने से नशा से मुकम्मल आजादी हासिल नहीं की जा सकती है और न सिर्फ सरकारी मशीनरी से ये जंग की जा सकती है जब तक न आवाम पुलिस और खसूस नौजवान इस जंग का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि नशा का कारोबार करने वालों को माली नफा हासिल होता है और इस रकम का इस्तेमाल मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसी नशा जिसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती है के शिकार होकर कई बच्चे और नौजवान मौत के आगोश में भी चले गए हैं। उन्होंने तफसीलात देते हुए कहा था कि अभी तक 1036 मामला दर्ज किए गए हैं, 1128 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 64 अपराध पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया है, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, 700 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक रद्द की गई है, मजीद 130 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की गई है और बहुत सी अद्वियात वाली दुकानों के लाइसेंस भी रद्द किए जाने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि जब तक नशा से पूरी तरह आजादी हासिल न की जाएगी हम मुतहरिक रहेंगे। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि गाँव गाँव पहुँच कर खुसूसन खवातीन और नौजवानों को नशा के पुरखतर नतज और नुकसान से आगाही का सिलसिला शुरू करें। उन्होंने एतराब किया कि हर जिला में बाज आबादकारी यानी रिहेबिलिटेशन के मराकज कायम तो नहीं है, उनके बाकायदा कयाम के लिए सरमाया का इंतजाम अब किया गया है और ये मरकज हर जिले में कायम किए जाएंगे।
1: जिलों में मैं अनेक रिलीजियस लीडर से मिला हूँ, जिला इस हिसाब से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और आवाम को जागरूक भी कर रहे हैं। मैंने जैसे अनेक मामले देखे हैं जहाँ नौजवान नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीने का अवसर चाहता है। इसे मैं जम्मू कश्मीर की आत्मा का सवाल भी मानता हूँ, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरी बात का सवाल है कि क्या हम नशा के तस्करों मार्को आतंकवादियों को हमारे समुदाय की तकदीर तय करने की छूट देंगे या फिर हम सब मिलकर अपनी धरती अपने परिवार अपने नौजवानों और अपनी उम्मीद को वापस हासिल करेंगे। मैंने आम जनता का जवाब हर जगह स्पष्ट सुना है, इस धरती से नारको आतंकवाद का और नशा के तस्करों से धरती मुक्त होनी चाहिए। तीन मोर्चे पर हम सब काम कर रहे हैं और तीनों मोर्चे बड़े महत्वपूर्ण हैं, बेहद महत्वपूर्ण। पहला, ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना है और आज मैं कह सकता हूं कि जो कार्रवाई पिछले 56 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना ने और सुरक्षा बलों ने किया है, आपस में तस्कर बात करने की जम्मू कश्मीर में जाने की जरूरत नहीं। सीमाओं को पार करने वाले तस्करों से लेकर हमारी गलियों में जहर बेचने वाले डीलरों तक और खून के पैसे को सफेद करने वाले टेरर फाइनेंसरों तक इस पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ा गया है। एक एक ड्रग का पीछा पुलिस कर रही है, हमारी एजेंसियां हमारे सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा न कर सके। आज मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में नारको आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहे।

0: కాగితే ఇదే ఇఖ్తిలాఫ్ మెంబర్ అసెంబ్లీ పాడర్ నాగ్సని, సునీల్ శర్మ, మెంబర్ అసెంబ్లీ కిష్ట్వాడ్, షుగన్ పరియార్ ఓ దీగర్ హాజరీన్ కా శుక్రియా అదా కియా. ఫిర్ సే కౌమీ గీత్ ఓ కౌమీ తరానా పడే జానే కే బాద్ పైదల్ యాత్రా శురూ హుయీ, జిస్కీ కయాదత్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఖుద్ కర్ రహే థే, జో తకరీబన్ 2 కిలోమీటర్ ముసాఫర్ తయ కర్నే కే బాద్ ITI గ్రౌండ్ కే కరీబ్ పహుంచ్ కర్ జిల్లా తర్కీ కమిషనర్ కిష్ట్వాడ్ కే ఇఖ్తితామీ కల్మాత్ కే అదాయిగీ ఔర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కీ తరఫ్ సే హాత్ హిలా హిలా కర్ లోగో కో విదా కర్నే సే ఇఖ్తితామ్ పజీర్ హుయీ.
1: కిష్ట్వాడ్ మే నశా ముక్త జమ్మూ కశ్మీర్ కే సిలసిలే మే తకరీబ్ కా ఇనకాద్ ముష్తాక్ దేవ్ కీ రిపోర్ట్ ఆప్నే సునీ. इधर वजीर तालीम सकीन एत्तू ने कहा है कि हुकूमत ने TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दायर कर दी है. उन्होंने यकीन दिलाया कि असातिज़ा के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है. सकीन एत्तू के मुताबिक हुकूमत मुसलसल इस मामले की पैरवी कर रही है और असातिज़ा के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए तमाम जरूरी कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं. दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में वाकई अपनी रिहायशगाह पर पार्टी के सीनियर लीडरान के एक इजलास की सदारत की, जिसमें जमाती उमूर और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया. वाज़ेह है कि एक इजलास एक ऐसे वक्त में मुनाकिद हुआ है जब जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है और हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान तर्ज हुक्मरानी और अवामी जवाबदही जैसे मामलों पर मुसलसल सियासी कशीदगी पाई जा रही है. PDP कुछ वक्त से उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली हुकूमत पर तनकीद कर रही है और इस पर अवामी मसाइल के हल में मुबैना नाकामी का इल्जाम लगा रही है. इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती के एम्स अवंतीपुरा के दौरे और जायजा मीटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सख्त एतराजात किए हैं. वजीर सेहत सकीना एत्तू ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती न हुकूमत में है और न ही रुकन असेंबली, इसलिए उन्हें सरकारी मनसूबे की जायजा मीटिंग मुनाकिद करने का इख्तियार हासिल नहीं है. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत में मंसूबे की निगरानी कर रही है और इसकी बरवक्त तकमील के लिए इकदाम किए जा रहे हैं. इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं तनवीर सादिक और सलमान सागर ने भी महबूबा मुफ्ती के इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया है. वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने इस अमल को आईनी तौर पर नामुनासिब करार देते हुए सवाल उठाया है कि गैर मुंतखब सियासी शख्सियात सरकारी इदारों के जायजा इजलासों की सदारत कैसे कर सकती हैं. सबंतराल से शबीर भट्ट ने खबर दी है कि इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद देहात में जेर इस्तेमाल अराजी मकामी आबादी से वापस लेने के फैसले के खिलाफ आज अवंतीपुरा तहसील दफ्तर के इहाते में लोगों ने शदीद एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने हमारी जमीनें वापस करो और हम क्या चाहते इंसाफ के नारे लगाते हुए सरकारी फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया. मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में पहले ही मुख्तलिफ मंसूबों के लिए बड़ी मकदार में जमीन हासिल की जा चुकी है और अब मजीद अराजी वापस लेना मकामी लोगों के मफादात के मनाफी है.
2: लिहाजा कर अगर ये गवर्नमेंट सी गुजारिश मानि अम खुद तैयार अस करो जान मे अल गाड़ पे करो पान पान खत चलो मारन जनाब बजदार जमीन आबी जमीन तथा गई गो बाईपास रेलवे बीच बनो गुजर होटल बीच क्या थे अम बगर कसम कहीं सान मौसम अल गुजार अस मज
1: पुलवामा जिले के मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक रखने वाले लोग जिन्होंने आज अवंतपुरा तहसील दफ्तर के इहाते में एहतजाज किया इस फैसले को लेकर जो कि सरकार ने सादिर किया है और जिसमें कहा गया है कि खालिस सरकार अराजी को वापस किया जाए. शर्बीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा.
3: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे. अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान. रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान. रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया. राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर.
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे।

0: जान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर भी ना आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मेंबर असेंबली तरेगा मीर सैफुल्ला ने आज गजरियाल का दौरा किया, जहां उन्होंने गजरियाल गनाई मोहल्ला पाइन ता हजाम मोहल्ला रोड मनसूबे का संग बुनियाद रखा। वजीर के सड़क मकामी लोगों का एक बेरीन मुतालबा था, जिसकी तकमील की जाने पेशरफ्त से इलाके के आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि सड़क की तामीर से आमोदरफ्त की सहूलियात बेहतर होंगी और रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मुश्किलात का इजाला होगा। इधर आज जम्मू कश्मीर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन का इलेक्शन मुनाकिद हुआ, जिसमें इंजीनियर सचिन तिक्कू को बहसियत सदर कामयाबी हासिल हुई और पीरजादा हिदायतुल्ला को जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद नजार ने इंजीनियर सचिन तिक्कू को सदर मुंतखब किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। सदन कुलगाम जिले के नेलो इलाके में कूड़े करकट को जमा करने का एक डंप मौजूद है, ताहम इस डंप में कूड़े करकट को साइंसी बुनियादों पर अलग अलग करने का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके नतीजे में वहां चार सू अफूनत फैली रहती है और मकामी आबादी हर वक्त इस खदशे में रहती है कि इलाके में कोई बीमारी ना फूट पड़े। वाजिब है कि दही तरक्की महकमे की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन की अमलावरी में कई नकायस पाए जा रहे हैं और आम तासुर यही है कि जिस गरज से यह मिशन तरतीब दिया गया था, उसका गालिबन दही तरक्की महकमे के आला हुकाम को या तो कोई तस्वुर नहीं है या फिर वो इब्तदाई तौर पर जोश खरोश का मुजाहरा करने के बाद दिलचस्पी खो चुके हैं। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन।
2: जमुई जिला कुलगाम में तीन साल कबल हर देहात में घरेलू और दीगर कचरे को जमा करने के लिए खसूसी शेड तामीर किए गए थे, ताकि सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाया जा सके। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि कचरे को जमा करने के बाद उसे साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के लिए मोस्तर इकदाम नहीं किए गए हैं। इतलाक के मुताबिक जिला के मुख्तलिफ देहात और कस्बाजात में कायम करदा वेस्ट कलेक्शन शेड में बड़ी मकदार में कचरा जमा किया जाता है, जो रोजाना कुलगाम के लिरव इलाके में डंपिंग साइट पर फेंकते हैं। लिरव में कूड़े करकट का डंप एक संगीन अवामी मसला बनता जा रहा है। फिल वक्त यहाँ पर हजारों टन कूड़ा करकट जमा है, जिसे जदीद तरीके से ठिकाने लगाने कोई तवज्जा नहीं दे रही है। मुकामी बाशिंदगान का कहना है कि कचरे के इस वसी ढेर की वजह से दर्जन हवा में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और उफूनत फैल रही है। लोगों का कहना है कि क्योंकि आने वाले महीनों में गर्मियां मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है और इसके नतीजे में कूड़ा करकट का ये डंप आवाम की सेहत के लिए एक संगीन मसला बन सकता है। इस जमन में मुकामी मौजदीन पर मुश्तमिल एक अवामी वफद ने शहरबीन को तफसीलात बताते हुए कहा कि महकमा रूरल डेवलपमेंट की जानिब से जिला कुलगाम के मुख्तलिफ देहात और कस्बाजात से म्युनिसिपल कमेटियों के अहलकारान रोजाना सैकड़ों टन कूड़ा करकट जमा करके डंपिंग साइट के मुकाम पर फेंक दिया जाता है। अगरचे कचरे का डंप ये कहकर कायम किया गया था कि यहाँ पर कूड़े को सिग्रीगेट यानी अलग अलग करके इसे साइंटिफिक और जदीद तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ताकि कूड़े करकट का यह ढेर बीमारियां फैलने का बाइस न बने। इस जमीन में यहाँ कचरे को ठिकाने लगाने का एक प्लांट भी कायम किया गया था, लेकिन अमली तौर पर इस प्लांट को चालू नहीं किया गया है। मुकामी बाशिंदगान का कहना है कि उन्हें खदशा है कि लिरव कुलगाम में कूड़े करकट का यह डंप आवाम के लिए इसी तरह से वबाली जान न बने, जिस तरह श्रीनगर के अछन इलाके में कायम कचरे के पहाड़ नुमा डंप गिरजनवा की आबादियों के लिए मुसीबत का बायस बन चुका है। मुकामी लोगों के वफद ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले पर पूरी तवज्जा दी जाए, ताकि पूरे जिला कुलगाम को साफ सुथरा और सेहतमंद जिला बनाने के मकसद को अमली जामा पहनाया जा सके।
1: अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुन।

0: सभी हाजरीन ने बयक जबां होकर इस बात का इजहार किया कि कश्मीर के मशहूर गुलूकार अब्दुल रशीद हाफिज को फोरम का सदर जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला शाखसाज को नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफार खान हामी गुलजार अहमद मीर को खजानची मुंतखब किया गया। इजलास 2 जून को मुनक़िद हुआ और आज इस सिलसिले में प्रेस बयान जारी किया गया। इसके साथ ही शहर भी इनका वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
3: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मैंने मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने शरीर से विटामिन ए तो विटामिन बी कमी द्रामस।
7: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों के इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार त्रावने, विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदार।
6: मगर यह है सठा द्रोग?
7: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंत प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन हिज जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: अरे वहाँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
11: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी पर चक्कर लगाने पड़ेंगे।
10: नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
11: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
10: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
11: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
10: माँ, सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
11: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
10: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
11: शुक्र है, और डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
10: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं। इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
12: ये छे आकाशवाणी श्रीनगर शाम चे 7:30 खबर नाम हेत चुस बु रियाज हाजनी। गोड खास खास खबरन पेट अख नजर। भारत मईशत आलमी चैलेंजो बावजूद तरक्की हंज नव वत पे गामजन वजीर अजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दर रोव जमीनी सुथरस पे मनशियात खिलाफ वतवन आवाज पोछर बख्शनस नारको टेररिज्म खातिम कर इरादे। श्रीनगर पुलिस दस दोन ड्रग स्मगलर हंद 3.5 करोड़ रुपये हंद मलियत रिहायशी मकान जब्त। चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू सुंद जम्मू कश्मीर कें सारे बड़े हस्पताल मज तबी सहूलियत पोछर दिन पे जोर।

0: एक मसाइल को हल करने के मौके पर ही हिदायत दी। इस मौके पर असेंबली में हिजबी इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, किश्तवाड़ के असेंबली मेंबर शगुन परिहार और कई दीगर अफसरान भी उनके हमराह थे। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज सतवारी जम्मू में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मयार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। बाद में उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्पलेक्स का भी दौरा किया और वहां जारी तजदीदी कामों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज़ देने और लोगों तक मयारी सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे हेल्थ सेक्टर के असलाहत की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के टर्शियरी केयर अस्पताल में तिबी सहूलियात को मजीद मुस्तकम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान सेहत की शोबे की दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकज में एनडीए हुकूमत ने 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासरात।
1: मैं सोफी सजाद अशमकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है और उसको मेडिसिन भी इस पे फ्री मिल रहा है। हम दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मशकूर हैं।
0: दरियासा सियाहत और कल्चर के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुल्क में पिछले 12 वर्षों के दौरान शमसी सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त 4 मिलियन से ज्यादा घर शमसी तवनाई से मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरिए शोबे में भी शमसी तवनाई का इस्तेमाल दोगुना हो गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रखशान राबी ने आज बांडीपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क की अजीम तारीख और बीजेपी की तरक्याती नक्शेराह पर रोशनी डाली। उन्होंने कुपवाड़ा में भी इसी तरह के एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा में आज चौथे 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसम ने जम्मू कश्मीर में पर्पल रेवोल्यूशन के मुस्बत पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर सीएसआईआर आईआईएम जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर अहमद ने बदरवा में लेवेंडर काश्त की हौसलियाबियों का खाका पेश किया। जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्रीनगर में मुनाकिदा एक अदबी तकरीब के दौरान वादी के एक मारूफ कलमकार मुसन्निफ तर्जमाकार और फिल्म साज गौरी शंकर रैना की तस्नीफ कदा किताब यू टर्न एंड अदर स्टोरीज की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मारूफ तालीमदान और शायर पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि गवर्नमेंट वेमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर यास्मीन फारूक के अलावा मारूफ मुसन्निफ और नकाद प्रोफेसर फारूक फयाज ने मेहमान जी वकार की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। तकरीब पर कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, डॉक्टर रफीक मसूदी, मुश्ताक अहमद अली खान, निसार नसीम, एहसानुल हक चिश्ती, डॉक्टर आबिद अहमद और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में गौरी शंकर रैना ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा तारिक राहतर के साथ बात करते हुए कहा,
2: بیسیکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی. یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں 2020 میں پبلش کیا تھا, اور 2021 میں یہ یہاں پر سری نگر میں ہی وہ اوریجنل کتاب ریلیز ہوئی تھی. اس کی ریلیز ہونے کے بعد کچھ افسانے بہت پاپولر ہوئے, لوگوں کو بہت پسند آئے جو پڑھنے والے تھے قاری. کئی دوستوں کا یہ اصرار تھا, اور انگریزی میں بھی اگر ان کا ترجمہ

0: सरकोशों की बदौलत जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 111 टन गिलास को कामयाबी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया गया है। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंघल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से गिलास की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे वादाबंद है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह गिलास और दीगर जरिए पैदावार की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे सहूलियात का भरपूर फायदा उठाए। द विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल और परसों शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्पलेक्स श्रीनगर में 20वें एशियन गेम्स जापान के लिए भारतीय विश्व टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स का इनेकाद कर रही है। इस हवाले से नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हुंडू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कैंप लगाया सर अहमदाबाद में, तो अभी हमारा सर 20 मई से लेकर 8 जून तक यहाँ पर कैंप चल रहा है सर, नेशनल कोचिंग कैंप, ये सर 23 जून तक चलेगा सर। इन बिटवीन सर हमें इंडियन ओलंपिक की तरफ से डायरेक्शन चाहिए कि फाइनल टीम हमें बाय नेम देनी है सर बिफोर 10th ऑफ जून सर। विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम ट्रायल करेंगे श्रीनगर में सर 5 से लेकर 8 तक सर। हमारा कल फिटनेस टेस्ट था कश्मीर यूनिवर्सिटी में सर, आज वेइंग था, कल सर हमारा स्पेसिफिक टेस्टों का जो मेन है फाइटिंग का और जिसमें तावलू इवेंट है दोनों, उसमें सर जो स्पेसिफिक देखेंगे सर, टेस्ट करेंगे सर, जो बेस्ट होगा हमने सर 13 खिलाड़ी निकालने हैं सर।
0: और अब मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसका सबूत नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में भरपूर अवामी शिरकत से मिल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अज्म का इआदा किया है कि मुनशियात और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जारी रखा जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जा सके। इस मुहिम का नुमाया पहलू वो आदादोशुमार है जो गुज़िश्ता 56 दिनों की कार्रवाईयों की अक्कासी करते हैं। इस अरसे में 1036 FIR दर्ज की गई, 1128 मुनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, 100 से जायद जायदादें जब्त की गई, तकरीबन 700 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए जबकि 130 मुनशियात स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश की गई। एक ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने 3,50,00,000 रुपए मालियत की जायदादें मुंसलिक की। ये आदादोशुमार इस बात का सबूत है कि इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम मुश्तरक तौर पर मुनशियात के चैलेंज से निपटने के लिए सरगर्मे अमल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुनशियात का मसला महज समाजी या सेहत आमा का मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती से भी जुड़ा हुआ मामला है। मुनशियात स्मगलिंग से हासिल होने वाला सरमाया दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर होता है और अमन तरक्की व इस्तेकाम को भी खतरात लाहक होते हैं। इस तनाजुर में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाईयों को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। मुहिम का एक इंसानी पहलू ये भी है कि मनशियात की लत में मुब्तला अफराद की बहाली को तरजीह दी जा रही है। इलाज और मशावरत फराहम करके इन्हें मुआशरे के मुफीद और फ़ाल शहरी बनाने की कोशिशें जारी हैं। इससे ये पैगाम मिलता है कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्ती और मुतासर अफराद के लिए हमदर्दी दोनों पहलू साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम एक ऐसी अवामी तहरीक बनकर सामने आई है जिसका मकसद मुनशियात का खात्मा नीज महफूज सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल की तामीर है। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। शब बख़ैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: वादी की आवाज।

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

0: दोस्तों अब पेश है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। सुनना चाहते हैं सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे और ऋषिकेश खुर्जा, उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा, चंदन अरोरा, प्रकाश अरोरा और अंकुश अरोरा। अनिल कुमार वर्मा का मेल हमें मौसूल हुआ है सदर बाजार कुरावली से। आपके साथ है माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। बिट्टू बाटिया ने मेल भेजा है जज्जर हरियाणा से। आपके साथ है रीता बाटिया, रजत बाटिया, मंजू और मयंक। नौशारा गिलकदल से जावेद अहमद भट्ट, जमीला भट्ट, लारेब इजहान, मोहम्मद रफीक भट्ट और मोहम्मद अशरफ भट्ट। जनकपुरी सहारनपुर से मेल आया है जॉन डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा और विल्स डिकोस्ट्रा। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय हिरामन और महेश रामटेके। और केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी फरमाइश पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नगमा। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण।
1: क्या कहा?

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। दोस्तों, अब पेश है फिल्म उपहार से नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। सुनने के ख्वाहिशमंद है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्या नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी कार्वी और बेबी हिमाक्ष। डबवाली हरियाणा से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय गोंडाने, हिरामन शिंडे और महेश राम टेके। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियांशी मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद सिंह और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। चंडीगढ़ सिटी से मेल आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की जानिब से। मजहर अली अंसारी ने मेल भेजा है अस्तुपुर जिला माओ से। आपके साथ है रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म उपहार से नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, दुर्गा कॉलोनी हंसी से मेल हमें मौसूल हुआ है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू की जानिब से। महलूल नगर जिला हनुमानगढ़ से बाई प्रेम सिंह वड़वाल, सुखवीर काजल वड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगोली, निशान अनमोल, चटकू और मटकू। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने मेल भेजा है। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोरी। अहमदाबाद से मेल आया है कंचन, कुसुम, सूरज और सोनार की जानिब से। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत। किशनगंज बिहार से ये मेल हमें मौसूल हुआ है रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और बानु प्रिया की जानिब से। और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी और स्वाति प्रयाग खर्चे ने मेल भेजा है। आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म आक्रमण से नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में, सुनिए अपनी पसंद। देखो।

0: दोस्तों, इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 MHz पर।

0: 8:30 हुए हैं।
1: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
2: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जरी मंजरनामे से मुतल्लिक बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एजाजा अख्तर, रेहाना अजीज और आबिदा अख्तर। समीम ज़राअत का शोबा जहां हमारी खाने पीने की जरूरतें पूरा करता है, वहीं ये शोबा दौरे जदीद में रोजगार के मौके फराहम करने से मुतल्लिक एक अहम मुतबादिल के बतौर उभर रहा है। सरकार ने शोबे को एक नई जहत देने के लिए जहां टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वहीं अब किसानों को मयारी किस्म के बीज फराहम करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने की तरफ भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। जरी शोबे को फरोग देने के मकसद के हसूल में फ्लैगशिप स्कीमें भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। अनंतनाग जिले में फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी से मुतल्लिक जब हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शाहनवाज शाह से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा,
3: जितने भी हमारे

0: यूथ अभी एंगेज हुए हैं वो बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, और तमाम जो यूथ है उनसे गुजारिश है कि वो उनमें अप्लाई करें, HADP, JKCIP या कैपेक्स में या CSS में जितनी भी स्कीम्स है वो फार्मर्स के लिए है। और हम चाहते हैं कि जो यूथ है एग्रीकल्चर में जो मेन कैश क्रॉप्स है जैसे वेजिटेबल कल्टीवेशन है या फिर पल्सेस है या फिर ऑयल सीड्स है या एपिकल्चर है, मशरूम है, कहीं से भी जिसमें भी इंटरेस्ट है किसी यूथ का, तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेजर एरिया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का पैड़ी में आता है और मेज बेल्ट्स है हमारे लगभग 14,000 हेक्टेयर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो जमींदार भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो स्टोर्स पे विजिट करके वहां पे सीड हासिल करें ताकि हमारा जो क्वालिटी सीड का जो एक चेन है वो बरकरार रहे और फार्मर्स को बेहतर से बेहतर सीड अवेलेबल हो सके।
1: सर, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि किसान कभी कभी परेशान भी रहता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और ऑलरेडी अराउंड, कभी ज्यादा गर्मी कभी कम, तो क्या घबराना चाहिए या कोई खास जो आपने एडवाइजरी जारी की है उस पे अमल आवर होने की काफी जरूरत है?
0: बिल्कुल, जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रही है जी जी। आपने देखा होगा कि नॉर्मल से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो इस वजह से क्रॉप्स में काफी असर देखने को मिल सकता है। तो इसमें हमने फार्मर्स को पहले भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा यूरिया डोज जो है वो अप्लाई करें, टाइमली जो टॉप डोज होता है वो तो करना ही होता है। अगर खुदा ना खासा कहीं पे भी कोई इरिगेशन का इश्यू होता है तो वो हम कंटिंजेंसी प्लान में लाके उसमें जितने भी अल्टरनेट सीड्स का बंदोबस्त है वो करेंगे, और फार्मर्स को यही गुजारिश की जाती है कि वो डिपार्टमेंट के साथ टच में रहे और जहां पर भी कोई इश्यू हो वो हमारी नोट्स में लाके हम उसका हल निकाल सके।
1: फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, क्या किसान इस पे अमलावर हो रहे हैं?
0: जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि 100% फार्मर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। और जहां तक कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बात हो रही है उसमें जितने भी लेफ्ट ओवर फार्मर्स हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो जोनल ऑफिस पे जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे और हम उनका जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करें। और इसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजास्टर होते हैं या फ्लक्चुएशन की वजह से क्रॉप्स में नुकसान हो सकता है और फार्मर्स को काफी भुगतना पड़ता है फाइनेंशियली, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो स्कीम है वो लागू की हुई है पहले से ही, और एग्रीकल्चर में तो पहले से ही 2021 से वो चली आ रही है खास करके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कवर हो रहा है पैड़ी और मेज। तमाम जमींदार भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं इस आपके जरिए से कि इस स्कीम का फायदा उठाए, उसमें रजिस्टर करें। हमारे जो कैंप्स है वो अभी चल रहे हैं और हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो आपके पास आएंगे और 100% उसमें कवरेज होनी चाहिए ताकि कोई भी फार्मर उसमें रहे ना, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फार्मर फ्लैश फ्लड्स या हेल स्टॉर्म या कोई और नागानी आफत की वजह से फार्मर्स का क्रॉप डैमेज होता है तो फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं कंपनसेशन के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है मिनिमल प्रीमियम के एवज में वो रजिस्ट्रेशन होती है, और हर एक फार्मर से यही एक बार मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि इस स्कीम का भी फायदा उठाए और जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें भी रजिस्टर, जैसे KCC है या सॉयल हेल्थ कार्ड है या PM किसान है, जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें रजिस्ट्रेशन करें और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाए।
1: शर्मा साहब, चूंकि आपके पास डिटेल्स मौजूद है, कितने लोगों को KCC के तहत अभी तक जिला में फायदा पहुंचा है?
0: हमारे जो फार्मर्स हैं लगभग 90,000 के करीब जितने भी जो अभी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, और 1594 करोड़ का अब तक का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्बर्समेंट हो चुकी है। तो फार्मर्स से यह गुजारिश है कि इन स्कीमों का फायदा उठाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स फार्मर्स की बहबूदी के लिए लाई हुई है। आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है PM किसान, उसमें भी हमारे लगभग 79,000 फार्मर्स जो है वो रजिस्टर्ड है और वो अपना जो क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट उनको मिलता है वो मिल रहा है, 2000 का इंस्टॉलमेंट है, पूरे साल का 6000 वो उनको जाता है इनपुट्स के लिए, तो उसके जरिए भी वो PM फसल बीमा योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं।
2: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
3: शुक्रिया तजमल। सामईन, हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से चंद साल कबल शुरू की गई HADP नामी फ्लैगशिप स्कीम की बदौलत यहाँ के जरिए मंजरनामे में इनकलाबी

0: तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। HADB से जहां काश्तकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसलों के तनों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, वहीं इसकी बदौलत रोजगार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब लोगों में ज़राअत और ज़रई सरगर्मियों की निस्बत दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने HADP से मुस्तफीद हुए कुछ नौजवानों से बात की तो उन्होंने अपने तासरात का यूं इजहार किया।
1: जी, मेरा नाम आमिर शफी है। जो ये 2026 का जो सीजन है, हमने इसमें कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं। मैं जो है इस बार जो हम सेंट्रल तरीके से एग्रीकल्चर जो करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि पूरे कंट्री में 10,000 FPO क्रिएट करने हैं। और उसी तरीके से हमारा भी एक FPO है अनंतनाग में, और ब्लॉक अछाबल जो आता है अनंतनाग में, कई सारे FPO है, ठीक है, मोर देन 10 FPO है, लेकिन जो हमारा FPO पर्टिकुलरली जो मेरे अंडर FPO आ रहा है, तो हमने इस बार सोचा है कि हम फार्मर्स को साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग कराएंगे, मल्टी लेयर फार्मिंग कराने की सोच रहे हैं। और हमें इस जमन में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जितने भी हैं, हमने उनसे भी मदद ली है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने हमें रिसेंटली प्रोवाइड की है, सीडलिंग प्रोवाइड की है, और सुकॉस्ट शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनने प्रोवाइड किया है कि बहुत क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड किए हैं, और बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह वो कॉस्ट से आ रहे हैं।
2: HADP प्रोग्राम है जो बहुत ही बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का ऑल अक्रॉस द कंट्री, और इसके साथ साथ हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त रवा दवा है। जो HADP प्रोग्राम है, इसमें हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम है, जो डिफरेंट फार्मर ओरिएंटेड स्कीम्स है, प्रोग्राम है, जिसमें यहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट जो काम करते हैं हमारे देहातों में, हमारे किसान भाई फार्मर्स जो उनके पास पैचेस ऑफ लैंड्स है, उनमें उनको मिनिमम लैंड में हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन को इजाफा हो जाए, इनडायरेक्टली वो फार्मर की इनकम जनरेट होती है। इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, इंटरक्रॉप डेवलप करने के लिए, मोर प्रोडक्शन मिनिमम लैंड पे एक्वायर करने के लिए HADP, और इसके साथ साथ इसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है।
0: और अब माइक रेहाना अजीज के हवाले।
3: शुक्रिया एजाजा। समी फ्लैगशिप स्कीमों की तरतीब के वक्त जरूरी है कि अवामी नुमाइंदे सरगर्मी के साथ अपना रोल निभाएं, क्योंकि अवाम के साथ जमीनी सतह पर जुड़ा होने की बदौलत इन नुमाइंदों को आम किसानों की जरूरियात और उनकी उम्मीदों का बखूबी इल्म होता है। ये बात भी जरूरी है कि अवाम के वोट से इक्तदार के ऐवानों तक पहुँचने वाले ये नुमाइंदे मुतल्लिका महकमे के हुकाम को इस बात पर आमादा करें कि वो सरकार की फलाही स्कीमों से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के खातिर गाँव गाँव जाकर प्रोग्राम का इनेकाद करें। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने इस मामले पर मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान से बात की तो उन्होंने कहा
4: कि मैं जो एग्रीकल्चर की है, मैं इनको कहूंगा ये रेवोल्यूशनरी है, और इनकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है हमारे एग्रीकल्चर। एक तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दूसरा रोजगार में दिन ब दिन इजाफा जाता रहा है, और इनका ज्यादा रुझान लोगों का इसकी तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि ये नई नई इनोवेशन है, और जिसमें एक इनकम का अनुसर भी है और दूसरा प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर जो आज काम करना है, इस काम को और सुरत के साथ बढ़ाकर मुझे लगता है ये हमारी डेवलपमेंट और विकसित भारत बनाने के लिए एक अहम कदम होगा।
5: रिया साहब, हमेशा मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि आप खुद भी आपने एक स्लोगन यहाँ पे कॉइन किया था, मैं भी किसान, उस उन्वान के तहत जहां पे भी आप जाते हैं आप एल्डरली किसानों के साथ उनसे सलाह मशवरा लेकर जो नौजवान है नौजवानों को ज्यादा रागिब इन फलाही स्कीमों फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के हवाले से आप रागिब करते हैं, कुल मिला के कैसा रिस्पॉन्स है, और कोई खास बात जो आप बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे?
4: मैं बताऊं जो हमारे बुजुर्ग फार्मर्स हैं उनको एक बदकिस्मती थी, उनको ये पूजन नहीं मिल रहा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं था जितना हमारे ये बुजुर्ग किसान जो है इनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा है जो आज की साइंस के साथ मेल खाता है। आज का साइंस और उनका तजुर्बा जब मिलता है तो मुझे लगता है हमारी रियासत को और ज्यादा आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी अब नहीं होगी, और साथ साथ हमारे जो जवान है वो भी एग्रीकल्चर से रागिब हो रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि इंसेंटिव्स बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और वक्त करीब में हम एग्रीकल्चर में रूल करेंगे।
5: रिया साहब, ये बताएं कि आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपने बहुत सारे किसानों को जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी से बाहर आपने उनको भेजा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सलाह मशवरा मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम से हासिल करें, कैसा रिस्पॉन्स इन एल्डरली किसानों का रहा जो बाहर आपने भेजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए?
4: जब हमने यहाँ से उन किसानों का इंतखाब किया बाहर भेजने के लिए तो रिलक्टेंस बहुत ज्यादा थी, चाहे रात को चार नाम आते थे सुबह दो इनकार करते थे, लेकिन जब वो यहाँ से गए फिर वहां जाके जब मैंने उनसे इंट्रोडक्शन की, वो

0: इतना ज्यादा मुतमइन और खुश थे, उनने बहुत कुछ सीखा है। और उनने मुझे ये कहा कि काश हम भी उसी तरह मेहनत करें जम्मू कश्मीर यूटी में जैसे बाहर के लोग मेहनत करते, हम उनसे ज्यादा पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और आमदनी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उनने कहा कि हमारी जमीन जितनी ज्यादा फर्टाइल है, बाहर इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, जितने हमें हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है उतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है। उसके बावजूद यहाँ ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये हमारी हुकूमत ने ये स्टेप उठाया है यहाँ से किसानों को बाहर भेजना, वहां से तरबियत हासिल करके यहाँ से है। मैं यही कहूंगा जो वहां से वापस आए तो उनसे जब मैं मिला, इनसे इंटरेक्शन हुई, मैंने उनको मुतमइन देखा और खुश पाया।
1: आप पेशे प्रोग्राम का इदारिया पेश कर रही हैं आपदा अख्तर।
2: शुक्रिया रेहाना। जमीन ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबाजात में दौर जदीद में रोजगार के बेहद वसाइल है और दुनिया भर की हुकूमतें अब ज़राअत के शोबे पर इंटीग्रेटेड तर्ज पर तवज्जो दे रही है। और अब जहां कोई जमींदार हाई डेंसिटी सेब के बागात लगा रहा है, वहीं वो इसी बाग में पोल्ट्री या भेड़ पालन का यूनिट कायम करके एक ही वक्त में एक से ज्यादा तरीकों पर आमदनी हासिल कर सकता है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर पढ़े लिखे नौजवान के लिए सरकारी नौकरी का हुसूल नामुमकिन है, और ऐसे में हमारे नौजवानों को भी इस बात का इदराक करना चाहिए कि व्हाइट कॉलर जॉब्स अब सभी के बस की बात नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि हमारे नौजवान कमर हिम्मत कस लें और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबाजात, खासतौर से भेड़ पालन के शोबे में रोजगार के मौके तलाश करें। हुकूमत ने ज़री शोबे में तरह तरह की स्कीमों को अमलाने का अमल शुरू कर दिया है और इन स्कीमों के तवस्सुत से मेहनती नौजवान अपनी और अपने कुंभों की तकदीर बदल सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि वो इन फलाही स्कीमों के ताल्लुक से जिस कदर भी हो सके ज्यादा से ज्यादा जानकारी पैदा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीमों से मुस्तफीद हों।
3: इसके साथ ही जलनामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौश की कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
4: आप समाप्त कर रहे थे हमारे शोबे खबर का तैयार करदा प्रोग्राम जिलानामा। आज का जिलानामा अनंतनाग जिले से मुतल्लिक था। यह आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8:45 हो रहे हैं। आइए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक

0: उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our time.
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना

0: रमेश वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का सड़क पर एक ट्रक से

0: वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ईशा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 77.8 मीटर ते FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रात संजा 9 बजे सामिन वलिव कशर मौसीकी बोझो गोड़ बोझो कला में स्वच्छ क्राल सदाकार्य नसीमुल हक़।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया।

0: मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरबा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है, जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया का तनाज़ा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इत्तला मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए, जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी परगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्याडे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 وکٹ پر 368 رن بنا لیے تھے۔

0: आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माहे में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 2 103.5 MHz पर। रात के 9:30 हुए हैं।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम पेशरफ्त।

0: उन बच्चों के लिए जिन्हें सीमैट नहीं दिया था, उनके लिए एप्लीकेशन अभी लाइव है। तो वो बच्चे जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई करेंगे ताकि उनका एमबीए में एडमिशन। हाँ, और एक एमबीए क्राफ्ट मैनेजमेंट हमारा है जो बागेली मर्दन खान वहाँ पर चलता है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लाइव है।
1: सर यकीन उस जमीन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो जो क्राफ्ट मैनेजमेंट में एमबीए है बागेली मर्दन खान हवल साइड से, तो उस कोर्स के हवाले से सर अगर थोड़ा सामीन को कुछ पता चले।
0: वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पता नहीं शायद बच्चों को पता ही नहीं, उसमें उनका स्कॉलरशिप रहता है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इनफैक्ट आज सुबह मैं उनके कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा था कि आप शायद अपने इस प्रोग्राम को बच्चों तक नहीं पहुँचा पाए हैं, क्योंकि वो अप्लाइड एक प्रोग्राम है क्राफ्ट के वसादत से। तो मुझे लगता है अगर बच्चे एक बार एडमिशन से पहले वहाँ जाएं, उनके वहाँ पे फैसिलिटीज देखें, उनकी जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो देखें, मुझे लगता है कि वहाँ सीटें वैकेंट रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: उस सर जो क्या हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वहाँ पर
0: जी
1: जैसे
0: वो एंटरप्रेन्योरशिप क्राफ्ट डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो उसीलिए बनाया गया था कि बच्चे क्यों ना सेल्फ सस्टेनेंस पे आ जाएं, वो क्यों नौकरी के पीछे, वो क्यों ना जॉब प्रोवाइडर्स बने।
1: तो सर क्या यूं कहा जा सकता है सर हमारे जो कश्मीरी की एक लेगेसी है, हमारे जो शॉल्स है, पेपर माशी है, कारपेट्स है, अब वो ऐसी फैमिलीज जहां पर वो ट्रेडिशनली चल रहा है या जो कर रहे हैं करंटली इसके साथ उनके जो बच्चे हैं, रादर देन वो ऐसी जॉब्स में जाए राइट लेफ्ट, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि नहीं ये ऐसा कोर्स है जहां उस लेगेसी को आगे बढ़ा।
0: वही बोलता हूँ, ये बहुत अच्छा, और यूनिवर्सिटी ने इसी बेसिस पे, इन पे गवर्नमेंट ने इसी बेसिस पे उसको किया था कि क्यों ना हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट बने।
1: और सर इसमें कौन कौन सी वो क्राफ्ट्स आते हैं थोड़ा अगर उसकी
0: वो एग्जैक्ट में सारी डिटेल्स नहीं दे सकता क्योंकि वो इंस्टीट्यूट को ज्यादा पता होगा, इसलिए हमने सारे इंस्टीट्यूट को बोला है कि वो वहाँ पे ओपन रखें अपना ये जब एडमिशन चलता है। अभी कोई भी बच्चा जाएगा वो उनको फुल डिटेल्स देंगे वहाँ पे कौन कौन सा क्राफ्ट है, किसमें क्या आगे बढ़ने के चांसेस।
1: सर अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर सारे हैं जो भी हों,
0: मैं उनसे बात करता हूँ, मैं मे बी इस प्रोग्राम में
1: यहाँ आ जाए तो इंशाल्लाह
0: मैं भी उसमें हेल्प,
1: हमारी वो जो मास मीडिया की वसादत से, रेडियो की वसादत से वो पैगाम आम हो जाए क्योंकि कोर्स बहुत अच्छा है। सर अब NEP 2020 मेरी भी ऑब्जर्वेशन रही है ग्राउंड पे कि बच्चों से बात होती रहती है इस हवाले से, एक कन्फ्यूजन टाइप है अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेज लेवल बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो चुके हैं और लेकिन पेरेंट्स लेवल पर जो पेरेंट्स हैं अब बच्चे कितना कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे घर पे, तो उन पेरेंट्स को एड्रेस डायरेक्टली करते हुए ये जो नेशनल NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है सर, इसमें एक कंसेप्ट रहा है अब जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है और अकॉर्डिंगली फिर मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। सर थोड़ी सी वजाहत कर दी,
0: इसमें बहुत वजाहत की जरूरत है क्योंकि इसमें वाकई बच्चे अभी पूरा समझ नहीं पाए हैं। अब बच्चे के हम बोले तंजर साहब ईमानदारी से बताएं, यूनिवर्सिटी को भी 1 साल लगा इस पूरे अमल को पाए तक मिल तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि इसको डिफरेंट मराहल से पहले हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फिर उसको स्टैट्यूटरी बॉडी से जाना पड़ता है, फिर अप्रूवल मिलता है तभी जाके हम करते हैं। तो पिछला पूरा साल हम क्योंकि 2022 में शुरू हुआ, लास्ट ईयर इसमें 3 साल तक के बच्चे थे, जो लास्ट ईयर हमारा बैच आया वो नेप का ही बैच था लेकिन 2 ईयर मास्टर्स के लिए, इस साल हमारे पास 1 ईयर मास्टर्स का बैच आएगा। तो जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था कि दूर दराज कॉलेजेस में अगर बच्चा है, अगर वहाँ फैसिलिटीज अब क्रिएट हो गई हैं, कॉलेजेस बहुत पुराने हैं, वहाँ बच्चे क्यों ना 1 साल वहाँ पे दें और उसके बाद 1 साल मास्टर्स के लिए यहाँ पे आए। तो इसलिए हमारे पास अभी इस एडमिशन के लिए जो अभी हमने परसों ही नोटिफिकेशन डाली है 1 जून को, अभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं मास्टर्स जितने, हमारे पास 59 प्रोग्राम्स हैं, ये 69 प्रोग्राम है हमारे पास जो मास्टर्स के लिए हैं एक्सक्लूसिवली मास्टर्स, तो लेकिन उनमें से 47 के आसपास में खाली है जिसमें 1 ईयर है, कुछ प्रोग्राम में 1 ईयर नहीं है, उनमें खाली 2 ईयर है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि कुछ प्रोग्राम्स अभी नेप में कवर नहीं हुए, जैसे एमसीए नेप में कवर नहीं होता इसलिए उसमें 1 ईयर नहीं है, एमबीए वो भी अभी नेप में कवर नहीं है तो इसलिए उसमें भी नहीं है, और इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें अभी कॉलेज लेवल पे बच्चे नहीं है हमारे पास 4th ईयर में, तो सारे प्रोग्राम्स 1 ईयर नहीं हुआ। अब मामला यह है कि अभी ये सारे बच्चे या तो 6th सेमेस्टर में हैं या तो 8th सेमेस्टर में हैं। 6th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो एलिजिबल, वो जून में एग्जाम देंगे, जुलाई में उनका रिजल्ट आएगा, जुलाई में उनका एंट्रेंस भी होगा, तो हमने ऐसे ये तरतीब दिया है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। तो जून में चूंकि एग्जाम दे रहे हैं तो इस दौरान मैंने खाली एप्लीकेशन डाली, एंडिंग जून 30th जून उसका लास्ट डेट है, जुलाई 15 से हम इनके एंट्रेंस कर रहे हैं। अब हमने क्या करा कि ये जो 6th सेमेस्टर में 3 साल वाले ग्रेजुएट्स वो खाली 2 साल वाले प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, लेकिन जिन्हें कॉलेज में 4 साल

0: दिए हैं उनके लिए हमने ऑप्शन दोनों रखे ओपन, भले ही वो 1 ईयर के लिए आए भले ही वो 2 ईयर के लिए आए, लेकिन बच्चे शायद ये समझ नहीं पाए। कल ही हमें 2 एप्लीकेशन मॉडिफाई करानी पड़ी। बच्चा आया 4th ईयर में जो है वो आया, उसने खाली 1 ईयर के लिए भरा था, फिर हमारे पास आया साहब क्या मैं 2 ईयर के लिए भी एलिजिबल था, मैंने कहा लेकिन फॉर्म भरा था, फिर उसका फॉर्म मॉडिफाई करना पड़ा। इसलिए इन बच्चों को जो 4th साल में है उनको ये जहन में रखना है कि वो दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर वो आना चाहते हैं 2 ईयर मास्टर्स के लिए वो उसके लिए भी एलिजिबल है, अगर वो स्ट्रिक्टली 1 ईयर मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। अब हम क्यों बोलते हैं वो दोनों में करें, 2 ईयर मास्टर्स के लिए हमारे पास 80% सीट्स हैं लेकिन 1 ईयर मास्टर्स के लिए हमारे पास 20% सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो अपना वो रिस्क कवर करने के लिए हमारी ये सजेशन रहेगी कि जो 4th ईयर में कॉलेज में बचा है वो दोनों के लिए अप्लाई करें। पहले हम प्रायोरिटाइज करेंगे उसको 1 ईयर के लिए, अगर गॉड फॉरबिड उसका 1 ईयर में नहीं हुआ तो वो एलिजिबल है 2 ईयर मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करने के लिए। लेकिन बच्चों को अप्लाई करते वक्त ये ऑप्शन देना है, अगर कोई 1 ईयर खाली देता है तो उसको हम खाली 1 ईयर, कल को बोलेगा नहीं साहब अब मैं 2 ईयर में आना चाहता, तो कल हम ये मॉडिफाई नहीं कर सकते।
1: सर जो बच्चे 4 साल का अभी ग्रेजुएशन करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट है कोई वो डायरेक्ट PhD के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड इस चीज को लेके सीधा ग्रेजुएशन के बाद PhD, क्या सर वो सारे बच्चे जाएंगे या उसके लिए भी कोई नॉर्म है?
0: यही ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है। 4th ईयर में जो रिसर्च मोड में बच्चे, उसमें 2 मोड्स होते हैं, एक ऑनर्स मोड होता है एक होता है रिसर्च मोड। जो बच्चे रिसर्च मोड में होंगे अगर उनको 7.5 CGPA आएगा, मीन 75% उसको हम नॉर्मली बताते हैं मार्क्स आएंगे, उनको नेशनल लेवल को एग्जाम या सेट जैसे नेट या सेट या गेट जो जिन बेसिस पे PhD का एडमिशन होता है, क्योंकि PhD का एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ से कोई मास्टर्स करेगा उसको भी PhD नहीं होता है डायरेक्टली, उसको भी कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वो बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं 4th ईयर में हैं उनको इंश्योर करना है कि जितने बेबी नेट के एग्जाम्स आने वाले हैं, सेट का एप्लीकेशन आने वाला है, उनको पहले नेट या सेट या गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है जहाँ पे जो रेलेवेंट एग्जाम होगा। अगर वो वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे फिर वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये गैप है, बच्चे शायद अभी ये बात नहीं समझ पाए कि हमें एलिजिबिलिटी बनाने के लिए नेट सेट और गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है।
1: यहाँ सर ना स्टूडेंट्स की तरफ से मैं एक वजाहत चाहूँगा आपसे, याद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी रहनुमाई करें उस चीज़ की, जो नेट होता है या सेट होता है अक्सर हमारा ये पोस्ट ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने की हो और 55% मार्क्स उसके रहे हो वो एलिजिबल होता है, लेकिन उसमें यकीनन ये है कि 2 सेमेस्टर के बाद ही वो शायद एलिजिबल हो जाते हैं।
0: नहीं, जब एडमिशन लिया मास्टर्स में जो ही एडमिशन लिया उसके बाद एलिजिबल है।
1: मास्टर्स में एडमिशन
0: ही मास्टर्स में बच्चा एडमिशन जैसे जो 4th ईयर में ये बच्चे आए ना वो भी एलिजिबल है। जिस टाइम उन्होंने 7 सेमेस्टर ज्वाइन किया था वो उस टाइम से ही फॉर्म भर सकते हैं नेट या सेट का।
1: मतलब
0: इसी तरह जो मास्टर्स में पहले सेमेस्टर में जाता है उसी टाइम वो, क्योंकि अगर तन्वीर साहब आपको तो सारा पता है आपने डॉक्टरेट किया हुआ, ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इसका मतलब है अगर कोई बच्चा 1st सेमेस्टर में आते ही उसने नेट दिया, उसने क्वालिफाई किया, 2 साल उसको मास्टर्स कंप्लीट करने में लगे तब तक उसका वो एग्जाम स्टैंड है, 2 साल के बाद डायरेक्टली वो रिसर्च में जा सकता है क्योंकि उसने पहले ही वो एलिजिबिलिटी अपनी बनाई है। तो यहाँ पर भी ये शायद बच्चों में कन्फ्यूजन है कि वो 2 सेमेस्टर के बाद 3 सेमेस्टर के बाद या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद नेट या सेट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो पहले सेमेस्टर में एडमिशन एक दिन हो गया उनका मास्टर्स में कदम रखे हुए वो एलिजिबल है नेट या सेट देने के लिए।
1: लेकिन सर अब एक यहाँ क्वेश्चन ये उभर के आता है, अब कोई बच्चा है उसने ग्रेजुएशन की 4 साल की, अब उसने ऑप्ट नहीं किया अभी मास्टर्स के लिए लेकिन CGPA जो है उसका वो 75% है, अब वो अपियर होना चाहता है उस एंट्रेंस में,
0: हा?
1: तो अब जो नेट सेट की वो कंडीशन इसमें आ रही है बीच में, वो बच्चा जो ग्रेजुएशन में ही है भले ही उसने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, तो क्या हम ये मान के चले कि वो जो 4th साल उसका है जो PG का 1st ईयर शायद कंसिडर होगा
0: जी,
1: तो उसमें उसके बाद वो चीज उसको एलिजिबल बना रही है नेट सेट में अपियर होने के लिए, इज इट लाइक दैट?
0: डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ जिस टाइम उसने 7 सेमेस्टर ज्वाइन किया, 4th साल ज्वाइन ही किया,
1: 4th साल राइट सर,
0: वो उसी साल में वो नेट सेट का एग्जाम दे सकता है क्योंकि वो मास्टर्स का पहला साल माना जाता है।
1: बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मेरे जहन में पूछूं, लेकिन यकीन मुझे इस चीज का भी एहसास कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो मेरे जहन में ना आए और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। सर आप कुछ रहनुमाई करना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आप अपने स्टूडेंट मतलब हमारे सामीन को?
0: डॉक्टर साहब मैं कुछ पिछले साल के एडमिशन से लेके इस साल के एडमिशन को लेके मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। मतलब जब से हमने लिस्ट निकाले तब से लेके आज तक

0: कम से कम 20-22 बच्चे ऐसे आए होंगे, अगर उन्होंने एक गलती न की होती उनका एडमिशन हो गया होता। गलती क्या की है, आज सुबह की बात है, एक बच्चा है उसको OBC सर्टिफिकेट है, टाइम पे इशू हुई है, लेकिन बच्चे ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करी है, ना ही OBC लिखा है, ओपन मेरिट में फॉर्म डाला है, हम उसको ओपन मेरिट कंसिडर करते गए, हमने लिस्ट भी निकाली, बच्चे ने वो अपडेट नहीं करी थी, उसका एडमिशन नहीं हुआ। नंबर सेकंड, बच्चा उसके पास 12th के मार्क्स हैं, लेकिन हम चूंकि हम प्रोविजनली एडमिशन, हमारे पास दो क्लास होते हैं एडमिशन के, एप्लीकेशन के, एक जिस बच्चे ने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जैसे 12th का बच्चा है जिसका रिजल्ट आ गया था, वो नॉट प्रोविजनल में अप्लाई करता है, लेकिन जिसने जैसे CBSE के बच्चे थे उनका तब रिजल्ट नहीं आया था जब हमने एप्लीकेशन डाली थी, तो ऐसे वाले या किसी बच्चे का बैकलॉग था, ऐसे वाले बच्चों के लिए हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन कंडीशन ये डाली थी कि 18 तारीख तक ये बच्चे अपना 12th के मार्क्स अपडेट करें, या वो खुद कर सकते थे अपने डैशबोर्ड पर जाके, या तो फिर हमने एक डेडिकेटेड IT सेल रखी है वहाँ पर जाके कर सकते हैं, बच्चों ने नहीं किया। हमने जब देखा कि बच्चों ने नहीं किया, हमने मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर रखा, 3 दिन हम मॉडिफाई करते गए, पहले दिन रखा बच्चों की क्वायरी आई हमने मॉडिफाई किया, दूसरे दिन रखा हमने मॉडिफाई किया, 18 से लेकर हमने 21 शिफ्ट किया, 21 के बाद हमने 23 शिफ्ट किया, 23rd तक भी ये बच्चे गाफिल रहे, और आज वो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, अगरचे उनका हो भी जाता अगर उन्हें वक्त पे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा, जिस बच्चे का हमने मेरिट चढ़ाया उसके बाद अगर हम दूसरे बच्चे को उधर ले आए तो उस बच्चे का जवाब बनता है कि साहब ये बच्चा कहाँ से आ गया अगर ये पहले लिस्ट में नहीं था। तो ये पहली बात है, हम बच्चों से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो मेहरबानी करके जब वो अपडेट करते हैं या जब एप्लीकेशन डालते हैं, जैसे अभी वाला जो हमें मास्टर्स है, मास्टर्स का हमने 28th रखा हुआ है, 28th तक जुलाई, अभी जून चल रहा है, 28 जुलाई तक, ये हमने आज नहीं, ये हमने जब हमने मार्च में प्रॉस्पेक्टस अपलोड किया, ये हमने तब बताया, जो हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने उनके कंट्रोलर साहिबान को बताया, जो हमें ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं इस्लामिया कॉलेज या बारामूला कॉलेज उनको बताया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बताया कि साहब आपके बच्चे तो अक्सर बेशतर फिर मास्टर्स के लिए हमारे पास आते हैं, आप प्लीज़ इंश्योर करिए कि 28 तारीख तक इनका रिजल्ट आना चाहिए, जबकि वो कोशिश करें, होपफुली इंशाल्लाह वो कर लेंगे। तो बच्चों को भी ये बात ध्यान में रखनी है कि उनको अपनी एलिजिबिलिटी बनानी है 28 तक, उसके बाद लास्ट डेट 30 जून है, 30 जून तक वो प्रोविजनल एप्लीकेशन डालें, वो देखें फीस उन्हें भरी है, वो ये भी देखें कि क्या उन्हें रिलेवेंट कैटेगरी में अप्लाई करा हुआ है। आज सुबह और एक बच्चा आया था, हमने हमारे 4 लॉ कॉलेजेस हैं, हमने 4 लॉ कॉलेज का कल शाम को लिस्ट डाल दिया, उसका कट मेरिट हुआ 21.75, अब उस बच्चे के 24 हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, ओबियसली वो एजुटेटेड था, जब वो आया हमारे पास, नहीं साहब मेरा एडमिशन आप गलत कर, मैंने कहा आप आराम से बैठो, अब देखिए अपने एप्लीकेशन का प्रिंट निकालो, जब उसने प्रिंट निकाला उसने खाली कश्मीर का ऑप्शन दिया है, कोई 4 कॉलेज का ऑप्शन दिया ही नहीं है। जो बच्चे ऑप्शन नहीं देते हैं हम उनको कंसर्न नहीं करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है वो ऑप्शन ना देने का मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस कॉलेज में जाने के लिए। तो वो दूसरा पहलू है, पहला पहलू कि वो एप्लीकेशन जब भरते हैं वो देखें फी उन्हें भरी तो फ्री रिकनसाइल हो गया, दूसरा जो उनका एलिजिबिलिटी डालनी है वो 28 जुलाई तक डालनी है, वो इंश्योर करें तब तक उनका रिजल्ट आएगा, तीसरा जितने भी प्रोग्राम्स हमें एक से ज़्यादा जगहों पर चलते हैं वो इंश्योर करें कि उन्होंने वो वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 3 और सर्टिफिकेट कि उसको किस कैटेगरी में, क्या ये ओपन मेरिट का कैंडिडेट है, क्या ये किसी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, क्या ये ओएसजे और एक कैटेगरी हमारी होती है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए जो कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, जो कश्मीर डिवीजन से नहीं, जो हमारे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो वहाँ से बिलोंग नहीं, उसके लिए 2% का अलग रिजर्वेशन रखा हुआ कि बाहर वाले बच्चे यहाँ अगर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो वो OSJ वाले कैटेगरी में अप्लाई करें, वो भी कभी कैटेगरी गलत डाल देते हैं फिर उसमें उनका एडमिशन नहीं होता, अगर अपनी कैटेगरी में रहते शायद उनका हो जाता। ये 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है, कोई भी एप्लीकेशन चाहे वो 12th बेस हो, चाहे वो MBA की हो, चाहे वो अभी जो मास्टर्स है, जो भी एप्लीकेशन, इन 4 बातों का ख्याल रखना है।
1: सर आखिर में आपसे एक बस एक सवाल भी है और उसी के साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि एक स्टूडेंट्स के लिए जो पैगाम देना आप चाहे वो आप बिल्कुल उनके इस प्रोग्राम की वसादत से आप दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन सर बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स,
0: जी जी
1: बायो उसका एडमिशन और एक पैगाम हमारे सामने के लिए सुनने वालों के लिए।
0: कुछ प्रोग्राम्स हैं

0: कुछ कोर्सेज हैं जो कश्मीर से खुद एडमिशन नहीं करते, उसमें एक प्रोग्राम है जो हमारा साउथ कैंपस में बीएससी नर्सिंग और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चलता है, ऐसा ही ये प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का गेट बी पे होता है एडमिशन, लेकिन गेट बी ऑल द लेवल पे होता है, उसमें बच्चे अक्सर बेशतर फिर अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है कि अगर कोई वैकेंसी रहेगी यूनिवर्सिटी उसका अपना एंट्रेंस टेस्ट डाल देती है, तो गेट बी का स्कोर जो ही आएगा हम उन बच्चों का पहले एडमिशन करेंगे जो हमारे पास सीटें हैं, उसके बाद अगर कुछ वैकेंसीज रहेंगे उसका हम अपना एंट्रेंस करेंगे। नंबर सेकेंड, उसमें सेल्फ फाइनेंस सीटें उसमें भी है 30%, तो उनका भी हम एंट्रेंस करेंगे। तो बच्चे इन टच रहेंगे जो गेट बी मिस करे हुए लेकिन इंटरेस्टेड हैं वो मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में करने के लिए, वो जो उनके दूसरे हफ्ते में, मीन्स अभी पहला हफ्ता लगभग कंप्लीट हो गया, दूसरे हफ्ते में वो कोशिश करेंगे हमारे वेबसाइट से जुड़ने के लिए ताकि उनका एप्लीकेशन हम डाल दें और वो अप्लाई करें। और पैगाम ये रहेगा कि बच्चे अपनी ऑप्शंस महदूद न रखें। कल एक पेरेंट आया, बहुत परेशान था, मैंने कहा क्या है? सर इसने पिछले साल भी लॉ का एग्जाम दिया, इस साल भी, पिछले साल नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, मेरिट कम। मैंने कहा इसने गलती करी है, अगर 5 साल वाले लॉ में नहीं हुआ था इसको कॉलेज ज्वाइन करना था, ये ग्रेजुएशन करता है फिर 3 ईयर लॉ के लिए आता अगर उसको लॉ ही ऑप्शन है। तो बच्चों से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो एक ही ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट ना करें, मल्टीपल ऑप्शन हैं, तो अपना एक साल बचाने के लिए वो देखें कि कहाँ कहाँ पर एलिजिबल है, वहाँ पर एप्लीकेशन डालें, फिर जहाँ पर उनको मौका मिलता है वहाँ पर साल ज़ाया न करें, वो हमारी गुजारिश रहेगी।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मौजूद सामईन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम पेशरफ्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे और एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: अल्लाह हाफिज़।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे पेशरफ्त, पेशकश वसीम फारूक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आकाशवाणी श्रीनगर, मीडियम वेव 78.8 मीटर तक, FM 2 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सन पेट, रात सन से ठीक 10 बजे। समय पेश फरमाइशी कशरन वतन हन प्रोग्राम तुहस फरमाइश।

0: आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की आवाज़ है। ये मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शब की 11 बज रहे हैं। अब आइए आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने

0: नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat

0: said, the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response, and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said, Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है. मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर.
2: Years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. Iske antargat aaj suniye Modi sarkar ke 12 saal mahila sashaktikaran ka parivartankari dashak. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
3: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government. Of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aapse jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aapse discussion karna chahenge, chahe wo Pradhanmantri Jandhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
4: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना, ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में

0: जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सकें और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके। और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी।
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो काम भी हो
1: जी,
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी,
0: ये आजीविका के मामले हैं।
1: यस आदित्य जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड, you know, the various ways in which financial empowerment has been for women. In fact, we were talking about the financial inclusion and the Pradhan Mantri Mudra Yojana, entrepreneurial inclusion, in which women have been major beneficiaries, and India's leading in increasing female labor participation among BRICS countries. 3 crore plus women-led MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars.

0: are to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman is being given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hain unke education unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial 25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप JEE देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप NEET देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके LPG कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड एज यू आर रेफरिंग, यू नो, टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। एक और

0: जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है जी,
1: 98
0: बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी।
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%। सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से, सो ODF फ्री इंडिया। देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes, women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah, Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Okay. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager at their children or especially girl children come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Yes.
1: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है.
0: Yes.
1: This is the linkage yes, between women's health and the empowered और विकसित भारत एज वी से, आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं. और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज

0: सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे, सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं कौन सी सोसाइटी, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2,00,000 से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं, और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो, या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में, या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी?
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है, और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का, इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा

0: रिपीट नहीं कर रही हूँ,
1: हुँ.
0: लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए,
1: हुँ.
0: उद्यमी बनने के लिए
1: हुँ.
0: और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी अ बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली, एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग एंड द मार्केट नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, एट टाइम्स दे मे बी डिजिटल स्किल्स इन कमिंग टाइम, एंड यू सी वीमेन आर रियली वेरी गुड एट दैट, बिकॉज दिस इज हार्ट एंड हैंड बोथ गोइंग टूगेदर, एंड देन इफ यू रियली ट्रेन द इन टू द राइट काइंड ऑफ स्किल्स एंड एम्पावरमेंट टेक्निक्स ऑल्सो आई वुड से और फील्ड्स, देन दे आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। और ये सरकार चाहती है, वुमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
2: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। I can say women administrators, women representatives, first timer maybe, administration में तो first timer सभी होते हैं, so it really doesn't matter. They learn, and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, why are we here? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा, और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
2: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है, और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
3: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो

0: अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा। अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
3: In this special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। शब के 11:45 हुए हैं। समीन, हमारी आज की नशरियात अब यहीं पर बर्खास्त होती है। मामूल की नशरियात लेकर कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब बखैर। जय हिंद।

तो इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं तक। इजाजत दीजिए माधुरी को और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम है आपका अपना पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है सुरतिया और इसे आपके लिए लिखा है वंदना अवस्थी दुबे ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

0: नश्तर बनकर कुरेदती हैं पुराने जख्मों को।
1: नमस्ते बाऊजी।
2: बाहर बरामदे में बैठे बाऊजी यानी रामस्वरूप शर्मा जी सुधीर के दोस्त आलोक के इस संबोधन और उसके पैर छूने के उपक्रम से गदगद हो गए।
0: ठीक है बेटा, ठीक है। अरे अब बुढ़ापे में और कैसा होना है, है? भगवान जितने दिन अभी और कटवाए यहाँ काटेंगे है? अब बताओ भाई, अपनी इच्छा से कब कौन आया है और कब कौन गया है, है? शरीर है तो हारी बीमारी है, लाचारी है, अब क्या कीजिएगा भाई, सब झेलना पड़ता है, है?
2: किसी को अपनी ओर मुखातिब देख बाऊजी ने सारी बातें एक साथ कह लेनी चाहिए, लेकिन तब तक सुधीर अंदर से आ गया। बोलते हुए बाऊजी की ओर उसने जिन नजरों से देखा।
3: क्या बाऊजी, आप भी हर किसी को चढ़ने लगते हैं।
2: बाऊजी एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी छोटे बच्चे को चुप करा दिया गया हो।
1: अच्छा बाऊजी, चलते हैं हम, फिर आऊंगा।
0: जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो।
2: फिर आऊंगा कह के जाने वाला आलोक आएगा तो के पास उनके पैर छूने झुकेगा, हालचाल पूछेगा और फिर पूरा हाल सुने बिना ही सुधीर की ओर बढ़ जाएगा। अब कोई नई बात नहीं रह गई है। शुरू शुरू में उन्हें बहुत बुरा लगता था, अब उम्र भी तो 81 बरस की हो रही। दिमाग की मशीन, आखिर क्या क्या और कितना याद रखे।
0: हाँ, और क्यों क्यों याद रखा जाए उन कसैली यादों को जिनके दामन में सिर्फ कड़वाहट है। काश कोई ऐसी छलनी होती जिसमें कड़वी और कसैली यादों को और मीठी यादों को छानकर अलग अलग कर पाते तो कितना अच्छा होता ना।
2: बाऊजी यानी शर्मा जी शहर के डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल शहर में गुजार दिए हैं। गांव से कस्बा और कस्बे से शहर होते देखा है उन्होंने इसे। अभी बहुत बड़ा शहर नहीं हो पाया है, सो पैर छूने की परंपरा किसी हद तक बाकी है। छोटे बच्चे बड़े होने तक इसे निभाएंगे, इसमें संदेह है शर्मा जी को। कॉलेज के प्राचार्य की हैसियत आप समझ सकते हैं, कितना रुतबा होता है उसका। फिर यदि कोई ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य हो तो कहना ही क्या। शर्मा जी ऐसे ही प्राचार्य थे। व्यवहार के मामले में शर्मा जी इतने अच्छे कि धीरे धीरे पूरा शहर ही उन्हें बाऊजी कहने लगा। विषय की इतनी जबरदस्त पकड़ कि उनके पढ़ाने के बाद दोबारा उस टॉपिक को समझाना तो दूर, भूलने की नौबत तक ना आती थी। मैं भी उनकी एक विद्यार्थी रही हूँ, सो उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानती हूँ। चकराइए नहीं, मैं यानी इस कथा की सूत्रधार, कहानी है ना, और चूंकि सूत्रधार हूँ तो मेरा दायित्व है कि इस कथा को आगे बढ़ाऊं, बस वैसे ही जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ रही है।
0: सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। अरे तुम मेरा शहर पीछे क्यों रह जाता, मेरा परिवार पीछे क्यों रह जाता, उनको भी तो जमाने के साथ कदम से कदम बढ़ाना है ना। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। वो मेरा पोता गुड्डू छोटा सा है, छोटा सा, अरे देखो कैसा तेज है, बड़ा स्मार्ट है।
2: गुड्डू को मोबाइल में व्यस्त देख बाऊजी ने पूछा।
0: अरे वाह गुड्डू पंडित, क्या खेल रहे हो।
4: खेल नहीं रहा बाऊजी, ये कोलाज बनाने का एक नया ऐप आया है, उसे ही डाउनलोड कर रहा हूँ। कोलाज समझते हैं ना आप।
2: बाऊजी कॉलेज के दिनों में बनाए गए अपने तमाम पेपर कोलाज में खो गए। ड्राइंग से संबंधित हर चीज उन्हें पसंद थी। कितनी ही पेंटिंग्स उन्होंने अपनी नई उम्र में बनाई थी, ऐसी अद्भुत पेंटिंग्स कि लोग हाथों हाथ ले जाते, यहाँ तक कि उस वक्त की एक भी पेंटिंग उनके पास नहीं।
0: हाँ बेटा जानता हूँ, कोलाज क्या होता है ये तो जानता हूँ, अब अगर ये मोबाइल है तो पता नहीं।
2: बाऊजी ने अपनी स्मृतियों में खोए हुए ही जवाब दिया।
0: कोलाज, अरे वो भी मोबाइल से।

0: ये तुम लोग एसी कोच में कहां से घुसा है? चलो चलो यहां से।
1: क्या हुआ भाई टीटी साहब?
0: कुछ नहीं साहब, बताइए आपको कुछ चाहिए क्या?
1: अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो बताइए ये कि अलीगढ़ स्टेशन कब तक आएगा?
0: अलीगढ़ उससे बहुत टाइम है साहब, आप आराम कीजिए, मैं समय से पहले आपको बता दूंगा।
1: ठीक है साहब, ठीक है। वैसे अच्छा गा रहे थे वो लोग, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सच ही तो है, कोई यादें छोड़ जाता है तो किसी को यादें कभी नहीं छोड़ते, जिंदगी भर साए की तरह साथ रहती हैं। समझ नहीं आया, क्या ये यादें सहारा होती हैं? ये यादें

जीते जागते रंगों का कोलाज, और वो भी मोबाइल से। भला उसमें भी कोई जीवन झलकेगा है? कोलाज और रंगों के बीच जिंदगी कैसे जागती है, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुड्डू बेटा।

0: जिंदगी को हर पल अपने करीब से देखने वाले बाऊजी अपने जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे। बाऊजी का नाम आज भी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों की सूची में विश्वविद्यालय की दीवार पर अंकित है। पता नहीं कितने गरीब लड़कों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, सभी पूरे घर पर ये रुआब कि बाऊजी हंस रहे हैं तो सब हंस रहे हैं, बाऊजी तनाव में है तो सब तनाव में। बाऊजी कह दे आज तो दावत होगी घर में तो बच्चे नाचने लगते। बड़ी मम्मा यानी बाऊजी की धर्म पत्नी उन्हें सब इसी संबोधन से बुलाते हैं। रसोई की ओर रुख करती, बाऊजी पूरा मेन्यू बनवाते। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं। अरे भाई न बताएं तो आप बाऊजी को जान पाएंगे नहीं ना।
1: बाऊजी? क्या बाऊजी, कब से आवाजें लगा रही हूँ, आप सुनते ही नहीं। हाहे कान की मशीन लगाए रहा कीजिए, अगर नहीं लगानी थी तो खरीदवाई ही क्यों। 25,000 की मशीन पड़ी है बिस्तर पर और मैं गला फाड़ फाड़ के पागल हुई जा रही हूँ।
0: सरोज, बाऊजी की मंझली बहू झल्लाई हुई आवाज इतनी तेज थी कि अगर कोई बाहर के गेट पर होता तो भी सुन लेता।
2: हाँ बेटा, लगा लेता हूँ, जाके लगा लेता हूँ।
0: अतीत में विचरते बाऊजी भी इस आवाज से वर्तमान में लौट आए।
1: अरे बाऊजी, ये तो बता दीजिए कि रात में क्या खाएंगे। पनीर की सब्जी बन रही है, आप तो खा ही नहीं पाएंगे। खिचड़ी या दलिया बनवा दूं क्या?
2: हाँ बेटा, जो आराम से बन जाए बनवा दो।
1: लो फिर चल पड़े।
2: वैसे

0: एक आध रोटी पनीर के साथ तो मैं भी खा सकता हूँ।
1: अरे नहीं बाबूजी, इतनी मसालेदार सब्जी खाने की जरूरत नहीं है आपको। नुकसान कर जाए, पेट खराब हो जाए तो फिर एक नई मुसीबत। वैसे भी पनीर हैवी होता है, आपको गैस बनने लगेगी।
0: ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे करो, और क्या है।
2: नीरी आवाज में बाबूजी से जो कहा गया सो कह दिया, लेकिन मन ही मन वो शायद यही सोच रहे थे कि
0: जब तय कर ही लिया है तो पूछना क्या, बना दो कुछ भी, अब तो बस पेट भरने से मतलब है। इच्छा निच्छा कहाँ रह गई है हमारी। अरे कह देती कि ठीक है एक रोटी आप भी खा लीजिए पनीर के साथ। अरे भाई पेट का क्या है, वो तो कभी खिचड़ी से भी खराब हो सकता है, गैस तो मूंग की दाल खाने से भी बनने लगती है। अरे तो इस उम्र में काहे को इतनी पाबंदियां लगाना खाने पर है। मन से खाई जाने वाली कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, भाई मेरा तो ऐसा ही मानना है।
2: बाऊजी उठ के अंदर चले गए अपने कमरे में। कान की मशीन लगा ही लें तो ठीक है, कल सुधीर का 25,000 भी दे दें निकलवा के तो ठीक रहेगा। हालांकि गलत तो नहीं कहा सरोज ने, लेकिन अच्छी नहीं लगती बाऊजी को। मशीन की कीमत की जगह उपयोगिता याद दिला देती ना। वैसे भी जब से मशीन का पैसा दिया सुधीर ने, कई बार याद दिला चुकी है सरोज। पहले तो उनका ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन बाद में लगा कि जब पहली मशीन उन्होंने खुद पैसा देके खरीदी थी तब तो नहीं टोका सरोज ने कभी। कल कहेंगे सुधीर से ऑफिस से लौटते वक्त निकालता लाए। वैसे भी पैसे के मामले में बाऊजी कोताही नहीं करते, भगवान की दया से पेंशन के 35,000 रुपए मिल रहे हैं उन्हें। पूरे 15,000 निकलवा के रख देते हैं सरोज के हाथ पर।
1: अरे बाबूजी इसकी भला क्या जरूरत थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, सरकार दे रही है पेंशन, तो मुझे करना क्या है इसका बेटा, वक्त जरूरत के लिए भी है मेरे पास। महंगाई बहुत है मैं जानता हूँ, रख लो घर में काम आएंगे पैसे, रख लो।
2: सरोज और सुधीर दोनों का ही महीने के पहले हफ्ते में मूड बहुत अच्छा रहता है, तब तक जब तक बाबूजी ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद फिर रोज के ढर्रे पर ही उनका मूड भी चलने लगता है, लेकिन ये बुरा नहीं लगता बाऊजी को। टीवी ऑन करके बैठ गए बाऊजी, सीरियल वे देखते नहीं, न्यूज में एक ही न्यूज को इस कदर दिखाते हैं चैनल वाले कि बाऊजी उकता जाते हैं। सुबह का पढ़ा अखबार फिर से पढ़ने लगते हैं, जो कुछ छूट जाता है उसे खोज खोज के पढ़ते हैं। वैसे बहुत सी खबरें और खासतौर से संपादकीय पृष्ठ छूट ही जाते हैं सुबह। सुधीर एक ही पेपर लेता है ना, उसके दफ्तर में सारे अखबार आते हैं, सो कहता है काहे को दो दो पेपर लेना। एक पेपर आने से दिक्कत ये है कि बाऊजी को जल्दी से पढ़ के पेपर सुधीर को देना होता है। पहले वे आराम से पढ़ते रहते थे, तो एक दिन सुधीर ही झल्ला के बोला,
3: क्या बाऊजी सुबह से आप ही पकड़े हैं अखबार, जल्दी पढ़ लिया कीजिए ना, या फिर बाद में पढ़ा कीजिए, आखिर आपको करना ही क्या है दिन भर, चाहे जब पढ़िए बाद में।
2: अब अपने ही लड़के को कोई क्या याद दिलाए कि पेपर तो सुबह ही पढ़ने का असली आनंद है। खैर तब से जल्दी जल्दी हेडलाइंस पर निगाह डाल लेते हैं बाऊजी, लेकिन सुधीर के ड्राइंग रूम में आते ही पेपर उसकी ओर बढ़ा देते हैं। एक बार कहा भी बाऊजी ने,
0: अरे सुधीर बेटा मैं सोच रहा था कि अगर एक और पेपर मंगवाने लगते तो।
3: बाऊजी खबरें तो वही छपनी है दूसरे अखबार में भी, तो काहे को पैसा बर्बाद करना, आपके पास पूरा पूरा दिन खाली रहता है, आखिर करना क्या है आपको, पढ़े पढ़े अखबार ही पढ़।
2: उसके बाद कुछ नहीं बोले बाऊजी, मन तो था कहने का कि वो दे दिया करेंगे 150 रुपए अलग से दूसरे अखबार का, लेकिन फिर नहीं कहा, चुप लगा गए। पता नहीं क्या सोचे बेटा बहू। एक समय के बाद बच्चे भी कितने पराए लगने लगते हैं।
1: बाऊजी बाऊजी खाना आपके कमरे में ही भिजवा दूं या यहाँ आ रहे हैं,
2: आवाज ऊंची करके पूछा सरोज ने, ताकि बाऊजी एक ही बार में सुन लें। जवाब देने से पहले उठ के डाइनिंग रूम की ओर चल दिए थे बाऊजी।
3: अरे यार वहीं दे दो ना, यहाँ कहाँ बैठेंगे, इतनी देर तक खाना खाते रहते हैं, वहीं दे आया करो उनके रूम में।
2: सुधीर की आवाज पड़ गई थी बाऊजी के कानों में, उन्हें लगा लौट जाए, लेकिन फिर आ गए टेबल तक अपनी कुर्सी के पास। उनकी कुर्सी पर गुड्डू सुधीर का बेटा बैठा था। सुधीर ने फौरन दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया।

0: बाऊ जी को। बाऊ जी उसके इशारे पर दूसरी कुर्सी खिसका कर बैठ गए। वैसे आदत तो उन्हें अपनी उसी कुर्सी पर बैठने की है। अब आपको लगेगा कि भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी बैठ गए, लेकिन सबकी आदत होती है ना अपनी एक निश्चित जगह पर बैठने की। फिर बाऊ जी तो सदियों से बैठते चले आ रहे हैं उस जगह। खैर, जब तक बड़ी मम्मा थी तब तक बाऊ जी का वही पुराना रुतबा चल रहा था, लेकिन उनके जाते ही कितने अकेले हो गए हैं बाऊ जी। बड़ी मम्मा के रहते उनका चाय, नाश्ता, खाना सब उसी अंदाज में चल रहा था जैसे रिटायरमेंट से पहले चलता था। बड़ी मम्मा बादाम छुआरे रात में भिगोती तो सबके नाम के चार चार बादाम और दो दो छुआरे भिगोती, बाऊ जी का हिस्सा निकाल के बाकी सरोज को थमा देती, दूध में उबाल के बादाम छुआरा देती, तब कहीं बाऊ जी की दिनचर्या शुरू होती। बादाम छुआरे तो अब भी भीगते होंगे, लेकिन बाऊ जी को पता नहीं। उनके पेट और बढ़ती उम्र का हवाला देकर ये चीजें अब बंद कर दी गई हैं। ठीक ही किया होगा बच्चों ने।
1: बाऊ जी, आपके फोन की घंटी बज रही है।
0: बाथरूम के बाहर से सरोज ने चिल्ला के बताया। झटपट हाथ धो के बाऊ जी बाहर निकले। उनके फोन की घंटी अब कम ही बजती है, सो उन्हें उत्सुकता थी, फोन कट गया था अब तक। उठा के देखा तो उनके पुराने साथी, सहकर्मी और घनिष्ठ मित्र राम बिहारी गौतम जी का फोन था। तुरंत
2: हेलो, कहिए शर्मा जी, क्या हाल चाल है, कब आ रहे हैं अपने गांव?
3: गौतम जी, अरे बहुत अच्छा लगा भाई आपने फोन किया है। अब क्या बताएं, मन तो बहुत होता है आने का, लेकिन अब उम्र और ऊपर से ये कान की समस्या, अब क्या बताऊं मैं, तबीयत की तरफ से भी डर लगता है भाई, तो अकेले हिम्मत ही नहीं पड़ती है, जबकि मन में तो वही रहता है। अब क्या कहें, अब रहते यहाँ हैं और मन जो है गांव में रहता है।
2: आप भी कहाँ लगे हैं तबीयत में, तबीयत जब बिगड़नी होगी तब कहीं रहे बिगड़ेगी ही।
3: हाँ सो तो है।
2: और कान की भली कही, अरे कौन सा भाषण सुनने जा रहे हैं? टिकट कटवाओ, बैठ जाओ ट्रेन में, हम उतार लेंगे इधर, दोनों जने मिलजुल के रहें कुछ दिन तो लगे कि जिंदा हैं।
0: कितनी खरी बात कही गौतम ने, मिलजुल के रहें तो लगे जिंदा हैं।
4: बाऊजी, परसों सुनील और बहू आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, आप गुड्डू के कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा, ताकि उन दोनों को आपका कमरा मिल जाए, बाथरूम भी अटैच है ना वहाँ, तो वही कमरा ठीक रहेगा उनके लिए, और आप अपना जरूरी सामान यहीं रख लीजिएगा।
3: जरूरी सामान,
5: शिफ्ट हो जाओ
3: अब, मुझे मेरे ही कमरे से शिफ्ट कर दिया जाता, कभी ये आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ, कभी वो आ रहा है तो बाबूजी शिफ्ट हो जाओ, अरे मुझसे ज्यादा तो ये इस सामान की अहमियत ज्यादा है, जिसे जरूरी कहा जाता है, इनका बाप इनके लिए जरूरी नहीं रहा, ये सामान जरूरी है। सुन रही हो ना सुधीर की माँ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुम चली गई, बहुत अच्छा हुआ।
0: गुड्डू ने झटपट अपनी टेबल खाली कर दी थी। बाऊ जी ने वहीं अपना सामान जमाया। दो तीन दिन खूब रौनक रही घर में। सुनील कोलकाता में है और उसकी बीवी बंगाली है। जाने के एक दिन पहले ड्राइंग रूम में दोनों भाई और उनकी पत्नियां बैठक जमाए थीं। वहां से आती आवाजों पर बाऊ जी ने ध्यान लगाया तो समझ में आया कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है।
4: अब क्या बताऊं सुनील, तुम समझ नहीं पाओगे, बाऊजी हमेशा यहीं जमे रहते हैं दिन भर घर में, कहीं आना जाना तो होता नहीं इनका। अरे इनके कारण हमारी जो सोशल लाइफ है ना, बिल्कुल चौपट सी हो गई है। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो 100 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि ना जाएं, इनका क्या होगा।
1: अरे एक जमाना हो गया इनके साथ घर से निकले हुए, अब भला मैं क्या क्या बताऊं सुनील भैया, कहीं बाहर जाना हो तो पहले बाऊजी का खाना बनाओ। ओफो, मेरी तो कमर ही टूट जाती है दिन रात इनकी सेवा टहल करने में, और सेवा टहल का कोई जस नहीं है। हाँ
4: तो और क्या क्या बताएं यार, तुमको कितनी समस्या है, यू डोंट बिलीव इट। बाऊजी को तो तुम जानते हो शुरू से, छोटी छोटी बातों पर इन दिनों इतना तनाव पैदा हो जाता है कि घर का माहौल।
1: हाँ, और इसका असर अब गुड्डू पर भी पड़ने लगा है।

क्या कह रहे हैं ये लोग, मैं तनाव पैदा कर देता हूं, इसकी कमर टूट जाती, मेरी बातों का असर गुड्डू पे पड़ता है, इनकी सोशल लाइफ खत्म हो रही, रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते। हे भगवान, ये क्या सुन रहा हूं, घूमने तो खूब जाते हैं दोनों, 8-8 दिन को चले जाते हैं, खाना बनाने के लिए वो गायत्री आती है, वही बेचारी ख्याल रखती है, मेरी दवा दारू सब वही तो देखती है। हे प्रभु, यही सुनने और देखने के लिए जिंदा रखा है तूने मुझे, मेरे कारण ये सब एक बंधन में बंधे हैं। अब तो प्रभु तू ही मुझे इस जीवन के बंधन से मुक्त कर दे, प्रभु।

0: ये बात तो मुझे भी समझ में आ रही थी कि बाऊजी जैसे शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को भी ये दोनों पति पत्नी अपने पास नहीं रखना चाहते। इतना पैसा देते हैं बाऊजी, तब भी इन्हें परेशानी है। एक भी काम बाऊजी के मन का नहीं करते और बाऊजी फिर भी चुप रहते हैं। कोई बकर बकर करने वाला बुढ़ा होता तब आती इनकी अकल ठिकाने।
1: लेकिन भैया हम दोनों ही नौकरी करते हैं और फिर कोलकाता जैसा शहर, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तबीयत बिगड़ जाए अचानक, तो कहाँ ले जाएंगे? हर अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है और फिर शर्मिला को हिंदी बहुत समझ में भी नहीं आती, और ये समझ भी ले तो बाऊजी को इसकी हिंदी समझ में नहीं आएगी।
2: कमाल है यार सुनील, हम लोगों ने पट्टा लिखवाया क्या इनके लिए? जीवन भर इनका बोझ हम ही लाते रहेंगे बस।
3: अरे शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब सुनील भैया आप बुरा न मानिएगा, इनको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, पर बात तो पते की कह रहे हैं। शर्मिला को हिंदी नहीं आती ये तो कोई बात नहीं हुई, शर्मिला नौकरी करती है तो हम यहाँ कौन सा खाली बैठे हैं। उसे तो तनख्वाह मिलती होगी, हम तो मुफ्त की चाकरी बजा रहे हैं। हाँ आखिर हमें भी थोड़ा सुकून चाहिए, हम भी तो पति पत्नी की तरह जी लें, उम्र पूरी बीती जा रही है। और सुनील भैया शर्मिला को भी तो बाऊजी की सेवा टहल का पुण्य मिल जाए।
4: इना चोल बे सुधीर दा, ए बाऊदी इका बोलता है, हम तो डेली माछेर झोल बनाता है। बाऊजी विल नॉट फील कम्फर्टेबल एट ऑल, बोल देता है वो तो वेजिटेरियन है ना।
1: दैट इज द पॉइंट सुधीर,
4: कैसे करेगा?
1: हाँ बाऊजी को कैसे चलेगा ये सब, उन्होंने जिंदगी भर कभी अंडे को छुआ नहीं।
2: कमाल है कि अंडा नहीं खाते।
5: ये मेरे बारे में बात हो रही, ये मेरे मेरे बच्चे, ये मेरी औलाद, इनको मैंने बड़ा किया, ये मेरी उंगली पकड़ कर चलना सीखे, इनको अपने कंधों पर बिठाकर मैंने मेले दिखाए।

0: आज उन्हें चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था और याद आ रही थी अंतिम समय में कही गई मम्मा की वो बातचीत।
1: सुधीर के बाऊ, ये लड़के तुम्हारे रहने का फैसला करे, खुद पर वो उसे समझे, उसके पहले तुम्हें अपना फैसला लेना है।
2: सही कहा था तुमने, सही कहा था सुधीर की बात, सही कहा था।
0: सुबह जब सुधीर उठा तो बाऊजी तैयार होके ड्राइंग रूम में बैठे थे।
3: अरे कहाँ की तैयारी है बाऊजी इतने सवेरे से?
2: कुछ नहीं बेटा, वो गौतम जी बहुत दिनों से बुला रहे थे ना, तो अब क्या है कि हम दोनों एक ही अवस्था के लोग हैं, वो भी अकेले हैं तो कुछ दिन अब उनके पास रहने का मन है तो हम जा रहे हैं।
3: अरे जा रहे हैं लेकिन टिकट?
2: टैक्सी करके जाऊंगा बेटा, ट्रेन वेन में यात्रा करने की इच्छा नहीं है।
1: अरे बाबूजी टैक्सी तो कम से कम 10,000
2: हैं। मेरे पास पैसे हैं बेटा। अरे बहू 10,000 क्या मैं 20,000 दे सकता हूँ?
0: बाबूजी का खोया हुआ आत्मविश्वास चमक रहा था चेहरे पर।
4: अरे बाबूजी अब जा रहे? मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? देखिए देखिए आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि गुड्डू बेटा तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगा।

0: और ये तो नेशनल एग्जीबिशन है बाऊजी, और इसमें फोक पेंटिंग बनानी है। फोक पेंटिंग?
1: चुप कर गुड्डू, चुप।
0: मामा यू नो फोक पेंटिंग?
1: अरे गुड्डू, अरे बाऊजी कैसे बनवाएंगे पेंटिंग, उन्हें आती है क्या? मैंने करीम भाई से बात कर ली है, वे पेंटर है ना, सो बढ़िया पेंटिंग बनवा देंगे।
0: समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ना वो पेंटर वाली पेंटिंग नहीं चाहिए, उसमें ना नंबर नहीं मिलेंगे, कई लड़के बनवा रहे हैं उनसे, मुझे तो ना वो बाऊजी वाली ही पेंटिंग चाहिए। अरे मुझे फर्स्ट आना है भाई, और तुम्हें पता नहीं शायद, बाऊजी तो कोलाज भी बना लेते हैं।
1: अरे काहे का कोलाज बनाना है।
2: टैक्सी आ गई थी और बाऊजी पूरे ठसके के साथ उस पर सवार होकर हाथ हिलाते हुए चले गए। गुड्डू ने किसी प्रकार राम राम करते हुए एक महीना गुजारा। घर में और लोगों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन गुड्डू का मन बाऊजी के बिना नहीं लग रहा था। वैसे मम्मी को भी उसने कई बार पापा से कहते सुना था,
3: कमाल है सरोज यार, खाने में फिर वही लौकी, कल कद्दू, फिर लौकी, क्या
1: भूल जाओ पनीर और कोफ्ते, हाँ इतनी तनख्वाह में लौकी और कद्दू ही मिलेंगे,
3: क्या तमाशा है ये।
1: जब से बाऊजी गए हैं हाथ बांध के खर्च करना पड़ रहा है। बाऊजी के 15,000 बहुत बड़ा सहारा था, अब समझ में आ रहा है घर कैसे चलता था। हा?
3: बात तो तुम ठीक ही कह रही हो,
0: लेकिन मम्मा अब इतनी चिंता क्यों कर रही हो? डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि बाऊजी जरूर आएंगे।
3: तुम्हें कैसे पता कि बाऊजी जरूर आएंगे?
0: बाऊजी ने मुझे बताया था।
4: गुड्डू बेटा, मैं जल्दी ही तुम्हारी पेंटिंग बनवाने आऊंगा, जरूर आऊंगा, चिंता मत करो बेटा, अभी तो टाइम है ना एग्जीबिशन में।
3: गुड्डू बेटा, क्या सचमुच बाऊजी ने तुमसे कहा था?
0: हाँ पापा, आपको क्या लगता है मैं क्या झूठ बोलूंगा?
2: गुड्डू ने सच ही कहा था, और अगले दिन सुबह बाऊजी आ भी गए। बाऊजी के आते ही गुड्डू लिपट गया उनसे। सरोज को भी लगा जैसे घर भर गया हो फिर से। आते ही बाऊजी ने 1.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा प्लाई का टुकड़ा मंगवाया। दूध वाले से कहकर गोबर तो पहले ही रखवा लिया था, उसका घोल बनाया एक बाल्टी में और ब्रश से पूरी प्लाई पर एक कोट किया। सरोज कहती ही रह गई कि भाई पहले आराम कर लो, लेकिन बाऊजी अपने इस भूले बिसरे काम को करने में बेहद मगन थे। एक कोट करने के बाद ही वे अपने कमरे में गए, थोड़ा आराम किया और फिर काम में लग गए। अब दूसरा कोट किया गया, 1 घंटे बाद तीसरा कोट। गोबर से लीपी गई चिकनी जमीन जैसा दिखने लगा था। बाऊजी ने अपने सदे हुए हाथों से 500 बिंदु बनाए खड़िया मिट्टी के सफेद घोल से, और फिर उन्हें मिलाने लगे। 2-2 बिंदु मिल रहे हैं, कलाकृति आकार ले रही है धीरे धीरे। अगले 1 ही घंटे में बाऊजी ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सुरतिया को बोर्ड पर उतार कर रख दिया था। ये कलाकृति बुंदेलखंड के हर घर में बनाई जाती है दीपावली के समय। बगल में बैठा गुड्डू पूरे मनोयोग से देख रहा था बाऊजी को काम करते हुए, और जब पेंटिंग तैयार हुई तो हक्का बक्का सा देखता रह गया। झूम उठा गुड्डू, सुधीर और सरोज भी भौचक से खड़े थे, जैसे बाऊजी का एक नया ही अवतार देख रहे हों। अगले 3 दिन उत्सव से बीते। गुड्डू की पेंटिंग प्रथम आई थी और फिर इसे दिल्ली ले जाया गया, जहां इसे लोक कला भवन में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने किया और इस पेंटिंग की जी खोल के तारीफ की। गुड्डू ने भी झूठ नहीं बोला था और खुल के बताया भी कि ये पेंटिंग उसके 80 वर्षीय दादाजी ने बनाई। राष्ट्रीय प्रादेशिक सभी अखबारों में बाऊजी की सुरतिया बाऊजी की तस्वीर के साथ चमक रही थी। सुधीर और सरोज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब पेंटिंग वापस आए और कब वे उसे अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगाएं। और इधर शहर के तमाम ऐसे लोग जो कभी सुधीर के घर आने पर बाऊजी को प्रणाम तक करने में कतराते थे, आज बाऊजी को घेरे हुए हैं, हाथ जोड़े एक पेंटिंग उनके लिए भी बना देने की प्रार्थना कर रहे हैं। और बाऊजी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है, आंखों में जिंदा होने का एहसास है।
4: जिंदा होना और जिंदा होने का एहसास दोनों अलग अलग बातें हैं। रिटायरमेंट के बाद शायद मैं सिर्फ जिंदा था, लेकिन मेरे पोते गुड्डू ने मुझे एक वजह दी, और अब मैं जिंदा होने के एहसास के साथ जिंदा हूं। अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी

0: जिंदा दिली के साथ जीऊंगा।
1: रुक जाइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: कहीं नहीं जा रहा हूँ बेटा, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस जिंदगी को एक बार और नजर भर देख लेना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, तू जब भी कहेगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। तेरे कोलाजों में जिंदगी का एक और नया रंग।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये कहानी सुरतिया, जिसे आपके लिए लिखा था वंदना अवस्थी दुबे ने। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए हम बेताब हैं। तो आप चाहें तो हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो इसी के साथ कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी इसको यहीं समेटते हैं। रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रवि साहब की आवाज के साथ। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था देवानंद और आशा पारेख पर 1961 में, और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने। प्राण ने फिल्म में खलनायक का किरदार निभाया था और राजेंद्र नाथ ने सहायक भूमिका निभाई थी। और अब पढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ, जो है फिल्म साथी से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

1968 में आई फिल्म साथी से सुन रहे थे आप ये गीत। आवाज थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने और फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने। ये फिल्म 1961 की एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज में।

गीता दत्त की सुमधुर आवाज में सुना आपने ये गीत, साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से। और ये फिल्म 1962 में बनी थी और ये एक ऐसी, एक बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक फिल्म थी ये, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है भारतीय सिनेमा के इतिहास में। और इस फिल्म का निर्देशन किया था अबरार अलवी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। इस फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाया गया किरदार छोटी बहू भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली चरित्रों में से एक माना जाता है। ये फिल्म बिमल मित्र के उपन्यास साहिब बीवी और गुलाम पर आधारित थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म श्री 420 से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।

आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुना आपने ये खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम था बेटी बेटे और संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म 1964 में आई थी और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस गीत को जो अभी हमने आपको सुनवाया, इस गीत को अमर बनाता है रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़। और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था सुनील दत्त और बी सरोजा देवी पर। ये गीत अपने दौर की उन गीतों में से एक है जो आज भी सुनने पर दिल सुकून से भर जाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से।

0: रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इजरायल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्धविराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इजरायल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है।

तेरी आने का धोखा सा रहा है, तेरी आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। अजब है रात से आंखों का आलम, ये दरिया रात भर चढ़ता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, वो कोई दोस्त था 6 दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के दर्द को गीतों से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को भी, कार्यक्रम का आगाज करते हैं आशा जी की आवाज के साथ।

जब भी इस गीत को सुनो तो ऐसा लगता है वक्त ठहर गया हो, है ना। गजल पन्ने से उतर कर सामने बात कर रही हो, लगता है बिखरे हुए शब्दों को बीन लिया जाए।

जब जिंदगी में कोई खास इंसान आता है तो अंधेरी रातें भी दियों की तरह जगमगा उठती है। रात के इस खामोश पहर में जब चारों तरफ अंधेरा है, मुझे लगता है इस गाने को सुनकर किसी की याद ने आपको अंदर से भीतर से रोशन जरूर किया होगा।

वैसे दोस्तों, रात का सन्नाटा अपनी जगह है, लेकिन इस गाने ने माहौल में एक अलग ही खनक घोल दी है ना। वो कहते हैं ना कि सादगी में ही सबसे ज्यादा कशिश होती है। आजकल का जो ये मॉडर्न टाइम है, उसमें भी माथे की ये एक छोटी सी बिंदिया सच में पूरे दिल का चैन चुराने के लिए काफी होती है।

तुमको पालने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, तुमको पालने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी, रंग बिरंगे कपड़े पहने, पेशानी पर सूरज बांधा, आंगन भर में धूप बिछाई, दीवारों पर सब्जा डाला, फूल पत्तों से अपनी चौखट रंगवाई, मौसम आए मौसम बीते, सूरज निकला धूप खिली, फिर धूप चढ़ी फिर और चढ़ी, फिर शाम हुई और फिर गहरी काली रात हुई, तुमको पा लेने की धुन में मैंने दुनिया ओढ़ी। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:43 और 50 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के सुरों को अपनी बातों से, गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, उस नब्ज को, उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम को, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत।

जो लोग दिल लगा बैठते हैं उनके लिए रातें तो बस यादों की महफिल बन जाती है। गाना कहता है कि प्यार करने की थोड़ी सी भूल कर ले। सच बताइए, इस वक्त जागते हुए क्या आप भी किसी की याद में ऐसी कोई हसीन भूल दोहरा रहे हैं? अगर दोहरा रहे हैं तो ये गीत और बातें आप ही के लिए हैं।

जज्बात से भरी महफिल रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप समाचार, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के

0: सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की महबूबा फिल्म के इस प्यारे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की महबूबा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

दूरी चाहे कितनी भी हो, दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार दिलों के बीच ही रहे, हर दूरी को मिटा देता है। यादों की खुशबू रात को भी महका सा देती है।

प्यार का सबसे सुंदर उपहार दिल का समर्पण है। जब दिल किसी अपने को सौंप दिया जाए तो हर धड़कन उसी का नाम गुनगुनाने लगती है।

इंतजार में भी एक अलग ही मिठास होती है, किसी प्रिय के आने की आस जीवन को नई रोशनी और नई खुशी से भर सा देती है।

सच्चे प्रेम में चेहरा नहीं, भावनाएं बोलती है। आंखों में छिपा अपनापन ही प्रेम का सबसे सुंदर आईना बन जाता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है हम राही।

चूड़ियों और कंगनों की खनक जैसे प्रेम की मधुर सरगम हो, जो हर पल प्यार की यादों को और भी करीब ले आती है।

प्यार के सफर में कभी कभी ऐसे खूबसूरत मोड़ आते हैं जहां दिल बस यही कह उठता है, ये कहां आ गए हम। और छोड़ के जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है

ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया।

0: मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की संभावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म जलदीप से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन।

और इस गीत के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफी और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म राजा से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउट। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है वो है अरुणिमा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार मजहू सुल्तानपुरी, संगीतकार एस जी बर्मन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन।

और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक ले रही हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति और कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वप्नों को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ

0: घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our ties.
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में कल श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा भी की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनीमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के जयदीप को 7-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सागर ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के तोलुई मुखबंत को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी। मौसम विभाग ने आज केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से भजन के साथ।

प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। जब मन में विश्वास और कर्म में निष्ठा हो तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है।

जीवन में समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसलिए हर दिन को सीख, सेवा और अच्छे विचारों से भरना ही जीवन की सच्ची सफलता है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, अपनी मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए।